प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं गायन, कलाकार हैं आम्रपाली। आपने प्रस्तुत किया है राग ललित। आपके साथ तबले पर संगत किया है मदन लाल ने और हारमोनियम पर साथ दिया है के नियाजी ने।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर अंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थी अम्रपाली। आपने प्रस्तुत किया राग ललित। आपके साथ तबले पर संगत किया मदनलाल ने और हारमोनियम पर साथ दिया के नियाजी ने। मीडियम रेंज 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं

0: शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत के विचारों पर आधारित चिंतन।

बात सुमित्रानंदन पंत के बचपन की है। एक बार वे घर से दूर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक सहपाठी अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। सहपाठी को देख वो रुका और अपनी माँ से कहा,

0: अम्मा ये गुसाई है, हमारी कक्षा में पढ़ता है, बहुत होशियार है। मुझे इसके साथ बैठना, खेलना, खाना बहुत अच्छा लगता है। और गुसाई ये मेरी अम्मा है, अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए सहपाठी ने कहा। यहाँ क्यों बैठे हो बेटा, इस सुनसान और एकांत जगह में? सहपाठी की माँ ने पूछा। अम्मा ये इसकी आदत है, स्कूल में भी खेल घंटी के समय ये पेड़ों के नीचे बैठा रहता है। सहपाठी ने बीच में ही बात काटते हुए अपनी माँ से कहा। तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती बेटा, सहपाठी की माँ फिर बोली। सहपाठी फिर बात काटते हुए बोला, इसकी माँ नहीं है अम्मा। सहपाठी की माँ को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और घर तक छोड़ कर आई। उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौसानी गांव में 20 मई 1900 के जन्मे पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही माँ को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया था। शिशु का लालन पालन दादी ने किया। लालन पालन में कोई कमी नहीं रही। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त रखा गया। नाम प्रिय नल लगने के कारण बाद में उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। 1918 में वे काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में अध्ययन करने लगे। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर पर रहकर हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। सन 1926-27 में उनकी पहली पुस्तक पल्लव नाम से प्रकाशित हुई। कुछ समय पश्चात पंत अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए और इसी दौरान वे मार्क्स और फ्रॉयड तथा उनकी विचारधारा के प्रभाव में आए। सदा अकेले शांत एकांत में रहने वाले पंत को ये प्रकृति इतनी प्रिय लगी कि उसे ही पंत ने अपनी माँ और पूरा जीवन समझ लिया। आजीवन इसी के बीच जीते रहे और जुड़े रहे। सुख दुख भी आजीवन उनके जीवन से जुड़े, पर उनके बीच से वे सदा एक नई राह बनाते रहे। अपनी एक कविता मैं नहीं चाहता चिर सुख में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौली खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जाए सुख दुख से ओ सुख दुख से। अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी है उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन। ये सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चीरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का।
1: अभी आप सुन रहे थे सुमित्रा नंदन पंत के विचारों पर आधारित चिंतन।
2: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द या

एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासिपरिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलम् एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिक नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपांत्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम

0: और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the 2 northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic, deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovering systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the president will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed concern that ongoing conflicts are imposing costs and triggering changes far beyond the regions. The minister said this while participating in a discussion with his Finnish counterpart Elina Voltunen and Assistant Foreign Minister of UAE Lana Nusebe on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland. Dr. Jaishankar also stressed the need for the international community to continue efforts to mitigate their consequences and create conditions for diplomacy. The Enforcement Directorate ED has arrested Naresh Kumar, the then superintendent in the Office of Director, Development and Panchayat Haryana, in connection with the ongoing investigation in IDFC Bank fraud case. He was arrested under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, PMLA, 2002. Investigation in the case has revealed embezzlement of public funds amounting to 645 crore rupees from the bank accounts of Haryana government, Chandigarh administration, and two private schools maintained with IDFC First Bank. US President Donald Trump said last night that he has called off new military strikes on Iran hours after threatening to escalate the war by seizing control of the country's oil industry. In a social media post, Trump said that he made the move based on the fact that discussions with Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. The announcement came after 2 days of back-and-forth attacks between the US and Iran had pushed the Middle East closer to the resumption of a full-scale war. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on the 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:10 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप सुनेंगे आलोक कुमार झा द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तबले पर प्रदीप्ता महाराणा और सितार पर अकील अहमद।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में आलोक कुमार झा द्वारा गाए भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तबले पर प्रदीप्ता महाराणा और सितार पर अकील अहमद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:34 और पूरे 10 सेकंड्स हो चुके हैं और साथ ही साथ वक्त हो चुका है हमारे और आपके सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और आज इस कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता।

जी हाँ, मौसम तो बेहद खूबसूरत हो रहा है और सुहावना भी हो रहा है, रोमांटिक भी हो रहा है, और सुबह सुबह का मौसम है वैसे तो, और ढेर सारी क्या कहते हैं जो है ना, बादल जो है हमारे यहाँ पे तो हो रखे हैं, और बहुत बारिश भी हुई है। और आज जो इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ना, वो भी बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस जादू की जो बिना कुछ कहे दिल को छू जाता है, उस एहसास की जो कभी ठंडी हवाओं में मिलता है, तो कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी सुनहरी धूप की नर्म गर्माहट में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मौसम और मोहब्बत की।

जी हाँ दोस्तों, जब सुहावना मौसम होता है ना, कोयल भी कूकती है, बादल भी बरसते हैं और मन में मीठी मीठी फुहारें है ना, वो भी उठती हैं, क्योंकि मौसम सिर्फ आसमान का हाल नहीं बताता, ये बताता है आपके दिल का हाल और बयां करता है कुछ गीतों के जरिए। जैसे हम यहाँ पर आते हैं आपके लिए ढेर सारे खूबसूरत गीत लेके इस खूबसूरत से कार्यक्रम में, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। तो कभी बादल छाए तो किसी की याद घेर आती है, जब कभी बादल छाए तो किसी की याद घेर आती है, कभी बारिश होने लगे तो किसी की मुस्कान भीगती हुई याद आ जाती है, और हाँ कभी ठंडी हवा चल जाए तो लगता है जैसे किसी ने प्यार से आपका नाम पुकार लिया हो।

जी हाँ, वाकई में इस खूबसूरत से गीत ने ना इस मौसम में और भी चार चांद लगा दिए। सोचिए जरा, हल्की हल्की बारिश हो रही हो और पीछे से ये खूबसूरत सा गीत जो है ना बैकग्राउंड में बज रहा हो, क्या मजा आए। और वाकई में पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। कुछ हैं हमारे ऐसे दोस्त जिनके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाकई में बहुत खूबसूरत सा गीत जो है ना चल रहा है और बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्लेजेंट मौसम हो रहा है और इस मौसम को इस गीत के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं हमारे दोस्त। अब इसी बात पर एक शेर भी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए ना, क्योंकि मौसम है बहुत ही खूबसूरत और शेर तो बनता है जनाब। हवा ने जब तेरा नाम कानों में कहा होगा, हवा ने जब तेरा नाम कानों में कहा होगा, मौसम ने भी उसी पल रंग नया लिया होगा। दोस्तों कहते हैं कि प्यार और मौसम दोनों का कोई भरोसा नहीं होता, कब बदल जाए, किस तरफ मुड़ जाए कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता इवन, लेकिन जब दोनों एक साथ मेहरबान हो जाएं तो जिंदगी किसी खूबसूरत गीत जैसे लगने लगती है। कल्पना कीजिए कि हल्की हल्की बारिश हो रही हो, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई हो, पेड़ों की शाखें झूम रही हो और आपके साथ आपका कोई अपना हो, तब मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहता, वो एक याद बन जाता है।

यहाँ आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज आपके साथ है आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल यहाँ पर चल रही है बातें मौसम और मोहब्बत की, और साथ ही साथ ना वक्त की भी बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वक्त जो है ना 7:50 और पूरे 12 सेकेंड्स हो चुके हैं, और बस मौसम के साथ हम भी थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं गीतों को, मोहब्बत को और थोड़ी सी शेर व शायरी को।

जी हाँ, बरसात की बूंदों में कुछ बात निराली थी। बरसात की बूंदों में कुछ बात निराली थी, दिल भीग रहा था और आंखों में खुशहाली थी। दोस्तों, हर मौसम अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। गर्मी हमें धैर्य सिखाती है और बरसात हमें एहसासों की भाषा सिखाती है। कई बार हम खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए कुछ ना कुछ सोचते हैं।

और अचानक कोई पुरानी याद दस्तक हमें दे जाती है। किसी की हंसी, किसी की बातें, किसी का साथ, सब कुछ जैसे बारिश की बूंदों ने वापस लौट आता है।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं जिनकी यादें कभी सूखती नहीं। दोस्तों, मौसम का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि हमें उम्मीद देना नहीं छोड़ता। कितनी भी लंबी गर्मी हो, एक दिन बारिश जरूर आती है। कितनी भी घनी रात हो, एक दिन सुबह जरूर आती है। और यही बात प्यार पर भी लागू होती है दोस्तों। अगर दिल में सच्चाई हो, अगर रिश्ते में भरोसा हो, तो हर कठिन मौसम जो है वो चुटकियों में गुजर जाता है।

दोस्तों, मौसम बदले, हवाएं बदले, बदल जाए ये जहां, सच्ची मोहब्बत प्यार मगर बदलती नहीं कभी यहां। कभी कभी मौसम हमें खुद से मिलवाता है दोस्तों। सुबह की ताजी हवा हमें नए सपने देती है, शाम की ठंडी बयार हमें सुकून देती है और

शांत रात का शांत आसमान हमें सोचने का मौका देता है कि आखिर जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वाकई में कितने खूबसूरत विचार हैं आज हमारे इस मौसम वाले कार्यक्रम में। फिलहाल जो है ना, वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है। आपसे विदा होने का भी वक्त जो है वो नज़दीक आ चुका है, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:57 और पूरे 35 सेकेंड्स हो चुके हैं। और इसी खूबसूरत से गीत के साथ फिलहाल तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये जो कार्यक्रम है वो बेहद पसंद आ रहा होगा, और हमारे द्वारा यहाँ से प्रसारित किए जा रहे बहुत सारे खूबसूरत से कार्यक्रम हैं वो भी आपको पसंद आते होंगे। अच्छा, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि सुबह 10:10 पर प्रोग्राम रहता है आपकी पसंद। आज उस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपके लिए आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त आरती गौड़, तो सुनना ना भूलिएगा। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आती हैं ये अक्सर अपने कार्यक्रम इस चंक में, और बहुत ही प्यारे गीत भी आपकी फरमाइशों के साथ ये प्ले करती हैं यहाँ पर। इसी आशा के साथ कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, जल्द ही मिलने का वादा लिए ढेर सारी बातों के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के ठीक 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: अब सिर्फ एक एमओयू से ही

0: चार से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
0: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। दिसंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात

0: चित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की

0: बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: आज सिर्फ एक एमओयू से ही
4: विद जस्ट दिस वन एमओयू वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर ऑयल एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 1000 टू 1500 बैरल्स पर डे टू मोर देन 10 टाइम्स दैट लेवल इन अ सिंगल फील्ड देयर इज आल्सो अ पोटेंशियल रिकवरी ऑफ ओवर रुपीस 15,000 करोड़ इफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स अक्रॉस नागालैंड आर प्रॉपरली एक्सट्रैक्टेड आई बिलीव इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज व्हिच करंटली सप्लाई अस ड्यू टू आवर शॉर्टेजेस इन दिस सेक्टर
3: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे
2: असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा सेड दैट बाउंड्री इशू बिटवीन असम एंड नागालैंड इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ड्यू टू व्हिच द नेचुरल रिसोर्सेज लाइंग इन द एरिया कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द नेशन
5: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
2: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
6: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryu said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
2: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
7: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said, the impact of the conflicts extend far beyond the regions where they occur. He said there is broad agreement that the international community must continue efforts to mitigate the consequences of conflicts and create conditions conducive to diplomacy. On energy security, Dr. Jayashankar reiterated that India's energy choices are guided by national interest and that purchases are made on considerations of affordability and availability.
8: Today, our largest oil supplier, little less than 40%, is Russia. Our largest gas supply is the United States. And that was not the case till the 28th of February of this year. The main supplier was Qatar. So what is happening is the world is also de-risking on the region. People are looking for alternative energy sources and saying, okay, I'm prepared to buy at longer distance, maybe at a higher cost, but there is a greater security about it, predictability about it. So what I see

0: match rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first women's T20 World Cup title. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. Julian Quiñones scored Mexico's opening goal in the 9th minute to give the hosts a lead. Later, Raul Jimenez scored in the 67th minute, making it 2-0 for Mexico. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sunil. In a landmark judgment, the Supreme Court of India's call homemakers, nation builders, and quantified their monthly care at 30,000 rupees, reports the Tribune. Union Home Minister Amit Shah has been quoted in the Pioneer as saying that the Armed Forces Special Powers Act will be withdrawn from the entire Northeast next year, barring one or two states. In its editorial piece titled "Green Energy Can't Yet Bend Climate Curve," the Indian Express argues that despite record growth in renewable energy, the world is still failing to slow global warming because major sectors remain dependent on fossil fuels. The paper says the clean energy transition must be accompanied by deeper industrial change, stronger policy support, technological innovation and international cooperation. Anthropic CEO Dario Amodei has sought serious and binding artificial intelligence rules and called for mandatory testing and government powers to block risky systems, reports Financial Express. And finally, the Asian Age has quoted US agency NOAA as confirming that the weather phenomenon El Nino has begun and will intensify into the end of the year, potentially to historic strength. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए ख़तरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वज़ीर ख़ारिजा एस जय शंकर ने मौजूदा महाज़ाराई के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निज़ाम और बैनुल अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर ज़ोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाक़े में मरकज़ ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वज़ीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरूएकार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला ने फ्यूरियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज़ ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए ख़तरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निज़ाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज़ की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मस्नूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखा दही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। ये अनासर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीक़ेकार को मुस्तहकम बनाए और सारफीन को शामिल करने के निज़ाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर ये कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नज़र रखें। शहरियों को ये सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाज़ाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मतनवे सप्लाई निज़ाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जुग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है।
5: पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नज़रिया साज़ क़यादत में मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों का अहम रोल रहा है। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बनाने की सम सरकार की जानिब से किए गए इकदाम की बात कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 साल के दौरान भारत एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह वो जुरतमंदाना इकदाम हैं जो अजाइम को अमल से जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत ने उन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ये बात यकीनी हुई है कि भारत की आवाज़ आलमी प्लेटफॉर्म पर गूंजे। भारत ने मुल्क मुकद्दम के उसूल को सबसे ऊपर रखते हुए खारजा पॉलिसी में नई तवानाई फूंकी और अपने पुराने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ नए दोस्त भी बनाए। भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक्वाय मुत्तहदा के दो इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को बिस्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैरसगाली का एक गहरा मुजाहरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दित्वा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाले किट्स और तकरीबन 4.5 टन अद्वियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदी थुकोव ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदामात के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
5: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में बेशरफ़त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में ख़त्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। ख्वातीन का 10वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय ख्वातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम ख्वातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
4: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजमुल उमूर को तलब किया। ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा मेंबरा ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
5: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए ख़तरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनवे सप्लाई निज़ाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड होने को है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी में गायन। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर अख्तर हसन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे। पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी में गायन का, इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर अख्तर हसन। 9:15 होने को हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।
1: महात्मा गांधी के लिए स्वदेशी व स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नीतियां नहीं अपितु राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता या स्वराज के आधार थे। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का अर्थ अपने स्थानीय संसाधनों और पड़ोसी उद्योगों का उपयोग करना है, जबकि स्वावलंबन का अर्थ अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना है। वे खादी और ग्राम उद्योग को इसका प्रतीक मानते थे। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 से सन 1911 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युगांतकारी आंदोलन था, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना था, जिससे देश में आत्मनिर्भरता आए। यह गांधी जी के आने से पूर्व एक सफल आंदोलनों में से एक था, जिसने देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा की। स्वदेशी व स्वावलंबन में दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि हम आत्मनिर्भर हैं तो हम स्वदेशी भी हैं। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता अर्थात अपने उपयोग की वस्तुओं का स्वयं निर्माण करना, दूसरों पर किसी भी प्रकार से निर्भर न रहना। महात्मा गांधी का मानना था कि आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन एक ऐसा स्वप्न है जो हमारे भारत को उज्जवल बनाने में सहायक है। स्वावलंबन के लिए भारत को अपने उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देना होगा। महात्मा गांधी का कहना था कि स्वराज स्वदेशी स्वावलंबन का मेरे लिए अर्थ है अपने सर्वाधिक दीनहीन देशवासियों की स्वतंत्रता। मुझे केवल भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने में ही रुचि नहीं है, अपितु मैं भारत को सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। मुझे शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है। राष्ट्र को यदि हमें समृद्धशाली बनाना है तो गाँव को एक इकाई के रूप में देखना होगा। प्राचीन काल में भी हमारे देश भारत में प्रत्येक गांव में ही वस्त्र औजार अन्न आदि की जरूरतें पूरी होती थी। विविध जातियों और समुदायों के लोग मिलजुल कर पूरे गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। इसीलिए हमारे देश की ग्रामीण परंपरा अत्यधिक समृद्ध थी। आवश्यकता अनुसार सभी जरूरतें एक गांव में पूर्ण हो जाती थी। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि गांव आत्मनिर्भर बने, किसान सशक्त हों और ग्राम में स्वराज की भावना साकार हो। हिंदुस्तान के महान व सबसे बड़े नेता ने स्वदेशी व स्वावलंबन की बात क्यों की? क्योंकि आजादी के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब देश की संपूर्ण संपदा समृद्धि यहाँ से ब्रिटेन पहुंचाई जा रही थी। हमारी मेहनत, हमारी ऊर्जा, हमारे रत्न सब कुछ निचोड़ कर ब्रिटेन पहुंचाए जा रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, हम स्वदेशी के आधार पर पुनः संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और उन्होंने देशवासियों को चरखे का यंत्र दिया। चरखे के रूप में हमारे देश भारत को एक नया आत्मविश्वास व स्वाभिमान मिला। चरखा केवल एक यंत्र नहीं था अपितु हमारी स्वदेशी उद्यमता का सबसे बड़ा प्रतीक था। हमारे देशवासियों ने अपने कपड़े स्वयं बनाने प्रारंभ किए, जिससे लोगों को काम मिला तथा देशवासियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। आज फिर ऐसा ही समय आ गया है। पुनः स्वावलंबन व स्वदेशी भावना को जागृत करना आवश्यक हो गया है। भारतवासी, भारत की कंपनियां उत्तम कार्य कर रही हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम उत्पादन न कर सकें। हम देशवासियों का कर्तव्य बन जाता है कि स्वदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुटीर उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों से जो सामग्री बनकर आती है उस सामग्री को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम कुटीर उद्योग से जुड़ते हैं ना, तब उन लोगों को हम परोक्ष रूप से मदद करते हैं जो आर्थिक रूप से अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके जीवन को हम गति दे सकते हैं। हमारा किसान, हमारे श्रमजीवी को भी हम मुस्कुराने का सुअवसर दे सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने तंगहाली, अव्यवस्था, महामारी से जूझते जनसाधारण को भुखमरी की ओर धकेल दिया था, उनके रोजगार के अवसर भी छीन लिए थे। धार्मिक झगड़ों में जनमानस को उलझा अपनी ही तिजोरियां भरने का काम किया। इस निसहायता और अपमान के चुंगल से उन्हें स्वआश्रय बनने का रास्ता गांधी जी ने बताया। यदि सभी लोग जिम्मेदारी से अपने उपयोग भर अनाज और वस्तुएं ले तो अनाज और वस्तुओं की तंगहाली को काबू किया जा सकता है। गांधी जी के बताए संयम के विषय में लोह पुरुष सरदार पटेल का मत था कि सरकारी सहायता के बिना अन्न उगाना कठिन तो है, और यदि अन्न उगा भी लें और सही व्यक्ति तक वह अन्न पहुंच जाए, यह भी एक बहुत विकट चुनौती है। हम जहां रहते हैं वहीं हमारी जरूरतों की पूर्ति हो जाए, लेकिन आपसी धार्मिक जातिगत झगड़ों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। जहां जनता को दो वक्त की रोटी ना मिल पा रही हो और रोजगार अनियमित और अल्पकालिक हो, वहां रोजगार उत्सर्जन के लिए गांधी जी ने स्वावलंबन को स्वदेशी से जोड़ा। जन सामान्य के लिए रोजगार और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गांव के आसपास ही पूरी हो, खादी और ग्रामोद्योग से हर घर में रोजगार की आशा जागी। स्वदेशी ही अपनाओ, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करो। गांधी जी अपने जन्म दिवस को चरखा दिवस के रूप में मनाते थे। गांधी जी अपने अंतिम समय तक चरखा कातते रहे और अपने अनुयायियों को भी चरखा कातने को कहते रहे। इनके अर्थशास्त्र के आगे आज तक कोई विकल्प मिला ही नहीं है। चरखे को सत्य, अहिंसा, शांति, समानता, सर्वोदय के रूप में ग्रहण किया था। स्वयं सेवक जन जन तक खादी को पहुंचाते थे। मशीन से बनी वस्तुएं यद्यपि आंखों को भले ही अच्छी लगें, लेकिन हमारे अर्थशास्त्र को बिगाड़ने का कार्य मशीनों ने ही किया। स्वदेशी आंदोलन को बहुत अधिक जन समर्थन मिला। देशवासियों की सहायता करने के लिए लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, विदेशी वस्तुओं को छोड़ा। देश के प्रत्येक कोने में सम्मानपूर्वक जीवन यापन के साधन मिले। साथ ही लुप्त होती लोक कलाओं जैसे हस्तशिल्प, हस्तकला को नया जीवन मिला। यदि खादी से आत्मीयता है तो हमें अपने जीवन में सादगी को महत्व देना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि जब नागरिक शिक्षित, सामर्थ्यवान व स्वावलंबी होंगे, तभी वे पिछड़े साथियों को सहारा दे सकेंगे। जिस व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, उस व्यक्ति का दबाव और अत्याचार बढ़ने लगते हैं। जहां परस्पर विश्वास, सामर्थ्य का नाता है, ऐसे प्रबुद्ध भारत की गांधी जी ने कल्पना की थी। कोई भी व्यक्ति यूं ही महान नहीं बन जाता, उसकी सोच, उसके कार्यकलाप उसे महान बनाते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जिससे व्यक्ति समझौता नहीं करता, चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट झेलना पड़े। गांधी जी सत्य के आग्रही थे। सत्य को वे ईश्वर मानते थे। सत्य उनके लिए सर्वोपरि था। आधुनिक युग में भी महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए नियम व विचार भारत को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद।
0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके हाजिर हाँ मैं जसपाल कौर। ते अज दे प्रोग्राम विच असी सुनांगे एक कहानी, इस तो अलावा पंजाबी फिल्म संगीत भी सुनांगे। अज 12 जून है ते अज दा दिन विश्व बाल मजदूरी रोकथाम दिवस वजो मनाया जांदा है। इस दिन दा मुख उद्देश बाल मजदूरी नू रोकना, लोकां नू इस बारे जागरूक करना अते हर बच्चे नू सिख्या ते एक वधिया बचपन मुहैया करवाउणा है। ए दिन बच्चियां दे अधिकारां दी रक्षा लई एक अहम कदम है। इस दिन दा मुख उद्देश बाल मजदूरी दे माड़े प्रभावां बारे लोकां नू जागरूक करना अते बच्चियां नू काम दी बजाए स्कूल भेजण लई प्रेरित करना भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वल्लों साल 2002 विच इस दिन दी शुरुआत कीती गई सी। अज दा विश्व बाल मजदूरी रोकथाम दिवस सानू ए सुनेहा दिंदा है कि बच्चियां दा बचपन खेडण अते पढ़न लई हुंदा है, ना कि मजदूरी लई। 14 साल तो घट उम्र दे किसे भी बच्चे नू किसे खतरनाक काम विच लगाना एक अपराध है। इस बारे लोकां नू जागरूक करके असी बाल मजदूरी दी रोकथाम विच अपना वडमुला योगदान दे सकते हां, क्योंकि बाल मजदूरी जिथे बच्चियां दे मानसिक अते शारीरिक विकास उत्ते माड़े प्रभाव पौंदी है, उत्थे ही ये बच्चियां नू उन्हां दे बचपन अते भविख दे सुपनियां तों वी वांझा करदी है। ए तां गल होई बाल मजदूरी दी रोकथाम बारे। त्याओ प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला ते गाए फिल्म जी आयां नू दे इस गीत दे नाल।

परेशानी सुनाई। अपने जवाई दे जिद्दी सुभाव नूं जानदे होए उन्होंने कुछ नहीं आख्या। बस एक इतवार नूं आए ते बच्चियां दा बैग पैक करवा के उन्हां नूं नाल लै गए अते जांदे जांदे अपना फैसला भी सुना गए कि हुण बच्चे साढ़े कोल रह के ही अपनी पढ़ाई पूरी करनगे। बच्चे चले गए, घर सुना हो गया। मैनू बच्चियां दी याद बहुत सतांदी पर मैं कुछ नहीं कर सकती सी। कदी राती उठ के उन्हां दे बैड कोल जा उन्हां नूं चादर उड़ाण लई पहुँच जांदी। एक दो वारी ते हड़बड़ी विच सवेरे उठ उन्हां दा टिफिन बनान रसोई विच भी पहुँच गई ते उदास मन नाल वापस आ गई। इन्हां नूं खाण पीन दी परेशानी ना होए इस लई मैं इलाहाबाद बच्चियां नूं मिलन भी नहीं जा पाती सी। हाँ, फोन ते हाल चाल पता लग जांदा सी। वैसे भी बच्चियां नूं नाना नानी ने स्विमिंग, बास्केटबॉल अते डांस की कोचिंग विच पा दिता। उत्थे उन्हां नूं नवे दोस्त मिल गए ते ओ उन्हां विच रुझ गईयां। मेरे कल्लेपन तो बेखबर ए अपने म्यूजिक स्कूल दे कम्मां विच इन्ने बिजी रहन लग गए कि मैं राती 12 बजे तक उन्हां नूं खाना खिलाण लई बैठी रहिंदी। एक दो वारी मैं खाने की प्लेट लगा के सो गई ते इन्हां ने गुस्से विच खाना भी नहीं खादा। एक दिन मेरी बचपन की सहेली कीर्ति दा बेंगलौर तो फोन आया। मैं अपना हाल सुना फुट फुट के रो पई। उन्हें मैनू किसी स्कूल विच नौकरी करन दी सलाह दित्ती। मैं एक प्राइवेट स्कूल विच पढ़ान लग गई। घर दे बोझिल वातावरण तो बचन लई मैं स्कूल दी छुट्टी दे बाद भी रुक के स्कूल दे कई दूजी तरह दे काम भी करन लग गई अते देर नाल घर वापस आउंदी। असी दोनों एक छत दे नीचे रह रहे सी, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे सी। साडे विच चुप्पी दी एक दीवार खड़ी हो गई। इन्हां नूं बच्चियां दी कमी खलदी लेकिन उन्हां बारे पुछद्यां अते उन्हां नाल फोन ते गल करद्यां इन्हां दा अहम अगे आंदा सी। ऐ अपने आप नूं ज़्यादा कम्मां विच खपान लग गए। ना ढंग नाल खांदे, ना पूरी नींद लैंदे। एक दिन अचानक क्लास लैंदे हुए ऐ बेहोश हो गए। मैं खबर मिलदियां ही स्कूल नूं छुट्टी लै जल्दी जल्दी घर पहुँची। कुछ स्टूडेंट्स की मदद नाल एंबूलेंस बुला इन्हां नूं अस्पताल लै गई। डॉक्टर ने दस्या इन्हां नूं ब्रेन हैमरेज का अटैक आया है। 2 दिन ICU विच रखना पिया। इन्हां दे शरीर का दाना हिस्सा पैरालाइसिस की वजह नाल नाकाम हो गया अते जबान भी लड़खड़ान लग गई। शायद भगवान ने मेरे सब्र की एक होर परीक्षा लैनी सी, इसलिए यह दुख भी मेरी चोली विच पा दिता। मैनू इन्हां दी देख रेख लई नौकरी छड़नी पई। म्यूजिक स्कूल भी बंद करना पिया। इन्हां नाल ही सितार, गिटार, हारमोनीयम, तबला सब खामोश हो गए। बच्चियां ते पापा तो इन्नियां नाराज सी कि नाना नानी नाल उन्हां नूं एक वारी वेखन भी नहीं आईया। प्रकाश भी सारा दिन TV दे चैनल बदल बदल के या अखबार विच मुँह छिपा के अपनी बेचैनी छिपाण दी कोशिश करदे। कदी मन करदा इन्हां कोल बैठ के इन्हां दा दुख वंडा, लेकिन जदों याद आंदा कि इन्हां दी जिद दे कारण मेरी बेटियां मेरे तो दूर हो गईयां, उन्हां नूं अपना घर छड्डना पिया, मैं चुपचाप दरवाजे तो वापस चली जांदी। चिंता अते दुख दे कारण मैं अपने आप नूं इन्ना कमज़ोर महसूस करन लग गई कि इन्हां नूं उठान बिठान अते होर नियमित काम करवाण लई एक केयरटेकर रखना पिया। एक दिन मैं खाने की ट्रे लै के इन्हां दे कमरे विच पहुँची ते वेख्या ऐ शिमला विच खिचवाई फैमिली फोटो ते जम्मी होई धूल नूं अपने कुर्ते दी बांह नाल साफ कर रहे ने। मैनू वेखदियां ही छेंप के फोटो वापस रख दित्ती। मेरा मन तो किया मैं इन्हां नूं अहसास दिलावां काश तुसी स्वार्थ तो उपर उठ परिवार दे बारे विच भी सोचा हुंदा ते अज पूरा परिवार तुहाडे नाल खड़ा हुंदा। तुसी नहीं नौकरी करना चाहुंदे सी ते कोई गल नहीं,
मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी करना।

अलका याग्निक दगाया फिल्म सजना वे सजना दा ए गीत हुणे तुसी सुनिया ते हुण प्रोग्राम दे अखीर विच पेशे मोहम्मद रफी ते आशा पोंसले दियां आवाज़ां विच फिल्म सस्सी पुन्नू दा ए गीत दस मेरिया दिलबरा वे तू केड़े अर्श दा तारा।

फिल्म सस्सी पुन्नू दा ए गीत तुसी मोहम्मद रफी ते आशा भोंसले दियां आवाजां विच सुन रहे सी। आस ए कि अज दा ए मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा समा खत्म हुंदा ए। हुण जसपाल कौर नू इजाजत दिओ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाँ, हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे अपने मन की बात, अपने दिल की बात हमारे मेल पर। और जैसा कि इस कार्यक्रम में कहा ही गया है कि आपकी पसंद, तो देखिए बहुत सारी पसंद मुझे नज़र आ रही हैं हमारे मेल बॉक्स में। और इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का दिल से हार्दिक अभिनंदन है, बहुत सारा स्वागत है। और आप सब इस कार्यक्रम का इतने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इस बात को सोचकर तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फिलहाल मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई आपके लिए खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आती हूं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने अतीत में या फिर आपके भविष्य में ज़रूर पहुंचा देता है। आज भी कुछ ऐसा ही है भाई, जून की गर्मियां ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही इसमें सुकून देने वाले समर वैकेशन भी तो चल रहे हैं। तो आप इस समर वैकेशन को कैसे कर रहे हैं इन्जॉय? और जब बचपन में, जब आप छोटे छोटे से थे, तब कैसे करते थे इन्जॉय? इस बात पर अगर आप रोशनी डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। फिलहाल कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कहिए, मेल बॉक्स खुला हुआ है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो दोस्तों, वेलकम बैक। और गानों का कारवां तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ईमेल्स की जैसे बाढ़ ही आ गई है और आप सब ने अपने ईमेल्स थड़ाथड़ हमारे पास पहुंचाने शुरू कर दिए हैं कि सबसे पहले मेरा नंबर आएगा या सबसे पहले मेरा। तो चलिए देखते हैं किसका नंबर पहला आता है। ये हमारे पास जो सबसे पहला मेल आया है वो है हरजिंदर सिंह जी का। ये कहते हैं, आरती जी गुड मॉर्निंग, ऑलवेज बी हैप्पी। और ये कहते हैं, बचपन में समर वेकेशन पर नानी के घर जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे। लिखने वाले हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। जी हाँ, बचपन कुछ ऐसा ही तो था हम सब का। उस टाइम बस पूरे साल जो हमारी मेहनत होती थी, पढ़ाई लिखाई जो होती थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो चिंता इस बात की होती थी कि जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो, जल्दी से मई शुरू हो और उसके बाद मई जून का जो पूरा महीना है वो नानी या दादी के घर, मामा मामी के घर कहीं ना कहीं निकल जाना है और वहाँ पर बहुत ही मस्ती करनी है। भाई, मैं जब छोटी थी मैंने बहुत मस्ती की है। कभी मैं क्रिकेट खेलने जाती थी अपने भाइयों के साथ और अपने और जो छोटे छोटे दोस्त थे उस टाइम के उनके साथ, तो कभी हम आम के बगीचे में भी जाते थे क्योंकि हमारे मामा का एक गांव था जहां पर जाकर ये छोटी छोटी मस्तियां हम लोग करते थे। कभी कैंडी खाते थे, कभी गोला खाते थे और उसके बाद आवाज़ ख़राब कर लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मस्ती रुकती नहीं थी। तो ऐसे ही समर वेकेशन को लेके हर बच्चा जो होता है ना वो उत्सुक होता है। उसे एग्ज़ाम से भी ज़्यादा जो चिंता होती है वो अपनी छुट्टियों की होती है कि छुट्टियों में उसे क्या क्या करना है, पूरी प्लानिंग होती है। तो आपने भी की थी क्या कोई प्लानिंग ऐसी? आप हमसे शेयर कर सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। और फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ। ये हमारे पास आया है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का।

सीरियसली वो दिन भी क्या दिन थे, जब भी याद करते हैं पता नहीं चेहरे पे अपने आप मुस्कान कहाँ से आ जाती है, कहाँ से उन लम्हों में घुसते ही ऐसे लगता है कि फिर से बच्चे बन गए। फिर से वो छोटी छोटी यादें जो बचपन की शरारतें थी, डांट थी, वो सब याद आने लगती हैं। कैसे छतों पे सो जाते थे हम लोग, आज छतों पे जाना मुश्किल है। शायद बहुत सारे लोगों ने तो अपनी छत देखी भी नहीं होगी, आज के हालात ये हैं। लेकिन एक वक्त था पूरी पूरी रात छतों पे गुजर जाती थी, कभी कहानियाँ सुनते हुए, कभी सोते हुए, कभी तारे गिनते हुए। तो बहुत सारी यादें हमारे पास बची हुई हैं जो बचपन की हैं, समर वेकेशन की हैं, और उसी को ताज़ा करते हुए हमारे पास ये संदेश आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय कहते हैं आदरणीय दीदी आरती गौर जी को गुड मॉर्निंग। आपने टॉपिक बहुत अच्छा चुना है। हम लोग गर्मियों में छुट्टी बिताने के लिए ननिहाल जाते थे, खूब मस्ती करते थे, हम लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कृपया आप हम लोगों का कोई भी गीत जो है वो सुनवा दीजिए। तो भाई इतने सारे गीत आप सबकी पसंद पर ही चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सबको बचपन में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की ओर। ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी लिखते हैं शांतिनगर सोनीपत से। कहते हैं बचपन और समर वेकेशन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सीरियसली ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि ना तो अब बचपन दोबारा आने वाला है और ना ही वो समर वेकेशन, क्योंकि आज समर में भी हम काम कर रहे होते हैं और सिर्फ याद कर रहे होते हैं अपने बचपन को। तो जिस बचपन की बचपन में कद्र नहीं थी हमें, वो हमें बड़े होने के बाद याद आई है। और अक्सर यही तो होता है कि जब चीज़ गुजर जाती है, हमसे छिन जाती है, तब हमें उसकी जो कदर होती है वो महसूस होती है, और बचपन भी उन्हीं में से एक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास संदेश आया है, आजकल की छुट्टियों का स्वरूप। ये लिखने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सिंह। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, जैसे कि ये कहते हैं कि आजकल की छुट्टियों का स्वरूप काफ़ी हद तक डिजिटल और सुविधा आधारित हो गया है। बच्चे अपना अधिकतर समय वीडियो गेम खेलने, सोशल मीडिया चलाने, वेब सीरीज़ या सोशल मीडिया देखने में बिताते हैं। इसके साथ ही गर्मी के कारण बाहर नहीं जाते बच्चे, एक्टिविटीज़ भी घर के अंदर ही सिमट के रह गई हैं, वो बोर्ड गेम्स या ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो बता रहे हैं कि छुट्टियों का मुख्य हिस्सा था नानी या दादी का घर, जहां कजिन्स के साथ पूरा दिन मौज मस्ती होती थी, कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा, लुका छिपी, पतंग उड़ाना, ये सब बहुत किया है। और साथ ही कहते हैं कि तब कूलर या एसी नहीं होते थे, इसलिए लोग मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे और शाम को घर की छतों या आंगन में सोते थे। तो पुराने समय में पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना भी बनाता था, कहानियाँ सुनाई जाती थी, कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं थी, इसलिए आपसी बातचीत और खेल ही मनोरंजन का साधन थे। कालका से लिखने वाले हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है। आज के बच्चों को शायद बचपन का मतलब ही पता नहीं है, या ये कहिए कि आज की भागदौड़ की जिंदगी उन पर भी असर कर गई है। उन पर भी इस तरीके से वीडियो गेम्स और जो क्या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसके साथ ही आजकल समर में भी क्लासेस चल रही होती हैं उनकी, तो वो बेचारे बच्चे अपना बचपन जिए कहाँ से। और कहीं ना कहीं जब हम लोगों से कटते जाते हैं तो रिश्तों से भी बढ़ते जाते हैं। यही चीज़ आज के बच्चों में हो रही है, वो जितने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उतना ही अपने आसपास की दुनिया से डीएक्टिव हो चुके हैं।

चलिए बढ़ते हैं आप सबके संदेशों की तरफ जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि ये संदेश हमारे पास आया है गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिखने वाले हैं। साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो हैं गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगेराम सतौर रतु सिंह। कहते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद बहन आरती गौड़ की प्रस्तुति में चल रहा है, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन और इनको अच्छा लग रहा है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चलिए थैंक यू सो मच। और कहते हैं हम कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम में चार चांद लग रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आप सबके संदेशों को और इन खूबसूरत से गीतों को सुनकर, लेकिन और भी मज़ा आएगा अगर जो टॉपिक मैंने आपसे पूछा है उस पर अगर आप अपना जवाब देंगे। और मेरे ख्याल से आप सबके पास बचपन की यादें तो भरपूर भर भर के होंगी, आप बस अपना दिल का बक्सा खोलिए और देखिए एक के बाद एक बचपन की यादें कैसे निकल निकल के उछल उछल के हमारे संदेशों में आ जाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी जुड़े हैं। इसके साथ ही वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ अगले जो श्रोता हैं वो हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं अपनी अपनी पसंद लेकर, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे कि बचपन के वो दिन क्या थे, उसके बारे में भी कुछ हमें बताइए।

ये जो हमारे पास संदेश आया है ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार का। कहते हैं बेहतरीन विषय पर चर्चा हो रही है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम इनको लग रहा है, बेहतरीन नगमे भी लग रहे हैं। साथ ही कहते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता था, बचपन का आनंद अलग ही होता था। जी हाँ, बचपन का आनंद अपने आप में अलग ही है, क्योंकि ना तो किसी जिम्मेदारी की टेंशन, ना ही किसी और बात की। अगर टेंशन होती थी तो सिर्फ पढ़ाई की और उस डांट की जो मम्मी पापा से हमारी शरारतों के बाद पढ़ने वाली होती थी। बाकी किसी चीज़ की टेंशन तो हमने कभी ली ही नहीं बचपन में। तो ऐसे ही बचपन आपने भी गुजारे होंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लम्हे आपके पास होंगे जो आप चुन चुन कर हम तक पहुँचा सकते हैं।

और ये हमारे पास जो संदेश आया है वो है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक का। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा उर्फ नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भावेक सिक्का जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू जुड़े हैं रघुवीर नगर से। साथ ही जुड़े हुए हैं ये है हमारे साथ रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया और कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू के साथ समस्त परिवार जो है कठेरिया परिवार वो जुड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि इस समय हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाते क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक हाथ पैर टूट गया और इसीलिए हम घर पे हैं। लिखने वाले हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। तो भाई मैं चाहूँगी, पूरी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और फिर से ज़िंदगी का मज़ा लें, इंजॉय करें। और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ, आपका जल्दी से ये जो हाथ पाँव जो भी आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है इससे आपको भगवान जल्दी से ठीक कर दें। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे पास हैं वो हैं श्री सुधाकर, राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी और कल्पना। लिखते हैं ये समस्त राजे यादव देशमुख वायल परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ श्रोता नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख, फारुक, शबनम और शहनाज जुड़े हैं। लेबई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, ये कहते हैं आरती जी हम बचपन में अपने नानी के घर जाते थे तो उस समय तिल वाला टेप रिकॉर्डर का समय था, तिल वाला खूब गीत सुनते थे और फिर गर्मी लगने पर तालाब में जाकर खूब नहाते थे जब तक आँख

साल ना हो जाए तब तक बहुत मज़ा आता था। बस वो दिन भी क्या दिन थे। जी हाँ, वो दिन अपने आप ही कुछ ना कुछ याद जब आते हैं तो आँख में एक तरफ तो आंसू होते हैं और दूसरी तरफ चेहरे पर मुस्कान होती है। सच में वो दिन क्या दिन थे।

ये जो हमारे पास संदेश आया है वो है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव निदान खुराना लिखते हैं, आरती गौर जी नमस्कार। बचपन तो नो टेंशन वाला होता था, आज भी याद है क्रिकेट खेलना ग्राउंड में पता ही नहीं चलता था, रात भी हो जाती थी और घर से दूर रहते थे, मम्मी पापा की डांट एक कान से सुन के निकाल देते थे और दूसरे का दिन फिर से नई दिन की शुरुआत और कंचे खेलना छुपा छुपी खेलना शुरू हो जाता था। जी हाँ, बचपन ऐसा ही होता था, पहले का तो ऐसा ही होता था, आज का बचपन थोड़ा अलग है, या ये कहिए कि कहीं ना कहीं आजकल बचपन जीना भूल चुके हैं।

जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जगपाल, ये खलीफों की बावड़ी से वृक्ष खलीफा रेडियो दीवाना ये जुड़े हुए हैं और साथ में ये लिखते हैं कि उस समय बच्चों का असली संसार घर के बाहर की गलियों और मैदानों में बसता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप हो या सुहानी शाम, बच्चे टोली बनाकर घर से निकल जाते थे। वीडियो गेम की जगह पारंपरिक खेलों का राज था, जैसे कि कंचे, गोली, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, आई स्पाई। बचपन में तो मुझे आई स्पाइस बोलती थी मैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बोलते होंगे, वो तो बड़े होने पे पता चला कि वो आई स्पाई नहीं, आई स्पाई होता है, लेकिन आदत तो वही पड़ी हुई थी। और खो खो भी खेलते थे, इन्होंने ये बताया है, पिट्टू और सतोलिया और लट्टू घुमाना, कागज़ की नाव, पतंग बाजी। अरे भाई, आपने इतनी सारी चीज़ें लिखा बता दी हैं कि सब कुछ याद आने लगा है कि सच में कितनी बदमाशी करते थे हम लोग, कितनी शैतानी करते थे।

और सच में कोई महंगे खिलौने नहीं होते थे, मिट्टी लकड़ी या पुरानी कबाड़ की चीज़ें जैसे टायर का पहिया ही होते थे, और वो खिलौने हम बच्चों ने खुद ही ईजाद किए होते थे, लेकिन उन्हें ही खेलने में ऐसा सुकून मिलता था कि जैसे मानो पता नहीं क्या ही हो गया हो।

अगला संदेश हमारे पास आया है, ये है बचपन की वो सुनहरी शामें, गली में खेलते दोस्त, मासूम हंसी और बेफिक्र जिंदगी, छत पर पतंगे, हाथों में डोर, दोस्तों की टोली और आसमान भरे सपने, बचपन की खूबसूरत यादें। और ये हमारे साथ साझा की है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा ने। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो हैं बड़ा बम चौक खंडवा से ममता बमार कंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र वन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम आशीष, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जो और दूसरे श्रोता जुड़े हैं उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सा पोस्ट हमें लिखकर भेजा है, वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगी, लेकिन पहले पहुँचाती हूँ ये गीत।

ना दोस्तों, हम इंसान भी ना अजीब हैं। जब छोटे होते हैं तो बड़े होने की बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी से बड़े हो जाएं तो हमारा भी जीवन बड़ा अच्छा होगा, लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, वो जीवन ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें जो हमारे साथ था ना, वो अब हमारे साथ है ही नहीं। यानी कि वो मासूमियत, वो दोस्ती जो बिल्कुल सच्ची थी, ज़रा सी बात पे कट्टी बट्टी करके वो टूट जाती थी और थोड़ी ही देर में हम भूल जाते थे कि हमारा तो झगड़ा भी हुआ था साथ वाले से। बस ऐसी ही जो बचपन की यादें हैं ना, और बचपन के वो प्यारे प्यारे दोस्त जो जिनमें से कुछ तो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ न जाने कहाँ अतीत की गलियों में गुम हो गए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, जब याद करने बैठो तो एक एक याद आता है। लेकिन फिलहाल अभी मेरा ध्यान जा रहा है आप सबके संदेशों की तरफ। ये है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बॉय हिमाक्ष का। इसके साथ ही जुड़े हैं गांव लोगा ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। इसके साथ अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो बार बार अपना संदेश भेज रहे हैं, तो मैं आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ और इस बार भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट आप सुनेंगे कि बार बार अपने संदेशों को ना भेजें। एक या दो बार से ज़्यादा अगर भेजते हैं तो फिर बाकी सारे श्रोता जो है ना वो डांटने लगते हैं कि भाई हमारा मेल तो नहीं लिया, आप बार बार उनका मेल ले रहे हो। तो भाई आप जब 12, 15, 20, 25 मेल भेजेंगे तो बाकी नए श्रोताओं का मेल तो इधर उधर हो ही जाएगा ना, तो कोशिश कीजिए एक या दो से ज़्यादा बार नहीं भेजिए। हमारे पास अगले जो श्रोता हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये चंडीगढ़ सिटी से जुड़े हुए हैं।

0: दोस्तों, जब बचपन की बात हो और उसमें कहानियों की बात ना हो तो बिल्कुल अधूरी सी वो बात लगती है, क्योंकि बचपन में हमारे पास कहानियाँ भी बहुत सारी होती थी। कुछ हम खुद बना लेते थे जो आज भी याद करते हैं, और कुछ सुनाती थी हमें हमारी नानी और दादी। तो ऐसी कहानियाँ हमारे पास बहुत सारी होती थी। फिलहाल मेरे पास एक संदेश है, और वो संदेश है मेरी अपनी एक श्रोता साथी जो कि आपको भी कार्यक्रम सुनवाती हैं। नाम है उनका अर्चना गुप्ता, और वो भी इस कार्यक्रम को बड़े गौर से सुन रही हैं, और साथ में वो अपने बचपन को भी हम तक पहुंचा रही हैं। कहती हैं, बचपन में हम अपने मामा के घर जाते थे। दिन में तो हम सभी कजिन्स इंडोर गेम्स खेलते थे क्योंकि बाहर गर्मी होती थी, और शाम को हमारे मामा हमें आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाते थे और पार्क ले जाते थे। खूब मज़ा आता था। आज वो सभी चीज़ें ये मिस करती हैं। जी, आप ही नहीं मिस करती हैं बल्कि मैं भी मिस करती हूँ, और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी होंगी जो आज वो चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 9 to 5 में बंधे हुए हैं, कहीं वो जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, और कहीं उनके अंदर जो बच्चा है ना, वो बाहर निकल के आ ही नहीं पा रहा है। तो कुछ ऐसे हालात में हैं, तो आप ही नहीं मैं भी मिस करती हूँ। और ये हमारी साथी जो हैं, ये आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी लेकर आती हैं, लेकिन आज ये इतना प्यारा संदेश लेकर आई हैं कि मुझे भी सच में भावुक कर दिया।
1: आगे भी तो बोलो ना।
2: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।

ये कहानियाँ तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन कहानी सुनते सुनते आपके संदेशों को मैं लेना नहीं भूलूंगी। ये हमारे पास दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का मैसेज आया है। इसके साथ ही हमारे पास मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ये भी जुड़े हुए हैं। साथ ही जुड़े हुए हैं ये कठेरिया परिवार, जिनका संदेश हम ले चुके हैं पहले ही, शायद इन्होंने मिस कर दिया लेकिन मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया है। अगला जो संदेश है वो है, नमस्कार, बचपन की बहुत सी यादें होती हैं जो समय और जिम्मेदारी में धुंधली हो जाती हैं। लिखना है डीबी रैना और नेहरू विहार दिल्ली से, ये लिखने वाले डीबी राणा, माफ़ कीजिएगा। और इसके साथ ही जो अगले संदेश हमारे पास आए हैं वो है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा।

हरी परी कौर जी, ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारी यादें हमारे साथ शेयर करी हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। फिलहाल आप इस कहानी को जरा पूरा कीजिए।

बात तो सच है कि अब जो बीत गया है वो हम चाह कर भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये बात भी एकदम सच है कि दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, अपने दिल के इस बच्चे को बाहर निकालिए। दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ जो है वो यूं ही चलती रहेगी और इस भागदौड़ से हम बच नहीं सकते। बचपन से लेके जब तक हमारा जीवन है तब तक एक ना एक मुश्किल, एक ना एक चक्र हमारे जीवन में आता रहता है, लेकिन उन्हीं पलों में से आपको चुरानी होती हैं खुशियाँ। अब बचपन वापस नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि बचपना वापस नहीं आ सकता। आप अपना बचपना जिंदा रख सकते हैं, इसीलिए मैं कहूँगी कि इस वीकेंड थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने पुराने दोस्तों को कॉल कीजिए, और अगर आपके कजिन्स का जमावड़ा अभी भी आपके साथ है तो जल्दी से उनका एक ग्रुप बनाइए, अपनी यादों को जिंदा कीजिए, और इस गर्मी अगर आपके पास मौका है, वक्त है, दस्तूर है, तो फिर यादों के समर वेकेशन को मनाने एक बार फिर से निकल जाइए। और यकीन मानिए, ये भी आपकी ज़िंदगी में एक नई याद ही नहीं बल्कि एक नई ताजगी शामिल कर देगा। ज़िंदगी का सफ़र यूं ही हंसते खेलते निकल जाएगा और आपका बचपना भी आपके साथ जिंदा रहेगा ताउम्र, अगर आप रखना चाहें तो। तो फिलहाल इसी बहुत सारे मोटिवेशन के साथ आपसे लेनी होगी मुझे विदाई, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्यक्रम आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम से आपकी पसंद से अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द दोबारा हमारी मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते ही रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ चिल करते रहिए, इंजॉय करते रहिए, और अपने सिर्फ बचपन को ही नहीं बल्कि जो वक्त आपके पास है ना उसको भी प्यार से गुजारते रहिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमरीकी सीनेटर और बड़ी अमरीकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा

दोस्तों, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सा जो गीत था ये आपने सुना। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में, मैंने पायल है छनकाई।

श्रोताओं, अभी आप जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल सुन रहे थे। कार्यक्रम था सबरस, और इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 11:30, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य द्वारा सितार वादन का राग भीम पलासी, तबले पर संगत अनूप घोष की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना चंद्रनाथ भट्टाचार्य द्वारा सितार वादन, राग था भीमपलासी, तबले पर थे अनूप घोष। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं वही आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। हमारी जिंदगी की जड़ें भी हमारे बुजुर्ग ही हैं। उनके अनुभव, उनकी सीख, उनकी दुआएं और उनका स्नेह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बढ़ाएंगे एक ऐसा कदम जो सम्मान का भी है, संवाद का भी और अपनत्व का भी। आइए दिल से जुड़ते हैं उन हाथों से जिन्होंने हमें चलना सिखाया और उन आँखों से जिनमें आज भी हमारे लिए ढेरों दुआएं बसी हैं। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों के लिए में। कहते हैं बस उन्हीं की आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और अब हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

रीना लैला को आप सुन रहे थे फिल्म घरांदा में। और देखिए, प्यार हमें आपसे है और बेशुमार है। अब कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से ज़रूर हुई है, लेकिन आपका और हमारा प्यार तो इतना ज़्यादा है कि उसका तो खैर कोई सानी ही नहीं है। तो आपका प्यार हम तक पहुंचता कैसे है? जी हाँ, पहुंचता है आपकी ईमेल के माध्यम से। तो हमारी ईमेल आईडी आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ आपको, वो है fmgoldga@gmail.com। तो इंतज़ार है आपकी बातों का, आपकी कमेंट्स का और आपकी प्रतिक्रियाओं का। दोस्तों, आज शुक्रवार है, आप सभी जानते हैं, और ये दिन है समर्पित किनको? जी हाँ, हमारे बुजुर्गों को। लेकिन ना, आज की तारीख है 12 जून, और आपको पता है आज हम एक और विशेष दिवस है आज के दिन, और वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बचपन हाथों में मेहनत का बोझ नहीं, सपनों की उड़ान मांगता है ना? और इस वर्ष की जो थीम है ना, वो है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। यह थीम इस बात पर जोर देती है दोस्तों कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन मिले, और परिवारों को ऐसा सम्मानजनक रोजगार मिले कि बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो आइए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और मुस्कुराने का अधिकार मिले। जी हाँ दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। कभी उम्र को केवल जीवन की संध्या माना जाता था, लेकिन आज बदलते समय के साथ ना, यह धारणा भी बदल रही है। वरिष्ठ नागरिक अब केवल अनुभव के धनी ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी देखे जा रहे हैं। और इसी सोच से जुड़ा है एक बेहद नया शब्द, और वो है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का संबंध ना उन सेवाओं, सुविधाओं और उत्पादों से है जो विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। इसमें ना स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पर्यटन, डिजिटल सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, सहायक उपकरण और देखभाल से जुड़ी इनकी अनेक गतिविधियां शामिल हैं। भारत में ना वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह जो क्षेत्र है ना, यह तेज़ी से बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त कर रहा है। आज ना अनेक ऐसी संस्थाएं हैं और ऐसे उद्योग हैं जो ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों को और अधिक सुरक्षित, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता प्रदान कर सकें। दरअसल उम्र केवल ना वर्षों की गिनती नहीं होती, ये होती है अनुभव, ज्ञान और जीवन की समझ का खजाना। इसीलिए ना बहुत ज़रूरी है कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही हमारे वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं को समान महत्व दें। अब ना जो सिल्वर इकोनॉमी है, इसी दिशा में एक बहुत पॉजिटिव पहल है, और यह जो संदेश देती है कि बढ़ती उम्र केवल देखभाल का विषय नहीं है, बल्कि अवसरों और संभावनाओं का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है ना? और जब हमारी सोच और हमारे बुजुर्गों की इच्छाएं और उनकी ज़रूरतें एक साथ मिल जाती हैं, तो उनका मेल ऐसे हो जाता है जैसे फूल के साथ खुशबू, है ना?

फिल्म प्रेम गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव की अपनी गति और अपनी ज़रूरतें होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में हर बात उपलब्धि या प्रदर्शन से नहीं बल्कि संतुलन और सहजता से भी जुड़ी होती है। शायद योग हमें भी यही सिखाता है।

अक्सर योग का नाम आते ही ना कठिन आसनों की तस्वीर मन में उभरती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग का अर्थ कुछ और है। ये शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार सक्रिय बनाए रखने, श्वास पर ध्यान देने और मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। योग हमें ना अपने शरीर की सुनना सिखाता है। जी हाँ, ये हमें ये बताता है कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। आइए हम ये सुने। ये बताता है कि हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना जीवन भर दूसरों के लिए समय देना। बढ़ती उम्र में योग लचीलेपन की प्रतियोगिता नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये शरीर और मन के साथ एक सहज संवाद का माध्यम है दोस्तों, और ना कुछ सरल अभ्यास, नियमितता और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बना सकते हैं। आखिरकार योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं होता, बल्कि स्वयं के साथ ना एक सामंजस्य स्थापित करने की एक बहुत सुंदर सी प्रक्रिया है। इसीलिए बढ़ती उम्र में योग का अर्थ लचीलापन नहीं बल्कि सहजता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत योग अपने जीवन में ज़रूर उसको स्थान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारे शरीर का दर्पण है। और हमारा जो हमारी आत्मा अगर स्वस्थ होगी तो हमें अपने आप उस परमपिता के दर्शन हो जाएंगे, है ना।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये सुमधुर गीत। दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक बहुत ही नियमित श्रोता जुड़ चुके हैं और वो बहुत खूबसूरत शब्दों में हमें एक संदेश देते हैं। वो लिख रहे हैं, वरदान, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निःशब्द तुम्हारे सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर दे। बस क्या बात है। नमस्कार, आप हमें नमस्कार लिख रहे हैं और ये कौन है? ये हैं, जी हाँ, नवीन भाटिया जी, मोतीनगर, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, हमारे साथ हर दिन बने रहने के लिए। और हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, ये हैं गौरी शंकर जी, नांगलोई से। लिखते हैं, सोनाली बेटा, राम राम। आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, अगर इस पर अमल करें तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। लेकिन आज के समय में फ़र्क है, मैं तो यही कहूँगा, अपने साथियों को, बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन पर कोई दबाव मत दो, तभी आपकी ज़िंदगी खुशी से गुजर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी जानते हैं हम सुन रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आज हमारे आसपास इसके कई सुंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। एक समय था ना जब चिट्ठियों का इंतज़ार हुआ करता था, फिर टेलीफोन आए और अब मोबाइल ने दुनिया को अपनी हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। आज बहुत से बुज़ुर्ग इस नई दुनिया के साथ कदम मिला रहे हैं। कोई वीडियो कॉल पर दूर बैठे बच्चों से बात कर रहा है, तो कोई ना मोबाइल से बिल जमा कर रहा है, तो कोई नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा है और ये बदलाव बहुत खुशी देता है ना। लेकिन हर नई राह की तरह इस राह पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। कई बार फ़ोन संदेश या लिंक के ज़रिए लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, OTP या बैंक से जुड़ी बातें साझा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कोई बात समझ में ना आए ना, तो आप बस झिझके मत, अपने बच्चों, परिवार या बैंक से पूछ लीजिए। देखिए, एक सवाल पूछ लेना बाद में परेशान होने से कहीं बेहतर है। नई तकनीक से डरने की नहीं, उसे दोस्ती करने की जरूरत है ना। और बस इतनी सी बात याद रखिए कि समझदारी और सावधानी दोनों साथ रहें। दुनिया बदल रही है और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बुजुर्ग भी उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि सीखने, समझने और आगे बढ़ने का सफ़र कभी रुकता नहीं है। और जब इस सफ़र में आपके साथ हम सफ़र हो FM गोल्ड, तो क्या बात है, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए सदाबहार गीत। तो आइए अब सुनते हैं एक और बहुत ही सदाबहार गीत।

फिल्म लव इन टोक्यो में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, और आज आपके साथ मैं हूँ, जी हाँ, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कहते हैं घूमने फिरने का शौक उम्र नहीं देखता, बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा फुर्सत मिलने के बाद ही उन्हें घूमने का असली मौका मिलता है। नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभव हासिल करना हर उम्र में अच्छा लगता है। हाँ, बढ़ती उम्र में सफ़र पर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूर ज़रूरी है ना? घर से निकलते समय अपनी दवाइयाँ साथ रख लें और मौसम के हिसाब से तैयारी ज़रूर कर लें। अगर किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो घर वालों को अपनी इस यात्रा की जानकारी देकर ही जाएं। सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा सामान उठाने से बचें, मोबाइल साथ ज़रूर रखें, और हाँ, ज़रूरी नंबर उसमें सेव हों तो और अच्छी बात है। अगर थकान जरा सी भी महसूस होना तो कहीं पर भी ना रुक कर थोड़ा सा आराम

जरूर करें। सफर का मजा तभी है जब हम उसे आराम से जिए, है ना। मतलब भागा दौड़ी ना करें, अपने शरीर का जरूर ख्याल रखें, और जहां भी थोड़ी सी भी आपको लगे कि कुछ उलझन सी हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप वहीं रुक जाइए और थोड़ा सा सांस ले लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। घूमना फिरना सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं है, ये तो आप मानेंगे ना। यह रोज़मर्रा की दिनचर्या से ना थोड़ा बाहर निकलने, नई ऊर्जा महसूस करने और अच्छी यादें बनाने का भी एक जरिया है। इसीलिए उम्र चाहे जो भी हो, अगर सफर का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। बस थोड़ी तैयारी और थोड़ी सावधानी के साथ निकल पड़िए एक नई मंजिल की ओर, क्योंकि आपको क्या पता जीवन के किस मोड़ पर कौन कहाँ आपसे मिल रहा है।

आप सुन रहे थे फिल्म झूठा कहीं का। इस फिल्म में किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। हमारे साथ हमारे ना एक और दोस्त जुड़े हुए हैं, वो है सुदर्शन मुखी जी। उनके साथ है अनिता मुखी और सिमरन मुखी, और ये हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इन्हें सारी बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं। ये आज के समय की एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार ना इस दूरी के साथ एक खालीपन भी महसूस होने लगता है। ऐसे में यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दूरियां हमें रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती। जी हाँ, दूरियां हमारे रिश्तों को कभी कमज़ोर नहीं करती। आज ना फ़ोन, वीडियो कॉल और संदेशों के ज़रिए अपनों से जुड़े रहना पहले से कहीं आसान हो गया है ना। और कई बार ना दिन भर की बहुत, अगर हम बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहते हैं, तो इसके बीच में कुछ मिनट अपने दोस्तों से या अपने लोगों से, अपने बच्चों से बातचीत करके ना दिल में एक बहुत अलग सी शांति और सुकून हमें मिलता है। बढ़ती उम्र में ना दोस्तों, पड़ोसियों और अपने शौकों से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये आप हमेशा याद रखिए, जीवन केवल बच्चों की इर्द गिर्द नहीं घूमता। हाँ, उसमें अपने लिए भी एक जगह होनी बहुत ज़रूरी है। अकेलापन तब ज़्यादा महसूस होता है जब हम खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। इसीलिए लोगों से मिलते रहिए, अपनी पसंद की गतिविधियों में हिस्सा लीजिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए। बच्चे भले दूर हों, लेकिन रिश्तों की गर्माहट दूरी से कम नहीं होती। कभी एक फ़ोन कॉल, कभी एक मैसेज और कभी एक छोटी सी मुलाकात भी दिलों को करीब बनाए रख सकती है ना। तो बस यही आप हमेशा सोचते रहिए, देखते रहिए, लोगों के साथ मिलते रहिए और अपनी ज़िंदगी में प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि इस समय में आपका हम सफ़र अगर आपके साथ है तो इससे ज़्यादा भली बात और कोई हो ही नहीं सकती। अपने उस जीवन साथी का साथ हमेशा निभाते रहिए, उसके साथ समय बिताइए और जीवन के इस पड़ाव को उतने ही प्यार और खूबसूरती के साथ जिए जिस तरह अपना आप पूरा जीवन जीते आए हैं।

फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, इसमें आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। अच्छा दोस्तों, कभी संगीत सुनने का शौक था, कभी बागवानी का था, कभी डायरी लिखने का या कुछ नया पढ़ने का शौक था। था क्यों? है होना चाहिए ना। जी हाँ, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के बीच ना ये शौक कहीं आपके पीछे रह गए ना, लेकिन अब तो समय है, आप इन्हें फिर से अपना सकते हैं। संगीत मानेंगे ना, मन को सुकून देता है। बागवानी जो होती है वो हमें हमारी प्रकृति के बहुत करीब ले जाती है। और अगर आप लिखने के शौकीन हो तो क्या बात है, अपने मन की बात कहने का ये एक सुंदर जरिया बन सकता है। ऐसे शौक न केवल समय को हमारे सार्थक बनाते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी भरते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका शौक बहुत बड़ा हो, कभी किसी पुराने गीत को सुन लेना। और अगर पुराने गीत सुनना है तो आपको कहाँ बने रहना है? हाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तो किसी पौधे की देखभाल कर लेना या फिर दिन भर के अनुभवों को कुछ पंक्तियों में लिख लेना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जीवन की खूबसूरती यही है कि सीखने और नए अनुभवों के लिए कभी देर नहीं होती। इसलिए अगर कोई पुराना शौक आज भी दिल के किसी कोने में दस्तक देता है ना, तो उसे फिर से अपनाने में संकोच कैसा। कभी कभी वही पुराने शौक जीवन में नई खुशियां लेकर आते हैं, है ना।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, हम आपके साथ एक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहते हैं, और वो है, जी हाँ, जीवन प्रमाण यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधा। अब क्या हो रहा है ना कि समय के साथ बहुत से काम आसान होते जा रहे हैं और तकनीक का लाभ अब हमारे बुजुर्ग लोगों तक भी पहुंच रहा है। ऐसी ही एक सुविधा है जीवन प्रमाण, जो पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। अब क्या होता है, पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को हर साल ये प्रमाण देना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। पहले इसके लिए बैंक या हमें संबंधित कार्यालय में जाकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, लेकिन अब ना जीवन प्रमाण की डिजिटल सुविधा ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जिसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इससे हमारे बुजुर्गों को बार बार बैंक या कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सुविधा ना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें किसी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण बाहर जाने में कठिनाई होती है। तो आप जीवन प्रमाण से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है ना, जी हाँ, jeevanpraman.gov.in पर भी जा सकते हैं। वहाँ इस सुविधा से संबंधित बहुत सारी आपको जानकारियाँ बहुत विस्तृत रूप में मिल जाएंगी। और नई चीज़ें सीखने और अपनाने की कोई उम्र नहीं होती, हम बार बार आपसे यही कहेंगे। और जब तकनीक जीवन को सरल बनाने में मदद करे, तो उससे दोस्ती कर लेना ही सबसे बेहतर है।

जी हाँ, आप ही के जादू के साथ इस कार्यक्रम को हमने पूरा पूरा किया और अब देखिए घड़ी हमें इशारा नहीं करती कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो बस आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग-अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NETUG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities, such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded, as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization, IMO, Arsenio Dominguez, has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakkar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में प्रेम कहानियां तो बहुत बनी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्म ख़त्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। कहते हैं कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं और कुछ रिश्ते वक्त से भी बड़े होते हैं। आज जिस फिल्म की बात हम करने जा रहे हैं उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा प्रेम जो बिछड़ता है, इंतज़ार करता है लेकिन हार नहीं मानता है और फिर किस्मत उसे दोबारा मिलाने का रास्ता खोज ही लेती है। आज हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी 1967 की चर्चित फिल्म मिलन की, जिसका निर्माण किया था दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर LV प्रसाद ने। फिल्म के लेखन में अथरैया मुलापुड़ी, अदुरुथि सुब्बा राव और वीरेन सिन्हा का योगदान रहा। यह फिल्म 1963 की चर्चित तेलुगु फिल्म मूगा मानसूल का हिंदी रूपांतरण थी। खास बात यह है कि दोनों फिल्मों का निर्देशन अदुरुथि सुब्बा राव ने ही किया था। अपनी ही फिल्म को दूसरी बार दूसरी भाषा में दोबारा बनाकर उसे भी उतना ही सफलता दिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रेम, विश्वास और पुनर्जन्म के ताने बाने से बुनी गई मिलन उस दौर की उस चुनिंदा फिल्मों में से थी जिसने दर्शकों को सिर्फ भावुक ही नहीं किया बल्कि उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि शायद कुछ रिश्ते सचमुच जन्मों के लिए बने होते हैं। तो दोस्तों, अगले 29 मिनट 30 सेकंड तक मेरे साथ बने रहिए और चलिए निकल पड़ते हैं फिल्म मिलन के उस सफ़र पर जहां प्यार, संगीत और यादें हर मोड़ पर आपका इंतज़ार कर रही है। इस सफ़र का आगाज़ करते हैं फिल्म के एक बेहद सुरीले और दिल को छुलाने वाले गीत के साथ।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।
2: पवन करे शोर।
1: हाँ।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज की जो हमारी फिल्म है वो है मिलन, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब जिक्र करते हैं मिलन के कलाकारों की। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, नूतन, यमुना, प्राण और देवेन वर्मा। वहीं सहयोगी कलाकारों में थे सुरेंद्र, श्यामा मुकरी, लीला मिश्रा और डेविड अब्राहिम जैसे अनुभवी कलाकार, जिन्होंने अपने छोटे छोटे लेकिन अहम किरदारों से कहानी को और मजबूत बनाया। अगर बात करें नूतन की, तो वो अपने सहज और स्वाभाविक अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। मिलन में उन्होंने राधा का किरदार निभाया। राधा की मासूमियत, उसकी भावनाएं, उसके मन का दर्द, उसका प्रेम, नूतन ने इन्हें इतने सादे और असरदार अंदाज में निभाया कि राधा का किरदार दर्शकों के दिलों में उतर गया। वहीं बात करें सुनील दत्त की, तो उस समय अपने गंभीर और दमदार भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन मिलन में उन्होंने गोपी नाम के एक भोले भाले नाविक का किरदार निभाया। उनके इस सरल और भावुक रूप को दर्शकों ने खूब पसंद किया, और ये किरदार आज भी उनकी यादगार भूमिकाओं में गिनी जाती है। एक ख़ास बात ये भी है कि फिल्म में नूतन और सुनील दत्त दोनों दोहरी भूमिकाओं में नजर आए थे। 1960 के दशक में नूतन और सुनील दत्त की जोड़ी दर्शकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय थी। मिलन में दोनों की सादगी भरी केमिस्ट्री और भावनात्मक दृश्यों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि मिलन दोनों कलाकारों के करियर की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी कहानी और संगीत के साथ साथ इन दोनों कलाकारों की शानदार जुगलबंदी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है बहुचर्चित फिल्म मिलन। दोस्तों अब बात करते हैं मिलन की कहानी की। मिलन की कहानी शुरू होती है राधा देवी और गोपीनाथ की शादी से। शादी के बाद दोनों घूमने निकलते हैं और एक नदी पार करते समय गोपीनाथ को अचानक कुछ अजीब अजीब याद आने लगता है। वह बीवी जी, एक पुराने महल और एक लड़की गौरी की बातें करने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। गोपी तुरंत उसे गौरी के रूप में पहचान जाता है और वो भी उसे पहचान लेती है और बताती है कि इस जीवन में साथ रहने के लिए ही तुम दोनों ने पुनर्जन्म लिया है। वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। पिछले जन्म में गोपी एक सीधा साधा नाविक था जो गंगा किनारे अपनी दादी के साथ रहता था। वहीं राधा एक जमींदार की बेटी थी। रोज नदी पार करते करते दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन समाज और हैसियत की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। इसी बीच राधा की शादी किसी और से तय हो जाती है। राधा अपने मन की बात कह नहीं पाती और अपनी किस्मत मानकर शादी कर लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद वो विधवा होकर अपने मायके लौट आती है। उधर गोपी हमेशा की तरह उसका सहारा बनता है। दोनों के बीच का अपनापन लोगों को खटकने लगता है और गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है। तब हालात बहुत मुश्किल वाले हो जाते हैं। तब राधा और गोपी साथ रहने का फैसला करते हैं और गांव छोड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नदी पार करते समय उनकी जो नाव थी वो भंवर में फंस जाती है और दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार फिर जन्म लेता है। इसके साथ ही फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आती है वर्तमान समय में। बूढ़ी हो चुकी गौरी उन्हें बताती है कि वे दोनों उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए इस जन्म में फिर से मिले हैं। गौरी उन्हें विवाहित जोड़े के रूप में देख कर खुश होती है और अपने गोपीनाथ के हाथों में दम तोड़ देती है। यही है मिलन की कहानी, एक ऐसा प्रेम कहानी जो बिछड़ना ज़रूरी है लेकिन ख़त्म नहीं होता। एक ऐसा प्रेम जो समय, समाज और जन्म मृत्यु की सीमाओं से भी आगे निकल जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, मिलन की कहानी जितनी दिल को छू लेने वाली थी, उनका संगीत भी उतना ही मधुर और यादगार था। इस फिल्म का संगीत उस समय का सबसे बड़ा

0: का यूएसपी था। फिल्म का संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। उनके शानदार संगीत को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया। गीत लिखा था मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीतों में कठिन उर्दू या साहित्यिक हिंदी के बजाय आनंद बख्शी ने बेहद सरल भाषा का प्रयोग किया था। उनके इसी सरल शब्दों का जादू ने मिलन के गीतों ने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी और उन्हें हिंदी फिल्मी जगत के सबसे सफल गीतकारों में शामिल कर दिया। वहीं अगर आवाज़ों की बात करें तो लता मंगेशकर और महान गायक मुकेश की जोड़ी ने इन गीतों को गाया। यही वजह है कि मिलन के गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में वही ताजगी और मिठास खोल देते हैं जो लगभग 6 दशक पहले घोला करते थे। इस फिल्म का एक गाना आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं को लंबाई ज़्यादा होने की वजह से बाद में फिल्म से हटा दिया गया। इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग गोदावरी नदी और उसके तट के इर्द गिर्द हुई थी और उस साल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो चलिए चलते हैं एक और गीत की ओर।
1: मुबारक हो सबको समान

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है मिलन। हमारे पास हमारे श्रोताओं के ढेर सारे मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहला मेल आया हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से, और ये है नेहरू चौक से अनिता जाधव, सोनल प्रसाद, और ये है सुरेश जी का, और ये है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा का, वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती का, और गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता का। और ये मेल आया है हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, और ये लिखते हैं आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाना जानकारी रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। और ये है गांव हीरावली वाली फजीका पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, और हिमांशु हैं ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, और ये हैं भूषण खेड़ा, विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी, और इनके साथ हैं टीवा नशी खेड़ा फजीका पंजाब से, और ये हैं नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकु राघव, और ये हैं सुर संगम रेडियो श्रोता वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला बैन, भावेश कुमार, सनी, जैमिनी कुमार और हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जैन इनके साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार है। आज आपका आप जो चर्चा कर रहे हैं अपने दौर 1966 की बेहतरीन फिल्म मिलन, ये 67 की फिल्म है मिलन, जिसके अभिनय किया था सुनील दत्त और नूतन जी ने, बिल्कुल सही बात। और ये है संबलपुर फाकरे से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, मिलन को हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में गिना जाता है जिनकी कहानी, अभिनय और संगीत तीनों ने मिलकर एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों आज हमने बात की उस फिल्म की जिसने प्यार, बिछड़न और पुनर्जन्म की कहानी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पर्दे पर उतारा, साथ ही याद किए इसके वो मधुर गीत जो आज भी सुनने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत भी सुन लेते हैं।

श्रोताओं, उम्मीद है पुनर्जन्म और अमर प्रेम की इस अनोखी कहानी का ये सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा के किसी और सुनहरे किस्से के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी।

0: अक्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत की मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फीफा आलमी कप 2025 में टोरंटो में ग्रुप बी मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया व हर्जेगोविना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क़यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो ख्वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वक़ार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें ख्वातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए-कार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संगे बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतह मीटिंग कर रहे हैं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने तालीमी, सनती और तिजारती सारिफीन पर खुर्दा पेट्रोल पंप से मोटर स्प्रिट और तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है और उनसे कहा है कि वो अपने ही सारिफ पंप से अपनी जरूरियात पूरी करें। ये फैसला मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के दौरान मकामी किल्लत से निमटने के मकसद से किया गया है। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि ये बंदिशें 90 दिन तक जारी रहेंगी। खुर्दा पंप्स को भी हिदायत दी गई है कि वो तेज रफ्तार वाला डीजल रोजाना महज 200 लीटर तक फरोख्त करे ताकि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी को रोका जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने खुराक और तकसीम आम्मा के महकमे के अफसरान के साथ कल एक मीटिंग की सदारत की जिसका मकसद प्याज की सरकारी खरीद को मुस्तहकम और किसानों के लिए बेहतर मुनाफे को यकीनी बनाना था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि सरकारी खरीद की कम से कम यकीनी कीमत को बढ़ाकर 1,650 फी क्विंटल कर दिया गया है जो मंडी की मौजूदा कीमतों और स्टोरेज दर्जे की प्याज के लिए दरकार क्वालिटी पर मबनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कीमतें तय करने के तरीके को भी बेहतर बनाया गया है ताकि सरकारी खरीद को मार्केट के हाल

0: हालात के मजीद मुताबिक बनाया जा सके। इत्तिलात और नशरियात की वजारत ने टेलीविजन, रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसव्वदा आवाम की राय मालूम करने के लिए जारी कर दिया है। ये उसूल पिछले टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन और रेडियो खिदमात के लिए जारी मुख्तलिफ रहनुमा खतूत को जामे बनाने के लिए वजह किया गया है। ये उसूल हाल ही में नाफिज किए गए टेली मवासलात कानून 2023 के दायरे में वजह किए गए हैं। इन उसूलों का मकसद बहुत से मौजूदा रहनुमा खतूत की जगह एक वाहिद जाब्ता जाति फ्रेमवर्क तजवीज़ करना है। उसूलों का ये मुसव्वदा इत्तिलात नशरियात की वजारत की वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है और लोग इस सिलसिले में अपनी राय और मशवरे 27 जुलाई तक भेज सकते हैं। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नजरसानी शुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीक़ेकार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। एक बयान में एजेंसी ने बताया कि ये तब्दीलियां गुज़श्ता बरसों के दौरान उम्मीदवारों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर की गई हैं। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाव के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफेनी दुजैरिक ने कहा कि जनाब गुतेरस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों, शहरी जहाजरानी और इसकी आजादी के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के मारूफ निशानेबाज और कोच एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले साबिक खिलाड़ी जसपाल राणा का इंतकाल हो गया है। वो 49 बरस के थे। भारत की कौमी राइफल एसोसिएशन के सदर कालीकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक जसपाल राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF आलमी कप से भारतीय टीम की वापसी के दौरान बीमार हो गए थे। उन्होंने 2026 के पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी तौर पर कांसे के 2 तमगे जीतने में मनु भाकर की रहनुमाई की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मेक्सिको के जेपोपन में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला मेक्सिको से जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वज़ीर दाखला अमित शाह ने शहरी श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पम्प से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships, carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB were present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. President Draupadi Murmu arrived in Dehradun today on a 2-day visit. She was welcomed by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh, retired, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon her arrival. As per the scheduled program, the President will visit Rashtrapati Niketan in Dehradun today and inspect the ongoing construction and development works of the Rashtrapati Udyan being developed over an area of 132 acres. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NEET UG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. More from our correspondent.
4: The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. The agency said in a statement that these improvements are based on feedback received from candidates over the years. Apart from this, the agency said that the space for rough work in the question paper booklet has been increased from 2 pages to 4, giving candidates more room for calculations and diagrams. Based on the feedback that the old layout was inconvenient for some students, especially those who are left-handed, the booklet's design has also been updated. Two rough work dialogue pages are now placed at the beginning immediately after the instructions, while the other two remain at the end. This new layout applies to both English and regional language versions, so all candidates can work comfortably.

0: पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा।

0: ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24,00,000 रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस कार्यक्रम की रैना तवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज जैसा कि कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं, हम बात करते हैं किसी एक कलाकार की फिल्मी जगत से जुड़े हुए किसी भी

कलाकार के बारे में। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा को जिनकी अदाकारी ने 60 के दशक में धूम मचा दी थी। जी हाँ, हम नाम नहीं बताएंगे। हिंदी सिनेमा में हर कोई अपनी पहचान बनाने का मोहताज होता है, लेकिन कुछ हीरे ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपनी चमक बरकरार रखते हैं, युगों युगों तक उनके नाम के चर्चे कायम रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती और ऐसी नगीना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने अभिनय के अलावा अपनी हेयर स्टाइल से भी लोगों को बहुत लोकप्रिय रही, बहुत ही दिल को लुभाने वाली रही। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता गेस कर चुके होंगे, तो देर किस बात की। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो आपको पहचानना है, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। तो गेस कीजिए और हमें बताइए कि किसकी हम बात कर रहे हैं। ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। आपके मैसेज का, संदेश का हमें रहेगा इंतज़ार। तब तक सुनते हैं ये वाला इनका गीत।

जी हाँ, आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, बहुत सारे मैसेज हमें आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम को पसंद करने का। और सबसे पहले जिसने पहचाना और हमें मैसेज किया, उनका सही जवाब उन्होंने दिया और शो के हमारे फेवरेट श्रोता का खिताब भी आज उन्होंने लिया। उनका नाम है धर्मेंद्र छिपा जी, भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार को बहुत बहुत बधाई। वैसे हमारे सभी श्रोता हमारे फेवरेट हैं।

तो हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो है साधना शिवदसानी। यस, 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची में जन्मी अभिनेत्री साधना अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ बसा और अभिनेत्री के पिता को उस समय साधना बोस बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद का नाम उन्हें दिया, अपनी बेटी को दिया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अभिनेत्री साधना का कपूर खानदान से भी रिश्ता है। जी हाँ, और साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरीश शिवदसानी सगे भाई थे। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपके मैसेज हमें आते रहेंगे, इसी तरह से प्यार बांटते रहिए, भेजते रहिए और सुनते हैं अगला ये नगमा।

मेरा झुमका, यस मेरा भी झुमका गिरा रे। मुझे इस गाने में बहुत ही मज़ा आता है और मैं बहुत डांस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे श्रोता भी इस गाने को पसंद कर रहे होंगे और थोड़ा सा ठुमका तो उन्होंने भी लगाया होगा। खैर, हम बात कर रहे हैं, साधना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी और साधना अभिनेता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ मुड़ के ना देख के कोरस में भी नजर आई थी। इसके 2 साल बाद फिल्म अम्बाणा में लीड रोल में काम किया और बाद में प्रोड्यूसर शदाधर मुखर्जी की नज़र साधना की मैगजीन पर उनकी तस्वीरों पर पड़ी और उन्होंने साधना जी को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया। और इसी तरह से हमें बहुत सारे मैसेज आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्दर्शन कविता गौर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मैसेज किए और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज और इसी तरीके से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं ये वाला नगमा।

और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें मेजबान मैं रैना तंवर आप लेकर आई है एक प्रतिभाशाली अदाकार साधना शिवदासानी जी को। तो मेल करना ना भूलें और बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हम अपना कार्यक्रम में सुधार करेंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमें भी ये एक उत्साह मिलता है कि हम आपके लिए एक अच्छा कार्यक्रम लेते आएं हमेशा के लिए। तो जहाँ तक हम साधना के हेयर स्टाइल के पीछे एक भी बहुत प्यारी सी कहानी है, कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कुछ कहानी होती है, तो साधना के हेयर स्टाइल के पीछे भी एक अनकही कहानी छुपी है। दरअसल शूटिंग के दौरान डायरेक्टर आर के नैयर ने अभिनेत्री का माथा छिपाने के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना जी का हेयर स्टाइल कटवा दिया। इसके बाद तो ये हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने तो इसका नाम ही साधना कट रख दिया और इसके प्रभावित होकर बहुतों ने कट भी करवाए। यहाँ तक कि मैं सच बताऊँ, मैं अपना भी सच बताना चाहती हूँ कि मैंने भी स्कूल टाइम में अपने जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल साधना जी की तरह कटवा लिए थे और लोग मुझे ना साधना कहकर संबोधित करने लगे थे और ये मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही। और खैर,

छोटे मुंह बड़ी बात बोल दी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की तरह करते हैं और लोग हमें उससे संबोधित करते हैं। खैर आप बताइए, आप में से किस किस ने ऐसी कटिंग करवाई, आपने बच्चों की करवाई, क्योंकि इससे इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने करवाई थी जैसे मैंने करवाई। तो हमें मेल करके बताएं, और हमारा ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com आपके मैसेज का रहेगा हमें इंतजार इस गाने के साथ।

जी हाँ, हमें भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत तरीके से पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात करें उनके निजी जीवन के बारे में, तो अभिनेत्री साधना जी की शादी फिल्म निर्देशक आर के नैयर जी से हुई थी और उन्होंने 7 मार्च 1966 को शादी की और उनकी प्रेम कहानी फिल्म लव इन शिमला के सेट में शुरू हो गई। शादी के बाद भी साधना शिवदासानी ने फिल्मों में काम किया और इनकी जो खूबसूरत जोड़ी है ना, वो 30 साल तक बनी रही। 1961 के क्लासिक फिल्म हम दोनों में देव आनंद के साथ उनकी प्रेमिका की भूमिका को लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया और हमें भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। इतने सारे मैसेज हमें भेज रहे हैं, जैसे कि अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भवेश जमीन और हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जी का भी मैसेज हमारे पास आया है। हरजिंदर शिंदा मतलब गाँव पंजाब से, हरजिंदर, जसवीर और सीता गीता ने हमें मैसेज किया है। ऐसे रवि कुमार जी ने हमें मैसेज किया है। रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुर कीरत और गुर शब्द सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अगले इस गीत, प्यारे से गीत के साथ, सुनते हैं ये नगमा।

और इसी तरह से सप्रेम नमस्कार हमारे श्रोताओं को, क्योंकि एक अब बहुत सारे हमें मैसेज आ रहे हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी जी का मैसेज आया है, और इसी तरह से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत गुरशब्द का मैसेज आया है, और फिर राजेश वर्मा जी का हमें मैसेज आया है, और वहीं तुलसी मस्कीन जी का, और उन्होंने हमें बहुत बधाई दी है, हमारे सॉन्ग उन्हें पसंद आ रहे हैं, कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। शादरा से, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव सिघान खुराना, और अगर हम किसी का नाम लेना भूल जाएँ तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार ज़रूर लेंगे। और इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सरोहर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी, इसी तरीके से हमें फारूक अली खान जी का भी मैसेज आया है, फरहान, फारिया, ताहिरा हमें

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का। और इसी तरीके से हमें अजीत भावसर, प्रमीला बेन भावसर, भावेश सैनी, जयमिन कुमार, जयल हैतल, कृष्णा जैन, राकेश जैन जी का भी मैसेज आया, स्वर्ण सिंह का भी मैसेज आया, दलजीत राजदीप, गुरनूर गुरनाल, अविराज जी का मैसेज आया है, और इंद्रभान अनुभव ऋषभ हमने बताया है, इनके मैसेज हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज करने का। और हम बात कर रहे हैं जैसे साधना जी की, तो उनकी आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिल थी और 2002 में उन्होंने आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें सम्मानित किया गया। अंतिम दिनों में साधना जी आखिरकार कहते हैं ना कि बहुत ही उनकी ज़िंदगी अधूरी गुमनामी सी रही, आखिरकार 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उनका निधन हो गया। इसी खूबसूरत याद के साथ मैं यानी रैना तंवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाज़त। इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए कलाकार, एक नई कहानी के साथ, तो सुनना ना भूलें। और हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। जाते जाते एक नेक काम, एक नेक बात हमेशा, कि आप एक अच्छे नागरिक बने। मेट्रो में जाएं तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, यानी कि बुज़ुर्गों को सीट दें, जिनकी ज़रूरत है उन्हें सीट दें, जो बीमार लगे उन्हें सीट दें, एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने। दूसरों के चेहरे पर दें मुस्कुराहट और आप अपने दिल को मिलता है सुकून, क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो हमें मिलती है खुशी, और ये खुशी बांटना अच्छा होता है दोस्तों। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे नई कहानी नए कलाकार के साथ। इस गीत से लेते हैं विदा।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है हमारे नए शो का यानी मैटनी मेलोडीज़ का। और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और मेरे साथ है मेरी और आपकी दोनों की दोस्त
0: रैना तवर।
1: तो दोस्तों आज के 3 बजे के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए
0: जी। और राखी, जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। ये नज़रिया हमें बदलना होगा कि यार हम क्यों इतने उदास हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे हमें नेगेटिव होने के, लेकिन एक बहाना पॉजिटिव होकर ढूंढिएगा तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहेगी और ज़िंदगी में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल रहना, ये बात बिल्कुल तुमने सही बोली। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने आसपास अपने जो दोस्त यार हैं, अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच में जब हम होते हैं तो हम अक्सर

0: की कमियां ढूंढते हैं, ठीक है
1: ना,
0: कमियां ढूंढते हैं कि अरे उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, लेकिन अगर हम इन कमियों को नज़रअंदाज करें और उनकी अच्छाइयों को देखें तो हर इंसान हमें अच्छा लगने लगेगा, खूबसूरत लगने लगेगा, और इवन हम अंदर से भी खुश नज़र आएंगे। क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं ना, तब हमारे अंदर भी इरिटेशन और क्या होता है कि मेंटल टेंशन होती है, और इसके साथ साथ
1: है ना, तुम्हें चार उंगली, एक उंगली अगर किसी पे उठाते हो तो चार उंगली हमारी तरफ भी होती है।
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज की जो अभी सिनेरियो है, जो अभी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो मेंटल ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपको बीमारी भी हो सकती है ना।
1: बिल्कुल, तो बीमारी क्यों लेनी भाई,
0: क्यों लेनी है। तो चलिए इसी बात पर हम आपको सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का ये गीत, जो कि है किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: जी

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: कार्यक्रम
0: मैटरनी
1: मेलोडीज।
0: ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तुमने कभी किसी का इंतज़ार किया है क्या?
1: बहुत बार किया है यार, बहुत बार। वैसे अक्सर ना लोग इंतज़ार पे रह ही जाते हैं, इंतज़ार करते रह जाते हैं, सोचते हैं कि वो पहले बोले, वो पहले बोले, अब वो बोलेगी, अब वो बोलेगा, मगर ये बोलना बोलने में ही ना पूरा समय निकल जाता है और चिड़िया उड़ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो, एक बात बताएं, इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों का होता है। कभी कभी कुछ पाने का इंतज़ार, कोई कभी कभी किसी को होता है ना कि जॉब लगने का इंतज़ार होता है कि जॉब लग जाएगी तो उसे बड़ी खुशी मिलेगी। कभी कभी किसी के आने का इंतज़ार होता है, और कभी कभी इंतज़ार

0: जाता है किसी उस सपने का जिसके लिए दिन रात हम सपना देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो तुम किसी का सपना अभी तक देखी हो?
1: सच बताएं या झूठ बताएं?
0: सच
1: बता रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हमने इंतज़ार किया है और वो इंतज़ार भी बड़ा मीठा लगता है ना। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रतीक्षा ज़्यादा ना करें, क्यों इंतज़ार में ही ना बैठे रहें। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो नौकरी का हो या किसी भी चीज़ का, अवसर मिले तो उसे ग्रैब यानी कि फटाफट
0: बिल्कुल
1: मिला लें।
0: बिल्कुल, और इंतज़ार करना अच्छी बात है, बट इंतज़ार के बाद अगर वो चीज़ ना मिले तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं,
0: क्योंकि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली है तो शायद उससे बेहतर कुछ मिलने वाली है, बेहतर नौकरी, बेहतर कोई अपना। तो इसलिए इंतज़ार करें, लेकिन दुखी
1: बिल्कुल ना हो। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और ये गाना गुनगुनाएं।
0: बिल्कुल, और ये गाना है आराधना फिल्म से और ये भी गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ यानी राखी बैनर्जी और रैना तनवर के साथ, और ये जो आप शो सुन रहे हैं ये है मैटनी मेलोडीज़। तो श्रोताओं,
1: वैसे आज मन क्या कह रहा है?
0: देखो यार, मन तो मेरा अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सुस्त था जब स्टूडियो में आ रही थी, लेकिन जैसे ही श्रोताओं से बात करने का मौका मिलता है और सॉन्ग सुनने का मन मिलता है तो अपने आप थोड़ी सी क्या बोलते हैं सुस्ती
1: गायब हो जाती है। तभी हम श्रोताओं को भी सुस्त हटाने के लिए यहाँ आते हैं ताकि वो भी मन से ना खुश हो जाएं। और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता बहुत खुश रहेंगे हमारे कार्यक्रम को सुनकर। और मन ना एक बड़ा चंचल होता है, कभी मन कहता है कि कहीं चलें, कभी मन कहता है उदास हो जाता है। मन से सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, लेकिन दोस्तों मन को काबू ज़रूर रखें क्योंकि मन से सब कुछ होता है। अगर मन से आप हार मान लेंगे तो आप हार गए, और मन से अगर आप जीत मान लेंगे तो आप जीत गए। चाहे वो किसी का दिल जीतना हो या अपनी ज़िंदगी में किसी को पाना हो या अपनी मंजिल जॉब हो या कुछ भी हो,
0: बिल्कुल,
1: मन
0: बिल्कुल।
1: से सब कुछ होता है। तो मन के हारे हार है,
0: मन के
1: जीते
0: जीते जीत।
1: जीत।
0: तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए
1: जी
0: और अपने मन को स्ट्रांग रखिए। ज़िंदगी के किस हालात, किसी भी तरह के हालात में आपको लगेगा कि ये वक्त मेरे लिए बहुत वीकनेस वाला है, कमज़ोर है, और इस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं सामने दिख रहा है, लेकिन उस समय भी बस एक बात याद रखिएगा कि जो भी होगा बेहतर होगा। तो बस
1: बिल्कुल
0: उस बेहतर के इंतज़ार कीजिए और अपना जो काम है, अपना जो आपका कर्म है वो करते रहिए।
1: और मन को हमेशा पॉजिटिव रखें इस गाने की तरह।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल और उस पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी। और मैं हूँ रैना तवर और मेरे साथ हैं
1: राखी बैनर्जी।
0: तो राखी, एक बात और, दुनिया में सबसे पहले दिल तक पहुँचने का रास्ता क्या है?
1: देखो, मुझे तो दो ही दिखता है,
0: अच्छा
1: एक नजर और दूसरा पेट।
0: बिल्कुल सही। अगर नजर कभी अनजान को अपना बना देती है तो कभी बरसों से,
1: और कभी कभी बरसों की खामोशी को एक पल में बयां कर देती
0: तो
1: है।
0: नजरें कितनी कामयाब वाली काम करती है ना, कि हम कुछ ना
1: बिल्कुल
0: भी कहें तो नजरें हमारी बयां कर देती हैं हम क्या चाह रहे
1: बिल्कुल, गुस्सा भी
0: हैं।
1: नजरों में ही दिखता है, प्यार भी नजरों में ही दिखता है।
0: और जब किसी खास से नजर मिल जाए तो
1: तो प्यार
0: सचमुच होश उड़ जाते हैं कुछ इस तरह।

0: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी, और मैं रैना तंवर और मेरे साथ है राखी बनर्जी। हम लेकर आए हैं बहुत प्यारी सी बातों के साथ गीतों की बहार, और मुझे लगता है आपको गाने और गीत और हमारी बातें दोनों ही पसंद आ रही होंगी। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखकर भेजें तो हमें अच्छा लगेगा। हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com।
1: और बिल्कुल, आप हमें ज़रूर लिख के भेजिए कि ये शो आपको कैसा लग रहा है, ये जो हमने नया शो आपके लिए किया है वो कैसा लग रहा है।
0: तो कहते हैं कभी कभी प्यार की खूबसूरती उतनी गहराई में नहीं जिस उसकी सादगी में छिपी होती है।
1: और जानती हो, जब कोई रिश्ता बहुत खास हो जाता है तो उसमें एक मीठी सी झिझक भी होती है, एक अनकहा सा डर भी कहीं ना कहीं इस खूबसूरत एहसास में नजर आने लगता है।
0: बिल्कुल, और नाजुक जज्बातों का बेहद खूबसूरती से जो बयां करते हैं कुछ ऐसे नगमे भी हमारे पास होते हैं।
1: तो तुम क्या सुनाने वाली हो इस बार?
0: आप सुनते हैं फिर गेस करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, कहते हैं कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो शुरू होते ही हमें बीते दौर की खूबसूरत यादों में ले जाते हैं, और जब बात 60 के दशक की हो तो प्यार, शरारत और दिल की बेचैनी को शब्दों में पिरोने का अंदाज ही कुछ अलग होता है।
1: बिल्कुल सही बोला तुमने ये। और अगला गीत जो हम लेने ले ले रहे हैं इसमें, वो कुछ ऐसे ही दिलकश एहसासों से सजा है।
0: कौन सा
1: किसी
0: है?
1: किसी अपने के जाने की आहट और उसे रोक लेने की मासूम सी चाहत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता है ये सदाबहार नगमा। आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। तो आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म 20 साल बाद का ये यादगार गीत।
2: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद।

0: तो हम लेते हैं इस कार्यक्रम से विदा। हम अगली बार फिर मिलेंगे नए और पुराने, मतलब पुराने गीतों के साथ।
1: और रहना ये जो सॉन्ग है ना बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, और हमें भी जाने का मन नहीं है अपने श्रोताओं को छोड़ के, लेकिन जाना पड़ेगा। और हम फिर हाजिर होंगे फिर नए प्रोग्राम के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी राखी बैनर्जी को
0: और रैना तवर को दीजिए इजाज़त। मुस्कुराते रहें, चेहरे पर दे मुस्कुराहट, दूसरों के भी ऐसा काम नेक जरूर करें।
1: तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं।
0: नमस्कार।

सामईन की खिदमत में फरीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम महफिल समा। सामईन, वर्ल्ड अगेंस्ट मजदूर बच्चों के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद बच्चों की बुनियादी तालीम और हकूक़ के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है, उनके माशी इस्तेहसाल को रोकना और चाइल्ड लेबर बच्चा मजदूरी के खिलाफ आलमी सतह पर शऊर बेदार करना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइल्ड लेबर है क्या? बैनुल अक्वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चाइल्ड लेबर से मुराद हर वो मुशक्क़त है जो बच्चों की जहनी, जिस्मानी और इखलाकी नशोनुमा में रुकावट बनती है। ये वो काम है जो बच्चों को उनकी तालीम, बचपन और बुनियादी हकूक़ से महरूम कर देते हैं। आज भी दुनिया भर में 160 मिलियन से ज़ायद बच्चे इसका शिकार हैं। ये दिन मनाने का मकसद लोगों में बेदारी पैदा करना है और बच्चों को उनके हकूक़ दिलाने हैं, उनका बचपन लौटाना है, ताकि हर बच्चा अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सके। क्योंकि ता उम्र बचपन की खुशबू इंसान में बसी रहती है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। आइए सामईन, अब चलते हैं महफिल समा की तरफ।

सामईन कव्वाली ने हमेशा सबके दिलों पर राज किया। ज़माना बदला लेकिन कव्वाली की मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं आया। कव्वाली का बुनियादी मकसद सुनने वालों के दिलों में रूहानी जोश पैदा करना है और इन्हें खुदा के करीब लाना है। कव्वाली की इब्तदा सूफी दरवेशों से हुई। उन्होंने अपने पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में कव्वाली को सूफियों ने बहुत फ़रोग दिया। आइए सामईन सुनते हैं हज़रत अमीर खुसरो का कलाम। फ़नकार हैं जाफ़र हुसैन ख़ान बदायूनी और उनके हमनवा।

सामिन, अभी आप हज़रत अमीर खुसरो का कलाम सुन रहे थे। फ़नकार थे जाफ़र हुसैन ख़ान बदायूनी और उनके हमनवा। सामिन, गज़लिया कव्वाली सूफ़ी मौसीकी का एक ऐसा रिवायती अंदाज़ है जो इश्क़ हकीकी और खुदा से मोहब्बत के जज्बात को बयान करता है। गज़लिया कव्वाली में सूफ़ी फ़लसफ़े के अनासिर नुमाया होते हैं। गज़लिया कव्वाली में आमतौर पर इश्क़ हकीकी का तसव्वुर मरकज़ी मकाम रखता है। गज़लिया कव्वाली एक ऐसा फ़न है जो इश्क, मोहब्बत और मार्फत का पैगाम देता है। गज़लिया कव्वाली मानो एक रूहानी सफ़र है। आइए सुनते हैं चांद अफजाल और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में कव्वाली।

सामईन, अभी आप चांद अफजाल और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में कव्वाली सुन रहे थे। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम महफिल समा पेशकश थी इंतज़ार अली की। इसी के साथ अपनी दोस्त फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का विरोध दर्ज कराने के लिए आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। कल एक और जहाज पर हमला किया गया जिस पर चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पहले इन्हें लापता माना जा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित की गई। इसने सीमा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: 85 minutes for re-NEET UG 2026 scheduled to be held on 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Kalikesh Narayan Singh Deo, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. He was awarded the Arjun Award in 1994 and the Padma Shri in 1997 for his contributions to Indian shooting. He was also awarded the Dronacharya Award in 2020. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. In an earlier match, Mexico defeated South Africa 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium in the Mexico City last night. Today, co-host Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है खोई हुई व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का। थाना हर्ष विहार कमिश्नरेट दिल्ली से प्राप्त जानकारी, गुमशुदा का पूरा नाम आफरीन, पुत्री सिराज अहमद, आयु 19 वर्ष लड़का, 4 फुट 11 इंच कद, काला टॉप सफ़ेद प्लाजो और ग्रे चप्पल पहने हुए। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो थाना हर्ष विहार कमिश्नरेट दिल्ली में संपर्क करें। अगली सूचना थाना हर्ष विहार कमिश्नरेट दिल्ली से प्राप्त गुमशुदा व्यक्ति का पूरा नाम पुष्पा देवी सुनीता, पत्नी मुनेश कुमार, आयु 53 वर्ष स्त्री, शरीर की बनावट मीडियम, कद 5 फुट 1 इंच, ग्रे कलर का सूट नीली पजामी पहने हुए हैं, अपने घर से बिना बताए चली गई। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो थाना हर्ष विहार कमिश्नरेट दिल्ली में संपर्क करें। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना हर्ष विहार कमिश्नरेट दिल्ली से। गुमशुदा का पूरा नाम नीलेश, पत्नी रामसिया, आयु 35 वर्ष स्त्री, कद 5 फुट। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो थाना हर्ष विहार कमिश्नरेट दिल्ली में संपर्क करें। अगली सूचना प्राप्त हुई है बिलासपुर थाना से कमिश्नरेट गुरुग्राम। खोई हुई व्यक्ति का नाम उषा, पत्नी संदीप, इनकी उम्र 27 वर्ष, अपने बेटे शिवम के साथ घर से बिना बताए चली गई। शिवम की उम्र 8 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, चेहरे का रंग साफ। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त होगी उन्हें पुरस्कार की राशि दी जाएगी ₹1,000। तो इनकी अगर किसी को जानकारी प्राप्त हो तो संपर्क करें थाना बिलासपुर कमिश्नरेट गुरुग्राम। थाना बिलासपुर कमिश्नरेट गुरुग्राम से प्राप्त जानकारी, खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम प्रियंका सारसर, पत्नी योगेश, आयु 20 साल, कद 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला, गोल चेहरा, पतला शरीर, बाएं गाल पर तिल का निशान है। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो थाना बिलासपुर कमिश्नरेट गुरुग्राम में संपर्क करें। थाना बिलासपुर कमिश्नरेट गुरुग्राम, खोई हुई व्यक्ति का नाम सिमरनजीत कौर, आयु 19 साल, कद 5 फुट। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो थाना बिलासपुर कमिश्नरेट गुरुग्राम में संपर्क करें।

अगली सूचना थाना नंद नगरी कमिश्नरेट दिल्ली से प्राप्त खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है उनके नाम की। आयु 50 से 55 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट 7 इंच, मृतक हालत में पाए गए। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त करनी हो थाना नंद नगरी कमिश्नरेट दिल्ली में संपर्क करें। और इस खोए हुए पे आखिरी जो प्राप्त जानकारी प्राप्त हुई है थाना बिलासपुर कमिश्नरेट दिल्ली से, खोए हुए व्यक्ति का नाम नंदिनी, पुत्री अशोक सांझी, आयु 19 साल। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया थाना बिलासपुर कमिश्नरेट दिल्ली में संपर्क करें। ये थी खोए हुए व्यक्ति से संबंधित जानकारी के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ हर्ट्ज़ एंड डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है कार्यक्रम युववाणी का।

0: लकीरों से नहीं, इरादों से तकदीर बनती है। मेहनत की स्याही से ही हर तस्वीर बनती है। मझदार चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, साहस के पतवार से ही हर कश्ती निकलती है। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी दोस्त उत्साह,
1: और मैं हूं आपके साथ चित्रांश।
0: तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक मनमोहक गीत के साथ। गीत का नाम है आई फील गुड।

0: दोस्तों, आज के पहले सेगमेंट यानी टुडेज टॉक में हम बात करेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की। चित्रांश, क्या आपको पता है आज 12 जून को पूरी दुनिया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मना रही है?
1: बिल्कुल उत्साह। और जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो कई बार हमें एहसास होता है कि जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा की बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वह किसी और के लिए एक सपने की तरह हो सकती है। हम सुबह स्कूल या कॉलेज जाते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन दुनिया के कई बच्चों के पास यह अवसर ही नहीं होता है।
0: हाँ चित्रांश, और मुझे ये भी लगता है कि यह विषय युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जिस भी स्थिति में हैं, हमें उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। हो सकता है कभी कभी हमें अपनी पढ़ाई मुश्किल लगे, असाइनमेंट ज़्यादा लगते हों या एग्ज़ाम का प्रेशर फील होता हो, लेकिन फिर भी हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर तो मिला हुआ है। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता।
1: बिल्कुल ठीक कहा उत्साह। और मुझे लगता है कि बदलाव हमेशा बहुत बड़े कदमों से नहीं आता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा अंतर ला सकती हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, पुरानी किताबें दान करना या फिर समाज में जागरूकता फैलाना भी एक पॉजिटिव स्टार्ट हो सकता है। हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद भी एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे रहे होते हैं। तो क्यों ना हम युवा श्रोताओं को ऐसे गीत से रूबरू कराएं जो उनके दिल को छू जाए।
0: लीजिए, ये रहा तारे ज़मीन पर मूवी का आपका पसंदीदा सॉन्ग बम बम बोले।

वेल दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग। म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो शायद हर युवा के जीवन में जुड़ा हुआ है। हम सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कई बार हम खुद के सबसे क्रिटिक खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। कभी एग्ज़ाम में उम्मीद के मुताबिक नंबर ना आना,

0: इंटरव्यू अच्छा ना जाना, कोई हमसे आगे निकल जाए तो उसमें गुस्सा होना, हम तुरंत खुद को जज करना शुरू कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कुछ कमी है।
1: बिल्कुल उत्साह। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी एक इस सोच को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया है। जब हम हर रोज़ दूसरों की अचीवमेंट्स, उनकी वैकेशंस, उनकी सक्सेस स्टोरीज और उनके हैप्पी मोमेंट्स देखते हैं, तो कई बार हम अपनी ज़िंदगी को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें कोई भी पूरी कहानी नहीं बताता, बल्कि सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। किसी की सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितनी असफलताएं और कितना संघर्ष रहा होगा, यह अक्सर हमें सोशल मीडिया से पता नहीं चलता है।
0: बिल्कुल चित्रांश, और इसी वजह से कई बार तो हम अपने पर अननेसेसरी प्रेशर बना लेते हैं। हम खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं कि छोटी से छोटी गलती भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान सीखता है और हर इंसान आगे बढ़ता है। हाँ, उसकी स्पीड अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ता है।
1: बहुत सही बात कही आपने उत्साह। मुझे लगता है कि अगर हम दूसरों को उनकी गलतियों के बाद दूसरा मौका दे सकते हैं, तो खुद को भी तो दे सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है, इसलिए अगर आज सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि कल भी नहीं होगा। सबसे ज़रूरी है कि हम सीखते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें।
0: तो दोस्तों, आज का विचार यही है कि खुद को जज करने के बजाय खुद को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छा कर रहे हों।
1: और इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब समय है एक ऐसे गीत का जो हमें ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीना सिखाती है। कर हर मैदान फतेह।

0: टाइम है यूथ स्टोरी के हमारे विशेष सेगमेंट मंच से माइक्रोफोन तक का। इसमें आज आप सुनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री मिस स्वीटी उपाध्याय जी का इंटरव्यू। इनसे बात की है हमारे साथी शैलजा पुरोहित जी ने।
1: नमस्कार साथियों, हमारे साथ में उपस्थित हैं एक यूथ सक्सेस स्टोरी स्वीटी उपाध्याय जी, जो इस समय असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए शैलजा यहाँ पे।
1: जी, थैंक यू सो मच मैम। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर के सिविल सर्विसेज तक का सफर, एक लंबा सफर तय किया है, और जब अपने आप जर्नी को देखती हैं तो ऐसा कौन सा फैसला था जो आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ?
2: मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। तो जब मैं पढ़ती थी तो वहाँ पे हमारे पास एक हाउस हेल्प थी, एंड एक दिन उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ उसके पति के द्वारा। जब वो मेरे पास आई, मैं उसका केस पुलिस के पास ले गई, और ये व्यवहार हर जगह हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें दूसरे दूसरे रूपों में देखने को मिलती है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसे पद पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं सोशल चेंज भी ला पाऊँ और अपने लिए भी कुछ ऐसा कर पाऊँ, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में एक मुहावरा है, व्हेन योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू। तो ये मेरे लिए अब पॉसिबल हो पाया है इस ओहदे पे आकर। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट मैं मान सकती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे मन में था यूपीएससी पीसीएस के लिए कि कहीं ना कहीं मैं ये चीज प्रिपेयर करूं, और मैं सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव के लिए ही नहीं, मैं लोगों के लिए भी काम करूं। तो ये एक कहेंगे मैं कि एक फाइनल पॉइंट था, एंड देन आई सीरियसली स्टार्टेड स्टडिंग, एंड उसके बाद मैंने 2019 यूपीपीसीएस में 55 रैंक को हासिल किया।
1: वाओ मैम, काफी इंस्पायरिंग था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज कई युवा करियर को लेकर डाउट में रहते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आपके अनुभव में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेहनत है, धैर्य, या सही दिशा?
2: आई थिंक इन सब का सही मिश्रण बहुत ज़रूरी है। मेहनत भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ सही दिशा भी ज़रूरी है। जैसे मैं अपने ही आपको एक कहानी बताती हूँ। मेरे को 2017 में मैंने स्टार्ट किया, और मेरा जो पहले मन था वो IFS ऑफिसर बनने का था, फॉरेन सर्विसेज में जाने का, बट क्योंकि मैंने इतना लेट स्टार्ट किया तो मैं अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं जा पाई। बट अगर मेरे को सही डायरेक्शन मिलता, सही मेंटरशिप मिलती, तो शायद मैं उसमें चली जाती। आज के दौर में जैसे आपने बोला, मेरे को सबसे जो मैं कहती हूँ सोशली प्रोडक्टिव चीज़ लगती है वो है एंटरप्रेन्योर बनना, टू सीक एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज सी, उसमें आप सबसे ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, आप रोजगार बढ़ा पा रहे हो। अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आप सोचिए कि हर परिवार में भी अगर 5 लोग हैं तो आप 500 लोगों के खान पान का ध्यान रख रहे हो। तो उससे ज्यादा पुण्य आप मुझे नहीं लगता किसी और तरीके से कमा सकते हो। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम बनना सबसे जरूरी है आजकल।

0: इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं अभी, तो रोज नए उद्यमियों और कारोबारियों से आपका मिलना होता है, तो आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं में बिजनेस शुरू करने को लेकर सोच कितनी बदली है?
1: मेरे को ये लगता है कि आजकल देखिए आते तो मेरे पास काफ़ी लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, ऐसे भी लोग आते हैं जो 25-30 साल से इंडस्ट्री कर रहे हैं। बट हाँ, काफ़ी मैं कहूँगी डिफरेंस ऐसे आया है कि अब प्रोसीजर्स को फुलफिल करने की जो एक ललक है, एक इच्छा है, वो अब ज़्यादा तीव्र है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको मान लीजिए यूरोप या यूएसए में एक्सपोर्ट करना है कोई अपना माल, तो आपको उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बी इट एनवायरमेंटल रूल्स, बी इट जेंडर नॉर्म्स, आपको वो चीज़ फुलफिल करना है। आपको अपनी फैक्ट्री में क्रश फैसिलिटी लानी है, आपको उनको ईपीएफ देना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को फुलफिल करने के लिए आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, बहुत सारे लाभ दे रही है। जैसे अगर आप महिला उद्यमी हो तो आपको 100% स्टैम्प ड्यूटी रिइंबर्समेंट मिलता है। तो क्योंकि ऐसे लाभ लेने के लिए लोग इच्छुक अब ज्यादा हैं, तो वो उन रूल्स को फॉलो और ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, जो पहले रूल्स तो थे बट इतना फॉलो नहीं होते थे। तो ये है चेंज विच आई कैन सी नाउडेज मोर।
0: मैम, अक्सर कहा जाता है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहरों में होना जरूरी है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या छोटे शहरों के युवाओं के लिए भी आज उतने ही अवसर हैं?
1: बिल्कुल है। देखिए, जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ हैं, आई थिंक उनमें अब ज़्यादा एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं Tier 1 सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे सिटीज़ अब थोड़ा सैचुरेटेड हो गए हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे जो गिग इकोनॉमी है, आपका ऊबर है, ओला है, जोमैटो है, आई थिंक ये इनका पोटेंशियल अब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है। जो डिमांड ऑलरेडी फुलफिल हो गई है Tier 1 सिटी

0: हो रहा है उतना अब यहाँ भी नहीं हो रहा। तो हाँ, वो डिफरेंस है और इस बात की मुझे खुशी है कहीं ना कहीं कि ज्यादा जहां जहां रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो एक तरह से वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ला रहा है, वो सारे डेवलप करें वो जरूरी, इसीलिए टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में हम लोग अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
1: हमारे साथ बहुत सारे युवा श्रोता जुड़े हुए हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हैं। आपकी नजर में उसे सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है आज के टाइम पे?
0: देखिए, सारी चीजें हो जाती हैं, बट एक चीज इस पे लोग फोकस नहीं करते वो है मार्केट रिसर्च। सबसे जरूरी है मार्केट रिसर्च। आपको कुछ भी करने से पहले आपको देखना है कि आपका जो यूनिक प्रोपोजिशन है, आपका जो यूनिक आइडिया है प्रोडक्ट का, उसके लिए मार्केट में डिमांड कैसी है। उसके लिए देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तो मार्केट रिसर्च टूल्स भी होते हैं, बट एक छोटा सर्वे भी करवा के ये देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कहाँ पे वो ज्यादा सेलिंग हो सकती है, कहाँ पे मार्केटिंग हो सकती है। तो आई थिंक मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट आइडिया जो है वो कहाँ ज्यादा एप्लीकेबल है, ये दो चीज अगर आप कर लेंगे फिगर आउट, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं कि आप कैपिटल कैसे लेंगे, और इन सब चीजों के लिए तो आजकल सरकार भी बहुत ज्यादा मदद कर रही है।
1: एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियों के बीच में जब आपको कभी लगता है बहुत ज्यादा निराशा या थकान हो रही है, तो उस समय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? और दूसरा, आप हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव से एक ऐसी क्या बात कहना चाहेंगे जो उन्हें इंस्पायर करें?
0: प्रेरणा मैं कहूंगी मुझे अपने आप से मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डाउन्स देखे हैं लाइफ में, और उन डाउन से मैं अपने आप, हाँ मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं, दो तीन ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरा सहायता की है, बट बहुत से डाउन देखने के बाद और उस पर वापस रिसरेक्ट होने के बाद ही ऐसा लगता है कि हाँ, वो जब उस मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब मैं एक्चुअली स्ट्रगल कर रही थी और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे, और उस वक्त को जब देखती हूँ और आज जब मेरे पास कुछ ऐसा चैलेंज आता है, मुझे लगता है नहीं, ये तो बहुत ही छोटा चैलेंज है उसके कंपैरेटिवली, तो मैं इससे तो उभर ही सकती हूँ, तो वहां से मेरे को स्ट्रेंथ मिलती है एंड उसी तरह से मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वेल, दैट वॉज अ वेरी इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू जिससे आप जीवन में बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं।
3: स्वागत है दोस्तों हमारे नए मजेदार सेगमेंट क्विक बज में, जहां बात होती है उन ट्रेंड्स और टॉपिक्स की जो आजकल यूथ के बीच काफी पॉपुलर हैं।
2: और आज का पहला बज वर्ड है मेन कैरेक्टर एनर्जी। यह फ्रेज आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में है।
3: बिल्कुल उत्साह, इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंस देना और खुद को अपनी कहानी का हीरो समझना।
2: लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हीरो बनना है, विलेन नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हमें मुसीबत में डाल सकता है या कई बार हम गलती भी कर बैठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चुका है हमारे अगले गाने का। यह गाना आई एम श्योर हमारे दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगा।

0: वाह यार उत्साह, बेहतरीन चॉइस गाने की, मज़ा आ गया सुन के। तो दोस्तों, अगला बज़ है वीकेंड प्लान्स। एक सर्वे में पता चला है कि कई युवा वीकेंड पर लेट उठने से ज़्यादा अपनी फेवरेट सीरीज़ बिंज वॉच करना पसंद करते हैं।
1: और मुझे लगता है चित्रांश की इस लिस्ट में पंचायत और कोटा फैक्ट्री जैसे शोज का नाम तो जरूर ही होगा।
0: बिल्कुल। वैसे आप बिंज वॉचिंग टीम में हैं या फिर एक एपिसोड रोज़ देखने वाली टीम में हैं?
1: चित्रांश, वैसे तो मैं एक एपिसोड देखने बैठती हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे बीत जाते हैं।
0: चलिए अब अगले बस की बात करते हैं। आजकल बहुत से यूथ अपने हॉबीज को साइड हसल में बदल रहे हैं।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा चित्रांश। मैं सोशल मीडिया देखती हूँ तो देखती हूँ कि कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई फोटोग्राफी, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कुकिंग, पोइट्री और न जाने क्या क्या।
0: अच्छा उत्साह, तुमको एक चीज पता है कि आज अपॉर्चुनिटीज पहले से काफी ज्यादा हैं। टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिल रहा है अब।
1: लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए चित्रांश कि वायरल होना सक्सेस नहीं है, कंसिस्टेंसी सक्सेस है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि आज अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा है, तो अब ये बात तो हो ही गई है। वाह, ये लाइन तो सच में नोट करने वाली है।
1: और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है तो उसे छिपाइए मत, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सीखिए और दुनिया को जरूर दिखाइए।
0: इसी पॉजिटिव और एनर्जेटिक वाइब के साथ चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आप सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का हौसला देते हैं, उनको बढ़ावा देगा।

0: खास है क्योंकि वीकेंड बिल्कुल दरवाजे पर है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे कि इस वीकेंड पर क्या देखा जाए।
1: बिल्कुल सही बात उत्साह, और अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते थिएटर्स में काफ़ी वैरायटी देखने को मिल रही है, यानी चाहे आप रोमांस के फ़ैन हों या ड्रामा पसंद करते हों या सस्पेंस और थ्रिल देखना चाहते हों, सबके लिए कुछ ना कुछ है आज।
0: सबसे पहले बात करते हैं इम्तियाज़ अली की फिल्म मैं वापस आऊँगा की। इम्तियाज़ अली का नाम सुनते ही मुझे सफ़र, इमोशंस और दिल से जुड़ी कई कहानियों की याद आ जाती है।
1: बिल्कुल सही उत्साह, और दिलजीत दोसांझ भी फिल्म में हैं तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस नेचुरली काफ़ी हाई हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह फिल्म लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाती है।
0: और अगर आप रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
1: जी हाँ, और यह फिल्म 26/11 के दौरान कामा हॉस्पिटल की नर्सेस के साहस और सेवा भाव से जुड़ी कहानी को सामने लाती है। ऐसी कहानियां हमें रियल लाइफ हीरोज की याद दिलाती हैं।
0: अब बात करते हैं मनोज बाजपेयी की गवर्नर द साइलेंट सेवियर की। मनोज बाजपेयी की दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उनकी फिल्में अक्सर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म में वे किस तरीके के किरदार में नजर आते हैं।
1: आई टोटली एग्री उत्साह, उनकी एक्टिंग में एक सादगी है जो दर्शकों को कैरेक्टर से कनेक्ट कर देती है।
0: एग्जैक्टली, एंड आई फील एक अच्छा गाना पूरे दिन का मूड बदल सकता है ना चित्रांश।
1: वाह, ये बात तो सही कही, और हॉरर फिल्म्स में गाने तो कमाल के होते ही हैं, उनका एक अलग फैन बेस होता है। उत्साह, सच कहूँ तो हॉरर फिल्म्स के गाने कमाल के होते हैं, वो चाहे 1920 हो या मिस्टर एक्स हो या फिर राज। तो दोस्तों, थिएटर हो, ओटीटी हो या म्यूजिक प्लेलिस्ट, उम्मीद है आपको आपका वीकेंड एंटरटेनमेंट से पूरा भरपूर रहेगा इस बार।
0: चलिए सुनते हैं अपना अगला गाना।

0: बेहतरीन गाना। दोस्तों, आज के दिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने सिर्फ 13-14 साल की उम्र में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आज जन्मदिन है विश्व प्रसिद्ध लेखिका एनी फ्रैंक का।
1: बिल्कुल उत्साह, और जानती हो, जब भी एनी फ्रैंक का नाम आता है तो आंखों के सामने एक छोटी सी डायरी घूम जाती है जिसमें बहुत ही बेहतरीन बात कही गई थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जो कि बिल्कुल सच है।
0: आज की जनरेशन जब सोशल मीडिया पर अपनी रोज़ की बातें लिखती है तो शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एनी ने वो डायरी किन हालातों में लिखी थी। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम नाजियों के डर से एनी और उनका परिवार करीब 2 साल तक एक छोटी से सीक्रेट जगह में छिप कर रहा था।
1: सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने कठिन समय में भी उस समय 13 वर्ष की बच्ची ने इस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा।
0: वेल, हमने आपको ये बात बताई एनी फ्रैंक की, और हम चाहेंगे कि आप इससे इंस्पिरेशन लें और अपनी लाइफ में अच्छे से अपने काम करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे युव वाणी प्रोग्राम विद मी उत्साह
1: एंड चित्रांश।

0: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी ज़रूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाज़ों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाज़ों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of US Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The US envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The US Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that US forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: देखिए लोकेंद्र भाई, लोकरंजनी कार्यक्रम में लोकगीतों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रोताओं का मनोरंजन करवाते हैं। और अगर लोकगीतों की बात करें तो उसमें ऐसी ऐसी कल्पनाएं भी होती हैं जिसको सुनकर आनंद भी आता है। और ऐसे ही एक गीत जो है प्रियंका चौधरी की आवाज़ में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं और करवाते हैं मनोरंजन।
1: बिल्कुल, कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

0: प्रियंका बहन, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रियंका चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत, और अगला सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई और साथी की आवाज़ में अगला
1: लोकगीत।
0: लोकगीत।

0: रेणुका बहन, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे बबीता चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत।
1: और इसके साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है खेल से आधारित कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ है मेरे सहयोगी
3: वसीम अहमद।
2: मैं और वसीम मिलकर आज आपको ले चलेंगे खेल जगत के सफर पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए हर एक खेल की अलग अलग तरह से यहां पर ताजा जानकारी। और इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना सबसे पहले उस खेल से हो जाए जिसके बारे में चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही थी और लगातार हम आकाशवाणी पर भी उसकी बारे में बता रहे थे। तो मुझे लगता है वसीम शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किस खेल की बात कर रहे हैं।
3: जी हाँ, बात हो रही है गेंद की, ट्राइओंडो की, बात हो रही है फुटबॉल की।
2: जी हाँ, तो फुटबॉल का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप फाइनली शुरू हो चुका है एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और मुकाबले भी खेले जाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कल जो है यानी 11 जून को इसकी ओपनिंग सेरेमनी के साथ मुकाबले हुए। तो चलिए आपको ले चलते हैं पूरी ही विस्तृत जानकारी की ओर। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का आगाज मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। रंग संगीत, संस्कृति और खेल भावना के अद्भुत संगम ने दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का स्वागत किया। समारोह में शकीरा, बर्ना बॉय और कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जबकि मैक्सिको की पारंपरिक कला और लोक संस्कृति को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। ये विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले यहां खेले जाएंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप है। इसके मेजबान तीन देश हैं, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। चलिए अब कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। स्टाडियो एस्टेका दुनिया का पहला स्टेडियम बन गया जिसने तीन अलग अलग फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैचों की मेजबानी की है, 1970, 1986 और अब 2026 में। इसी

मैदान ने पेले और डिएगो माराडोना जैसे महान खिलाड़ियों के ऐतिहासिक क्षण भी देखे हैं। उद्घाटन मुकाबला मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसके साथ ही अगले एक महीने तक चलने वाले इस वैश्विक फुटबॉल उत्सव की शुरुआत हुई। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। मुकाबले के 9वें मिनट में जूलियन ने विपक्षी रक्षा की गलती का फायदा उठाते हुए पहला गोल दागा और मैक्सिको को बढ़त दिलवाई। इसके बाद 67वें मिनट में अनुभवी स्ट्राइकर राउल हिमेनेज ने हेडर के जरिए दूसरा गोल करके टीम की जीत लगभग तय कर दी। मैच में थोड़ी सी अनुशासनहीनता भी देखने को मिली। दक्षिण अफ्रीका के स्पेफेलो सिथोले और थेम्बा जुआने को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके वजह से टीम 9 खिलाड़ियों तक सिमट गई। वहीं इंजरी टाइम में मैक्सिको के सीजर मोंटेस भी रेड कार्ड पाकर मैदान से बाहर हो गए। घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच मैक्सिको ने टूर्नामेंट की विजय शुरुआत की और ग्रुप ए में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल कर लिए। अब मैक्सिको का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका चेकिया के खिलाफ वापसी की कोशिश करेगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच अहम मुकाबला मैक्सिको के ग्वाडलाहारा स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के लिए टूर्नामेंट का पहला मैच था और जीत के साथ अभियान शुरू करने का शानदार मौका भी। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए चेकिया को 2-1 से हरा दिया। मैक्सिको के ग्वाडलाहारा में खेले गए इस मुकाबले में पहला हाफ गोल रहित रहा। हालांकि दक्षिण कोरिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे हाफ में चेकिया ने 59वें मिनट में कप्तान लादिस्लाव पेची के हेडर की बदौलत बढ़त हासिल कर ली, लेकिन दक्षिण कोरिया ने हार नहीं मानी। 67वें मिनट में मिडफील्डर वांग इन बोम ने शानदार गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। वांग इन बोम मैच के हीरो रहे, जबकि कप्तान ने भी इस मैच में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप ए में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है, जबकि 20 साल बाद विश्व कप में लौटी चेकिया को पहले ही मैच में निराशा हाथ लगी। और अब 12 जून को होने वाले ग्रुप बी और ग्रुप डी के पहले दौर के मैचेस पर नजर डाल लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन मैदान पर वो टीमें उतर रही हैं जिनका इतिहास और आंकड़े काबिले तारीफ हैं। सबसे पहले बात ग्रुप बी की, जहां मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया से होगा। आपको बता दें कि कनाडा ने 36 साल के लंबे इंतजार के बाद 2022 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो किया था, लेकिन वो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब वो फीफा रैंकिंग के अपने बेहतरीन दौर और घरेलू मैदान के दम पर इतिहास बदलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोस्निया की टीम अपने पुराने जांबाजों के दम पर यूरोपीय क्वालिफायर्स की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। और श्रोताओं, इस ग्रुप का दूसरा मैच रोमांच की सारी हदें पार कर देगा, क्योंकि एशिया चैंपियन कतर की भिड़ंत यूरोप की जांबाज टीम स्विट्जरलैंड से होने वाली है। कतर के लिए ये मैच किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 2022 में ही अपनी सरजमी पर वो एक भी मैच नहीं जीत पाए थे और ग्रुप स्टेज में सबसे नीचे रहे थे, लेकिन इस बार उनके पास फीफा रैंकिंग में टॉप 15 के करीब रहने वाली और लगातार नॉकआउट खेलने वाली अनुभवी स्विट्जरलैंड टीम को चौंकाने का मौका है। इसके बाद एक्शन शिफ्ट होगा लॉस एंजलिस, जहां ग्रुप डी में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का मुकाबला पैराग्वे से होगा। अमेरिकी टीम 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी। उनकी युवा और ऊर्जावान गोल्डन जनरेशन अब दुनिया की टॉप टीमों में शुमार हो चुकी है, लेकिन पैराग्वे की टीम को कम आंकना भूल हो सकती है। इस साउथ अमेरिकी टीम का डिफेंस इतिहास में बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छुड़ा चुका है। तो श्रोताओं, क्या कतर अपना पहला वर्ल्ड कप पॉइंट हासिल कर पाएगी? क्या यूएसए अपनी सरजमी पर जीत का परचम लहराएगी? इसका जवाब तो आपको बस कुछ ही घंटों बाद मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए फीफा वर्ल्ड कप के इस रोमांच के साथ आकाशवाणी पर।

0: यहाँ पर हमने बात की वसीम फीफा वर्ल्ड कप की, और इतना ज्यादा मुझे तो ये सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी वहां उस मैदान पे पहुंच ही जाऊं और ये सारे मुकाबले देख लूं।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तक कि भारत में भी करोड़ों फुटबॉल प्रेमी हैं। भले ही भारत में मैच के टाइमिंग बहुत ही अजीबोगरीब हैं, लेकिन उत्साह देखते हुए बन रहा है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उत्साह

0: जो है वो देखते हुए ही बन रहा है, और ऐसे ही उत्साह की ओर हम फिर से आपको लेके चलेंगे, क्योंकि आज से एक और ऐसा ही रोमांचित खेल जो है वो शुरू होने वाला है, और मुझे लगता है कि सभी क्रिकेट प्रेमियों को उसकी अभी दरकार है और जरूरत भी है और इंतजार भी है। हम बात कर रहे हैं
1: क्रिकेट की बिल्कुल सही कहा। 2025 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम की जीत के बाद अब नजरें हैं T20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में शुरू हो रहा है।

तो जैसा मेरे सहयोगी वसीम ने आपको बताया, वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। और आज इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। फाइनली 12 जून यानी आज से इंग्लैंड की सरजमी पर शुरू हो रहा है आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का महासंग्राम। 2001 में शुरू हुआ महिला T20 वर्ल्ड कप का ये 10वां संस्करण है, जहाँ पहले केवल कुछ ही टीमें इस संस्करण में हिस्सा ले पाती थी, वहीं इस बार ये टीमें 12 हो चुकी हैं। तो आज पहले ही दिन ओपनिंग मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करने उतर रही है श्रीलंका की टीम बर्मिंघम के ऐतिहासिक अजबेस्टन मैदान पर।

0: तो जिस तरह से ये जो मुकाबले हैं ये खेले जाएंगे, ये अपने आप में एक रोमांचित करने जैसा है, क्योंकि पहला मुकाबला जब कोई टीम खेलती है तो एक रोमांच अलग से होता है और उस पर प्रेशर भी ये होता है कि कैसे इस पहले मैच को हम जीत में बदलें। तो अगर इन दोनों ही टीमों के T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की बात करें तो एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है कि इंग्लैंड ने महिला T20 का पहला वर्ल्ड कप जो कि 2009 में हुआ था वो अपने नाम किया था, वहीं श्रीलंका की महिला टीम ने 2009 से 2024 तक किसी भी महिला T20 वर्ल्ड कप में दूसरे दौर में जगह भी नहीं बनाई। लेकिन पिछले कुछ समय में कप्तान चमारी अठपट्टू की अगुवाई में इस टीम ने पूरी दुनिया को चौंकाया है और हालिया इतिहास गवाह है कि श्रीलंका ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर T20 सीरीज में हराकर उलटफेर किया था। ऐसे में आज जहां इंग्लैंड के नेट साइबर ब्रंट अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर पुरानी हार का बदला लेना चाहेंगी, वहीं श्रीलंकाई श्रेणियां एक और बड़ा धमाका करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। अजबेस्टन की ये पिच रनों से भरपूर रहने वाली है, यानी कि चौको छक्कों की बरसात तो यहां होना तय है। वसीम,
1: बिल्कुल कविता, यह मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार रात्रि 11 बजे से शुरू होगा
0: और इसी पर हमने बात की है इस मुकाबले पे और भारत के, क्योंकि भारत का मुकाबला भी होना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल हमने बात की है फॉर्मर क्रिकेटर वैशाली माथुर से, क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं।
2: के ओपनिंग मैच के लिए मैं यही कहूंगी कि दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट, जो बेटर खेलेगा जो बेटर फील्डिंग करेगा वही इस मैच को जीतेगा आज, और जो इस मैच को जीतेगा वही आगे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे मैच में भी खेल पाएगा। भारतीय टीम को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, जो 14th उनका का मैच है एंड ये वर्ल्ड कप भी हम अपने नाम करें, क्योंकि इस टीम में अगर देखा जाए तो हर एज कैटेगरी के बच्चे और प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड सभी एक्सपीरियंस है कि अगर कोई छोटा है एज में लेकिन वो भी एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें शेफाली वर्मा, वो हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बाद हम बात करते हैं दीप्ति शर्मा की, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ इंडियन टीम के साथ में वो बहुत मैटर करता है इस वर्ल्ड कप पे। अगर उसके साथ अगर मैं भारतीय फुलमाली की बात करूं, वो अभी अपना पहला मैच खेल रही है वर्ल्ड कप का, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो अभी तक उनका मैंने रन्स और हाईएस्ट रन्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काफी अच्छा करती हुई आई है, और इंडिया ए टीम में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो मैं यही कहूंगी कि भारतीय फुलमाली को कि अगर उनको मौका मिलता है तो उससे चूकना नहीं है, उसको ग्रैब करना है।
0: रोमांच कैसा होगा
2: अगर हम आप बात करें कि टीम पहले कम थी और अभी ज्यादा है, तो ऑफकोर्स हर एक प्लेयर जो इंडिया से खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, जो क्रिकेट का जुनून रखता है, तो ऑब्वियसली वो हर एक फैन चाहेगा कि टीम बढ़े गर्ल्स की और बॉयज के साथ साथ उनको भी उतना ही अचीवमेंट अभी और मिले। एंड इस जो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी भारतीय टीम की लड़कियां नहीं बल्कि हम खेल रहे हैं, तो हमें उस तरीके से अपना जितना भी अभी तक हमने सीखा और अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे और उस एक्सपीरियंस से हम विकेट चटकाएंगे और चौके छक्कों की बारिश करेंगे, तभी ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ आएगा। और जैसे हमने देखा भी है अभी तक कि हमारी शेफाली वर्मा और

वंदना की जो ओपनिंग की बारी होती है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है, लेकिन उसके बाद नीचे में हमारी ऋचा घोष भी संभालती है और जेमिमा भी संभालती है। बात करें अगर बॉलर्स की, तो बॉलर्स में भी एक से एक जुलंधर हमारे बैठे हुए हैं। मैं यही कहूंगी कि ये पैक टीम है, जैसे लास्ट टाइम पैक टीम थी वैसे ही उससे बेटर वे में पैक टीम है। ऑल द बेस्ट।

0: और यहाँ क्रिकेट की बातों को ही जारी रखते हुए अब चलते हैं इसी में यानी T20 वर्ल्ड कप में ही होने वाले कल के मुकाबलों के बारे में बताएंगे। अब आपको पहला मुकाबला 13 जून को स्कॉटलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार 3 बजे से होगा। और स्कॉटलैंड ने अपना पहला वर्ल्ड कप 2024 में खेला और उनकी टीम अपने पहले दौर के 4 मैचेस हार गई थी। वहीं आयरलैंड अब तक 4 वर्ल्ड कप खेल चुकी है और अपने खेले गए 17 मैच में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई। ये मैच रोमांचक होगा क्योंकि दोनों ही टीमें महिला T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के लिए एक दूसरे को कड़ी चुनौती देंगी। दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से होगा और ये सारे जो मैचेस हैं इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों ने अब तक, ये दूसरा मैच है जिसमें अब तक हुए 9 मैच जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बना और साउथ अफ्रीका 2 बार उपविजेता बना। 13 जून का तीसरा मैच हैम्पशायर में खेला जाएगा 11 बजे से, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच होगा ये मैच। और इन सभी टीमों के साथ मुझे लगता है कि कुछ टीम ऐसी है जो इस बार अपने आप को एक्चुअली प्रूव करने के लिए उतरेंगे और उन्हीं में से हमारी भी एक टीम है, भारतीय महिला टीम, जो कि पूरे जोर शोर से वसीम मुझे लगता है कि यहां पर इस वर्ल्ड कप को भी अपने नाम करने के लिए बिल्कुल उतारू होगी, क्योंकि हमने देखा कि ओडीआई में हमने ट्रॉफी उठाई है और उस ट्रॉफी के साथ साथ जो एक रोमांच है ना और एक जो प्रेशर है वो दूसरी टीमों पर भी उतना ही बनता है। तो अब क्रिकेट की खबरों को ही जारी रखते हैं और चलते हैं अपने सहयोगी वसीम के पास।
1: कविता, भारतीय महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का शुरुआती मैच कब और किससे हो रहा है, श्रोताओं को ये भी बताइए।
0: जी हाँ, हमारा पहला मुकाबला खेला जाएगा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम के साथ, जो कि बेहद रोमांचक मुकाबला होगा क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान के साथ हमारे जो मुकाबले हैं वो रोमांचित करने वाले होते हैं।
1: अब बात भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घरेलू श्रृंखला की। कल यानी 13 जून को धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 1:30 पर शुरू होगा और दोनों टीमें जीत के साथ श्रृंखला का आगाज करना चाहेंगी। भारतीय टीम युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में उतरेगी। टीम में रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दोनों ही खिलाड़ी चोट के कारण इस श्रृंखला में नहीं खेल सकेंगे। वहीं अफगानिस्तान की कप्तानी हशमतुल्ला शाहिदी के हाथों में होगी और टीम को रहमानुल्ला गुरबाज, रहमत शाह, अजमतुल्ला उमरजई और स्टार स्पिनर राशिद खान से बड़ी उम्मीदें होंगी। अगर दोनों टीमों के वनडे इतिहास पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 4 मुकाबले में भारत ने 3 जीते हैं जबकि 1 मैच टाई रहा है। अफगानिस्तान अभी तक भारत के खिलाफ एक दिवसीय मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाया है। हालांकि 2018 एशिया कप का वह रोमांचक टाई मुकाबला आज भी क्रिकेट प्रशंसकों को याद है। धर्मशाला की पिच शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद देती है जबकि बाद में बल्लेबाजों को रन बनाने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। ऐसे में टॉस और नई गेंद का इस्तेमाल मैच का रुख तय कर सकता है। भारत ने हाल में ही अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में बड़ी जीत दर्ज करके आत्मविश्वास के साथ वनडे श्रृंखला में उतरेगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अफगानिस्तान के खिलाड़ी किसी भी मौके को भुनाने का दम रखते हैं। एक तरफ शुभमन गिल की अगुवाई में विश्व क्रिकेट की महाशक्ति भारत, दूसरी तरफ लगातार आगे बढ़ती अफगानिस्तान की चुनौती। क्या भारत अपने दबदबे को बरकरार रखेगा या अफगानिस्तान अपनी पहली वनडे जीत दर्ज कर इतिहास रचेगा, इसका जवाब मिलेगा धर्मशाला के मैदान पर 13 जून को। श्रृंखला का दूसरा मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 17 जून को और अंतिम मैच चेन्नई के MH इंद्रम स्टेडियम में 20 जून को खेला जाएगा।

0: जहां 13 जून को मेजबान ए श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आमने सामने होंगी। यह इस प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला होगा और दोनों टीमों के लिए अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने का शानदार अवसर रहेगा। अफगानिस्तान ए की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी। उसने अपने पिछले मुकाबले में भारत ए जैसी मजबूत टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 4 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। उस जीत ने यह साबित कर दिया कि अफगानिस्तान की युवा प्रतिभाएं अब किसी भी टीम को चुनौती देने की क्षमता रखती हैं। दूसरी ओर श्रीलंका ए अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। दांबुला के पिच आमतौर पर शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाजी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि दोनों टीमों के स्पिन आक्रमण पर विशेष नजर रहेगी।
1: और अब बात करते हैं यहां पर हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट समिति ने बृहस्पतिवार को श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर 19 टीम की घोषणा की है। इस दौरे में 3 वनडे और 2 बहुदिवसीय मैच शामिल हैं। टीम की अगुवाई यशवर्धन सिंह चौहान करेंगे, जबकि लक्ष्य रायचंदानी को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी वनडे टीम में शामिल हैं और एक दिवसीय टीम में विकेटकीपर रजत बघेल और अन्वय द्रविड़ होंगे, जबकि बहुदिवसीय मुकाबलों के लिए विकेट कीपिंग के लिए मानव कृष्णा और आर्यन जो है वो संदेश सकपाल को चुना गया है। भारतीय अंडर 19 जो टीम है वो इस प्रकार है। यशवर्धन सिंह चौहान कप्तान, सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान, विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, अन्वय द्रविड़ विकेटकीपर, अमोलजीत सिंह, वुत्तकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्य परेश पटेल, मोहित उलवा, ईशान सूद।

0: तो चलिए अब क्रिकेट के मैदान से निकल के चलते हैं हम तीरंदाजी के उस एरा में जहां पर तीरों का जो महासंग्राम है वो शुरू होने वाला है। चलते हैं वसीम के पास।
1: टर्की के अंताल्या में चल रही आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3, जहां भारतीय प्रदर्शन अलग अलग श्रेणी में आगे भी बढ़ा और कहीं कहीं समाप्त भी हुई। सबसे बड़ी खबर कल शाम को खेले गए सत्र से आई, जहां भारतीय मिश्र जोड़ी कुमकुम अनिल मोहत और धीरज बोम्मा देवरा की जोड़ी रिकर्व मिक्स श्रेणी में क्वार्टर फाइनल में यूएस को 6-2 से हराया और सेमीफाइनल में जर्मनी को 6-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फाइनल में उनका मुकाबला साउथ कोरिया से 14 जून को होगा। आज खेले गए रिकर्वमैन एकल श्रेणी में भारत के धीरज बोम्मा देवरा ने तीसरे राउंड में जर्मनी के लियोन जेमेला को 6-2 से हराया और चौथे राउंड में ईरान के मोहम्मद हुसैन गुलशेन को 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में इटली के मसीमिलियानो मांदिया को 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना जर्मनी के मोरिट्स वाइजर से 14 जून को होगा। दूसरी तरफ भारतीय दल में निराशा के पल भी हाथ लगे। कल के सत्र में कंपाउंड मिक्स श्रेणी में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में यूएस से 156-156 से हारकर बाहर हुई। रिकर्वमैन श्रेणी में तीसरे दौर में नीरज चौहान ने इटली के फ्रांसेस्को ग्रेगोरी को 6-0 से हराया, लेकिन चौथे दौर में जर्मनी के मोरिट्स वाइजर से 0-6 से हार के अपनी चुनौती समाप्त करी। रिकर्व वुमेन इंडिविजुअल श्रेणी में सभी महिलाएं तीरंदाज तीसरे दौर में पहुंची, जहां दीपिका कुमारी ने चीनी ताइपे की ली साई ची को 6-2 से हराकर चौथे दौर में स्पेन की एलिया कैनालिस से 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। कुमकुम मोहत तुर्की की दानिया से 2-6 से हारी। कीर्ति चीनी ताइपे की हु सिन जू से 1-7 से हारी। अंकिता जर्मनी की कैथरीना से 2-6 से हार गई। कंपाउंड मेन और कंपाउंड वुमेन श्रेणी में भी भारत को आगे के दौर में जगह नहीं मिली।

अब रुख करते हैं उस खेल की ओर जहां रैकेट की रफ्तार और शटल की उड़ान तय करती है जीत का आसमान। नेट के इस रोमांचक संग्राम में हर स्मैश है चुनौती और हर रैली में है रोमांच। बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन BWF सीरीज 500 की, जहां भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और सीधे गेमों में 21-6 से एक तरफा जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना

0: करुणन की भारतीय जोड़ी की चुनौती आज समाप्त हो गई जब वे क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की जोड़ी लियू कुआंगहेंग और चेन चेन कुआन से एक काफी संघर्षपूर्ण मैच में हार गए। पहला गेम 19-21 से करीबी हार मिली, लेकिन दूसरे गेम में 9-16 के स्कोर पर रिटायर हो गए और मैच चीनी ताइपेई के खाते में गया।
1: जी हाँ, और अब बैडमिंटन के कोर्ट से निकल के आपको लिए चलते हैं शूटिंग रेंज की ओर, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की 30 सदस्यीय शूटिंग टीम की घोषणा कर दी। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली एशियाई खेलों में शूटिंग प्रतियोगिताएं 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। भारतीय दल में 15 पुरुष और 15 महिला निशानेबाजों को जगह मिली है। टीम की अगुवाई डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर करेंगी। एशियन गेम्स आयोजन समिति द्वारा निर्धारित 30 खिलाड़ियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए चयन समिति ने ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो एक से अधिक स्पर्धाओं में भाग लेने की क्षमता रखते हैं। इसी रणनीति के तहत विदार्सा के विनोद रुद्राक्ष, बालासाहेब पाटिल, मनु भाकर और ईशा सिंह को विभिन्न स्पर्धाओं में शामिल किया गया है। हालिया प्रदर्शन से उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि भारतीय निशानेबाज हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न ISSF विश्व कप में भारत ने कई पदक जीते। विशेष रूप से ईशा सिंह ने म्यूनिक विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं सुरुचि और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर भारत की मजबूत दावेदारी पेश की है। 18 राइफल पिस्टल और 12 शॉटगन निशानेबाज शामिल हैं इस पूरे ही दल में। कुल 18 राइफल और पिस्टल 12 शॉटगन निशानेबाजों को भी शामिल किया गया है। और इस तरह से जो ये टीम है ये चयन की गई है, और ये इनसे पूरा पूरा जो एक उम्मीद है वो यहाँ पर लगाई जा रही है कि किस तरीके से ये जितने भी शूटर है ये भारतीय दल जो है वो कितने पदक यहाँ पर लेकर आएगा। और इसी के साथ अब हम आपको एक बहुत ही दुखद खबर बताने जा रहे हैं जो कि निशानेबाजी जगत से ही जुड़ी हुई है। जब एक तीर जो बहुत कमाल करता है वो लोगों के दिलों को छू जाता है और वो खिलाड़ी हमेशा याद रह जाता है, ऐसा ही आज भारतीय निशानेबाजी जगत के लिए जो एक दिन है, क्योंकि ये अत्यंत दुखद है कि देश के महान निशानेबाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजेता और प्रेरणादायी कोच जसपाल राणा जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उनका निधन जो है भारतीय खेलों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि इस तरह के शूटर थे जिनको जितना जिनके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। 28 जून 1976 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में जन्मे जसपाल राणा के उनके पिता नारायण सिंह राणा 1971 की लड़ाई के अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवा की, और बाद में फिर वो खेलों की ओर उनका जो रुझान है वो बढ़ गया। वहीं जसपाल जी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी जो प्रतिभा है उसका परिचय दे दिया था। मात्र 12 साल की उम्र में जसपाल राणा ने 1988 में अहमदाबाद में हुई 31वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अपने नेशनल डेब्यू पर सिल्वर मेडल जीते। इसके साथ साथ बतौर खिलाड़ी उन्होंने बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय पदक है वो अपने नाम किए। राष्ट्रमंडल खेलों में, विश्व प्रतियोगिताओं में भारत का उन्होंने गौरव बढ़ाया। उनके नाम राष्ट्रमंडल खेलों में 15 पदक हैं जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। उनकी उत्कृष्ट जो उपलब्धियां हैं उनके लिए उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कोच जसपाल राणा ने भारत में जो सितारे हैं शूटर के उनको भी तराशा, उनके माध्यम से भारत में हमेशा से जो मेडल हैं वो आते रहे हैं। और मनु भाकर जो हैं वो उनकी शिष्या हैं जिन्होंने ओलंपिक पदकों के लिए जानी जाती हैं, और फिलहाल पूरा जो निशानेबाजी जगत है वो इसमें इस समय शोक में है, और ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है भारत के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के साथ जसपाल राणा की कुछ बात की हुई झलकियाँ।
2: My story is not planned. I'm talking about 89-90, like, you know, before my 91 was my first international medal and 87 was my first national medal. I did not have my gun, not even air pistol, and it was not available in the market at that time. None of us used to travel so much in international competition and we were nowhere. So there was no connection to which pistol, how to get it, and there was no policy from the government side that how can one can import. There was nothing with the federation. They had very limited resources. They did not even have a proper office. You remember they used to have offices in Nehru Stadium. They also grew, and like, you know, they also got better, and we also started winning medal. To get the license that time it was so difficult, but now with the new Arms Act, a kid who is a shooter can apply at the age of 12 and will get the license no matter which state. Shooting is

0: the mind game. You need a very strong mind, a very strong heart also. In India, like, from very young age, you see a lot of things which other kids don't see that. And they also know that, if to achieve, to be on the top, you have to beat everyone, no matter who the person is.
1: जसपाल राणा के सिखाए हुए जो यहाँ पे शॉर्ट्स हैं वो हम सभी के बीच रहेंगे, उनकी बातें हम सबके बीच रहेंगी। जी राजा रमन जो कि एक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, क्या कहना है उनका जसपाल राणा को लेकर, आइए सुनते हैं।
2: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो 49 का उम्र कोई उम्र ही नहीं होता है जाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत रही है शूटिंग में जसपाल राणा की। उनका योगदान मेरे हिसाब से डॉक्टर करणी सिंह और राजा रणधीर सिंह इनसे भी बहुत बड़ा रहा है। वजह मैं बताता हूँ आपको। शूटिंग का एक छवि था कि ये राजा महाराजाओं का खेल है, रईसों का खेल है। जसपाल राणा जब वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बने स्टैंडर्ड पिस्टल में 1994 में, लोगों को विश्वास हुआ कि ये आम आदमी भी खेल सकता है। अगर भारत का स्तर आज ऊंचा है विश्व स्टैंडर्ड्स पे, अगर हमारे शूटर्स ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतते हैं, तो इसमें जसपाल राणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: तो इस योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कामना करेंगे। और आज इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले कार्यक्रम में फिर से आपको खेल जगत की ओर लेकर चलेंगे रोमांचक खबरों के लिए। अब इस कार्यक्रम में मुझे कविता शर्मा को, मेरे सहयोगी
3: वसीम अहमद,
1: अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
5: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. This is the second time the U.S. envoy has been summoned by the ministry. 3 Indian seafarers who were initially reported missing have been confirmed dead in one of the attacks. India's retail inflation accelerated to 3.93% in May this year on an annual basis, rising for the fifth consecutive month under the new series. The inflation print was moderately higher from 3.48% recorded in April. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.25%, while in urban regions it rose to 3.53%. The food inflation rate, based on the All India Consumer Food Price Index, stood at 4.78% last month, up from 4.2% in the preceding month. India AI Mission today launched Varya, a distilled video model built to make frontier video AI affordable, accessible and relevant. Addressing the launch event in New Delhi, Secretary in the Ministry of Electronics and Information Technology, S. Krishnan said the launch of one of the foundational models supported under the India AI Mission marks a significant milestone in India's AI journey. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarter-final clash today. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The Sensex surged 1,695 points to close at 75,528, while the Nifty jumped 461 points to settle at 23,623. And that is the end of this news bulletin.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गतद्वादशवर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितमिति। गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबंधितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानां उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्य भेदन स्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 51 वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कैनेडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् वित्तीय समावेशे उद्यमशीलता इत्यतः आरभ्य शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छता, गृहनिर्माण, क्रीडा विज्ञानं, प्रशासनञ्च यावत् विविधेषु क्षेत्रेषु महिलाः प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्त्यः सन्ति। सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् ड्रोन तन्त्रज्ञानमित्यादिषु उदयोन्मुखक्षेत्रेषु महिलानां वर्धमान सहभागित्वेन अवसरस्य नूतनाः मार्गाः उद्घाट्यन्ते। सम्पूर्णे देशे च विकासपरिदृश्यं परिवर्तते। तत्पूर्वम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् गत द्वादशवर्षेषु NDA इत्यस्य सर्वकारः महिलानां नेतृत्वे विकासकार्यम् अकरोत्। एतच्च अन्येषु क्षेत्रेष्वपि दृश्यते।
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए लोकेंद्र भाई, हर बच्चे का है अधिकार शिक्षा, सुरक्षा और प्यार।
1: बिल्कुल,
0: इसी भावना को उजागर करता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि हर साल 12 जून को मनाया जाता है। और इसमें इसी भावना को ध्यान में रखा गया है कि 2030 तक हम पूरी तरह से चाइल्ड लेबर को समाप्त करें और बच्चों को एक उन्मुक्त जीवन दें जिसमें उनको शिक्षा का अधिकार भी मिले और समान प्यार भी मिले।
1: बिल्कुल प्रियंका बहन, देखिए इसकी शुरुआत 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है बाल श्रम की समस्या के प्रति लोग, यानी कि बाल श्रम यानी कि बाल मजदूरी के प्रति लोगों को जागरूक करना और बच्चों के उनके अधिकारों को दिलवाना। बाल श्रम में वह स्थिति है कि बच्चों को आज उनकी आयु के अनुरूप खेल शिक्षा खेलकूद और स्वास्थ्य विकास में उनका स्वास्थ्य विकास में छीनकर उनका काम कराया जा रहा है। गरीबी हो या अशिक्षित हो, सामाजिक समानता जागरूकता की कमी हो, इसके बारे में सबको लोगों को जागरूक कराया जाता है। बाल श्रम बच्चों के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है ताकि उनके भविष्य को प्रभावित किया जा सके।
0: बिल्कुल, और भारत में तो लगातार बहुत सारे NGO हैं, सरकारी संगठन है या बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं जिसके तहत बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेहद ही टेक केयर उनकी किस तरह से की जाए इस पे काम कर रहे हैं। इसी के तहत बचपन बचाओ आंदोलन के तहत कैलाश सारथी को भी नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था ताकि इस तरीके के जो काम हैं बच्चों से संबंधित, उनकी उन्नति से संबंधित, उसको और भी बढ़ावा मिल सके। और बच्चे ही हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें एक अच्छा विकसित समाज मिल पाए।
1: बिल्कुल प्रियंका बहन, और देखिए भारत में बाल श्रम रोकने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि वे विद्यालय जाकर अपने सपनों को साकार कर सकें। सरकार, सामाजिक संगठनों और नागरिक मिलकर इस समस्या का समाधान के लिए प्रयास कर सकें। और देखिए प्रियंका बहन, इसके साथ साथ इस दिवस पर विद्यालयों में, संस्थानों में विभिन्न संगठनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम जैसे रैलियाँ, चर्चाएँ आयोजित की जाती है और इसमें संकल्प लिया जाता है कि बच्चों की मजदूरी कराने से रोका जा सके।
0: बिल्कुल, इन सब बातों का रखें ध्यान और कार्यक्रम में करवाते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में ये रागिनी।

0: प्रियंका बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये रागनी कलाकार थे राजकुमार,
1: राजेश
0: राजेश
1: कुमार।
0: कुमार अट्टा।
1: बिल्कुल। और देखिए भाई, जब भी हमारी जो सरकार है समय समय पर सर्वेक्षण कराती रहती है, और ग्रामीण सर्वेक्षण और उससे प्राप्त डेटा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए किया जाता है, और इस
0: हाँ
1: डेटा के आधार पर ही सरकार प्रभावी नीतियाँ बनाती है और उसे क्रियान्वयन करके अपने कार्य को संभव कर पाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक वार्ता हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है ग्रामीण सर्वेक्षण और डेटा का हमारे विकास में महत्व। और वार्ताकार हैं सुमन वर्मा, प्रवक्ता राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुग्राम से। तो सुनते हैं ये वार्ता।
2: भारत एक विकासशील देश है, हालांकि इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि वर्तमान में भारत की विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है और यह देश निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में अभी भी निरंतर कार्य हो रहे हैं। भारत में लगभग 65% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत सरकार के समक्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके लिए सरकार को देश की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार समय समय पर सर्वेक्षण कराती है। यह एक संरचित शोध तकनीक है, जिसका उपयोग किसी लक्षित जनसंख्या से सटीक जानकारी या डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार या ऑनलाइन फॉर्म जैसे उपकरणों का उपयोग करके मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा प्राप्त किया जाता है। सर्वेक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल फॉर्म भेजकर डेटा प्राप्त करना, जो सबसे तेज और सस्ता है, कॉल करके लोगों से राय या फीडबैक लेना, सीधे मिलकर प्रश्न पूछना। सर्वेक्षण के प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम हमें यह स्पष्ट करना है कि

0: आप क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लक्षित समूह में से सही लोगों को चुनना, स्पष्ट और सीधे प्रश्न बनाना और अंतिम एकत्रित जानकारी को व्यवस्थित रूप में एकत्रित करके निष्कर्ष निकालना। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण का महत्व सामाजिक आर्थिक विकास, सटीक योजना निर्माण और सरकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह जमीनी हकीकत का पता लगाने और संसाधनों के सही वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वेक्षण ग्रामीण जनसंख्या, आय स्तर और बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल का सटीक आंकड़ा प्रदान करता है। गाँव की विशिष्ट समस्याओं जैसे रोजगार की कमी, सिंचाई की समस्या या आवास की पहचान करके उसी अनुसार विकास नीतियां बनाने में मदद करता है। सर्वेक्षण सुनिश्चित करता है कि सरकारी फंड और सहायता का उपयोग सही जगह हो और जरूरतमंदों को अधिकतम लाभ मिले। ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना जैसे सर्वेक्षण ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड और मालिकाना हक दिलाने में सहायक है। श्रोताओं, प्रगति और विकास शुंभकर के साथ देश में 1 अप्रैल 2026 से भारत देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। भारत में जनगणना सर्वेक्षण 1872 से की जा रही है। भारतीय जनगणना सर्वेक्षण का 150 वर्षों का इतिहास है। जनगणना सर्वेक्षण हमारे लोकतंत्र को आधार प्रदान करती है, क्योंकि जनगणना सर्वेक्षण द्वारा मकानों की स्थिति, सुविधाएं एवं संपत्तियां, धर्म, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भाषा, साक्षरता एवं शिक्षा, आर्थिक गतिविधि जैसे विभिन्न मानकों पर सूक्ष्म स्तर के आंकड़े उपलब्ध कराती है। एकत्रित किए गए आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे राष्ट्र की योजना और विकास के लिए डेटा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वर्तमान जनगणना सर्वेक्षण विशिष्ट और उल्लेखनीय है, क्योंकि सर्वप्रथम जनगणना सर्वेक्षण डिजिटल उपकरणों से किया जाएगा। इसमें जो भी प्रगणक होंगे वे विशिष्ट मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके परिवारों से आंकड़ों का संग्रहण करके स्वयं के स्मार्टफोन से उसको एकत्रित रखेंगे। इसके साथ ही परिवारों को एक निर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से सब गणना का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जनगणना सर्वेक्षण 2027 दो चरणों में पूरा किया जाएगा। सर्वेक्षण के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के समय प्रगणक मुख्य रूप से मकानों की स्थिति, परिवारों की उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। इनके लिए उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार 34 प्रश्न बनाए हैं, जो वे घर घर जाकर मकानों को एक नंबर देंगे और उसके अंदर रह रहे निवासियों से जाकर वे प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार जो प्रथम चरण होगा उसमें मकान सूचीकरण और मकानों की जो स्थिति है उस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। भारत की जनगणना अपनी समृद्ध परंपरा के कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक मानी जाती है तथा यह विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में शामिल है। जनगणना सर्वेक्षण भारत के संविधान की सूची अनुच्छेद 246 के कर्म संख्या 69 पर अंकित है तथा जनगणना अधिनियम 1948 इसके संचालन का विधिक आधार प्रदान करता है। भारत में प्रथम जनगणना सर्वेक्षण सन 1872 में हुआ था, जो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर संपन्न हुआ था। वर्ष 1881 में पहली बार संपूर्ण देश में एक साथ जनगणना सर्वेक्षण किया गया। इसके पश्चात 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष में बिना किसी व्यवधान के जनगणना होती रही। तथापि कोविड-19 महामारी के कारण यह सर्वेक्षण 2021 में नहीं हो पाया था, जो अब 2026 में शुरू होकर 2027 तक चलेगा। श्रोताओं, इस समय हमारे देश में जनगणना सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा। इसमें देश के हर व्यक्ति की वास्तविक गिनती की जाएगी और उनके व्यक्तिगत विवरण जैसे उम्र, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और जाति से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे। श्रोतागणों, सरकार जब भी कोई सर्वेक्षण देश में कराती है तो प्राप्त सूचना के आधार पर देशवासियों के लाभ के लिए आवश्यक आधारभूत स्तर की जानकारी प्रदान करती है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों की सीटों का परिसीमन किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षण के दौरान केवल जानकारी एकत्र नहीं की जाती, बल्कि उन जानकारियों के आधार पर देश की प्रगति और विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इस समय जो जनगणना सर्वेक्षण हो रहा है, उसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह मानव बस्तियों की स्थिति, आवासीय कमी और आवासीय आवश्यकताओं के संबंध में आंकड़े प्रदान करता है, जो आवास नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त यह परिवारों में उपलब्ध सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसकी आवश्यकता केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों तथा अन्य गैर सरकारी एजेंसियों को विकास एवं योजना निर्माण के लिए होती है। सरकार समय समय पर अनेक सर्वेक्षण कराती है, ताकि देशवासियों की वास्तविक स्थिति से सरकार परिचित हो सके, प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक व्यक्ति से आकर बात कर सके, ऐसा संभव नहीं है। अतः वे समय समय पर सर्वेक्षण के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, ताकि देशवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसी के अनुसार योजनाएं बना सके। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सर्वेक्षण में भली भांति भूमिका अदा करे, उचित आंकड़े जुटाए और देश के विकास और समृद्धि में योगदान दे।
1: प्रियंका बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये वार्ता का विषय था ग्रामीण सर्वेक्षण और डेटा का हमारे विकास में महत्व। वार्ताकार थी सुमन वर्मा, प्रवक्ता राजकीय उच्चतर महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय गुरुग्राम।
2: बिल्कुल, और देखिए सर्वेक्षण बड़ा ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे को पता, सरकार को पता चलता है सही आंकड़ों से, और फिर वो अपनी नीतियों को बनाते हैं देश के विकास के लिए, उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित कर पाते हैं। हाँ। और अगर हम सरकारी नीतियों की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसी योजना है जिसके ज़रिए सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसे एक मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। इसके साथ साथ नए स्कूल खोलना, मौजूदा जो स्कूल हैं उनमें क्लासरूम, शौचालय और पीने के पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सभी लिंग और सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए जो हाशिए पे जो वर्ग है उन्हें भी समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया है, और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि बच्चे अपने भविष्य में काबिल बन सकें।
1: बिल्कुल प्रियंका बहन, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब हम भाइयों का कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं करमबीर की आवाज़ में ये रागनी।

0: और इसी रागनी के साथ हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में

0: जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए लोकेंद्र भाई, जब कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार अगर हम अपना खान पान रखते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है, और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में पसीना खूब आता है, तो हमें ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए, ऐसे फलों का चयन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे कि बेल वाली सब्जियाँ हैं, लौकी, तोरई, खीरा, कद्दू, इनमें भरपूर मात्रा में पानी भी होता है, इसके साथ साथ पचाने में भी आसान होती है और हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखती है।
1: बिल्कुल प्रियंका बहन, और इसके साथ साथ देखिए फल सब्जियों और मिलेट्स की भी हम बात कर लें कि हमारे स्वास्थ्य में स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत होता है और शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। फलों और सब्जियों में विटामिन, खनिज और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विभिन्न बीमारियों से बचाव भी करते हैं। अगर मिलेट्स की बात की जाए जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, ये जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी ये सब अनाज शामिल हैं और ये इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मिलेट्स में नियमित सेवन मधुमेह, मोटापा और हृदय संबंधी रोगों का को जोखिम भी कम किया जाता है इनसे।
0: बिल्कुल, इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेय पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे नारियल का पानी ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं, और जैसे आप अधिक से अधिक, और वैसे भी आप घर से जब भी निकले तो पानी की बोतल साथ में लेकर ज़रूर निकले, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़रूरी होता है कि हम पानी पीते रहें और जो थकावट है वो हमें ना हो पाए, क्योंकि गर्मियों में देखा जाता है कि बहुत जल्दी थकान भी हो जाती है। तो खाने पीने का और हर तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय पर उठें, समय पर सोएं, इस तरीके से अगर आप अपनी दिनचर्या रखेंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा और फिर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने कार्य को अंजाम दे
1: बिल्कुल
0: पाएंगे।
1: प्रियंका बहन,
0: और देखिए कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए जानकारियां भी लेकर आते हैं, इसी हम एक बातचीत लेकर आए हैं। खेत बचाओ अभियान में इफ्को एमसी की भूमिका, इसमें जानकारी दे रहे हैं मनोज वार्ष्णेय, प्रबंध निदेशक इफ्को एमसी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, ये तो आप जानते हैं इफ्को किसानों की संस्था है, और भाई इफ्को किसानों की संस्था के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं एक सहयोगी संस्था है इफ्को एमसी, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देती है, प्रदान करती है, और ये उत्पाद हैं जो भी कोई बीमारी लगती है किसानों तक पहुंचाती है। क्या कुछ काम चल रहा है, और एक भारत सरकार का अभियान चला है खेती बचाओ, इसमें इफ्को एमसी की क्या भूमिका, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं इफ्को एमसी के प्रबंध निदेशक मनोज वार्ष्णेय जी। मनोज जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे खेती बचाओ अभियान में

0: आप उनको भी जागरूक कर सकें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, इफ्को मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम जिसको इफ्को एमसी के नाम से जाना जाता है, कृषि रसायनों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है और मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्था ने ऑलरेडी पिछले साल 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए और अब इस साल व्यापार में कार्यरत है। आपके इस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि इफ्को एमसी के कुछ विषय जिन पे काम करता है और उनको बहुत आसान तरीके से अगर समझा जाए तो मैं सिर्फ 4 शब्दों में इफ्को एमसी की भूमिका को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले है सही दवा। सही दवा मतलब आपके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए जिन कृषि रसायनों की ज़रूरत पड़ती है, हम सभी उच्च कोटि के कृषि रसायनों को आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करती है इफ्को एमसी। सही दवा के बाद दूसरा है सही दाम। बाज़ार में जितने भी कीटनाशक या कृषि रसायन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों से दाम चार्ज किए जाते हैं और इफ्को एमसी का जो पूरा उद्देश्य है, आपको सही दवा सही दाम पे उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, इसमें सबसे अगर खास बात देखा जाए तो सबसे ये है कि इफ्को एमसी के सारे उत्पाद फिक्स्ड एमआरपी पे उपलब्ध कराए जाते हैं। फिक्स्ड एमआरपी से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जो दाम उसके ऊपर अंकित है, उसी दाम को आपको दुकानदार को या सहकारी संस्था को पे करना है, तो जिससे आपको सही दवा सही दाम पर उपलब्ध होती है। साथ में तीसरा चीज़ है उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता मतलब जितने भी कृषि रसायन है, इफ्को एमसी की क्वालिटी पॉलिसी है। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को देखा जाए, सही दवा सही दाम उच्च गुणवत्ता, ये 3 ध्येय है इफ्को एमसी के। किसान को और आपकी खेती के संरक्षण को, जो भी आपकी मेहनत है उस मेहनत को बचाने के लिए हम कार्यरत हैं। और इन सब के साथ एक और अनूठा पैगाम है इफ्को एमसी का, किसान सुरक्षा। इफ्को एमसी के कोई भी उत्पाद लेते हैं आप, उस पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। 16,000 रुपये तक के उत्पाद इफ्को एमसी के अगर आप खरीदता है कोई एक किसान, तो उन उत्पाद खरीदने पे करीब 1,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा जो है किसान को मिलता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत है आपके पास, आपके पास एक बिल होना चाहिए और इसकी जो समय सीमा है पूरा 1 साल है। 1 साल में आप टोटल 16,000 रुपये के अगर उत्पाद खरीदते हैं, 1,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इन सब आधारों के ऊपर इफ्को एमसी खड़ा है और हमें बहुत हर्ष है कि इफ्को एमसी ने पिछले साल 2025-26 में रिकॉर्ड टर्नओवर किया था। तो इसमें आप सब लोगों का प्यार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार इफ्को एमसी को इतना पसंद करने के लिए। रही बात खेती बचाओ अभियान, जैसे इस समय ग्लोबल वॉर सिचुएशन की वजह से कृषि रसायनों के दाम में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो हम अपनी कंपनी की तरफ से प्रयास कर रहे हैं जैसे भी करके आपके उत्पादन कॉस्ट को, आपकी खेती की लागत को कैसे कम रख सकें। तो इसमें हमारा जो प्रयास है, हम समय से कृषि रसायनों को या उनके टेक्निकल्स को या फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट को टाइमली परचेज कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में आपके कृषि उत्पादन में कोई भी तरीके की समस्या ना आए। तो ये ऐसा इफ्को एमसी का इस समय प्रयास चल रहा है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, वो ये है कि आज के समय में जैविक उत्पादों की बहुत ज़रूरत आ रही है, मार्केट इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे जैविक उत्पाद मार्केट में मिल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में इफ्को एमसी ने भी अपने जैविक उत्पाद बाज़ार में उतारे हैं और जिनका नाम है जेन नेक्सा। जेन मतलब बैलेंस और नेक्सा मतलब नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। तो जेनेक्सा श्रृंखला को बाज़ार में उपलब्ध कराया है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जेनेक्सा सीरीज़ के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिससे कृषि रसायनों के साथ साथ जैविक उत्पादों का, जिसको बोलते हैं बायो इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोटेक्शन की इस कॉन्सेप्ट को, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि जेनेक्सा श्रृंखला के उत्पादों का भी प्रयोग करें अपनी खेती में। इसी में एक उत्पाद है माइकोजेन। माइकोजेन जो एक बहुत ही उच्च कोटि का माइकोराइजा प्रोडक्ट है। हमें पता है आज के समय में खादों की उपलब्धता में यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता के चैलेंज हैं। तो अपनी फसल के पोषण को प्रोटेक्ट करने के लिए माइको इफकोजन जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से माइकोराइजा जड़ों के ऊपर एक बाहरी और एंडोमाइकोराइजा डेवलप होने की वजह से आपके पास फ़ायदा क्या होगा कि कम पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होने देगा और साथ में आपके उत्पादन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव देगा। तो मुझे आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इन ऐसे जैविक उत्पादों का आप इस्तेमाल करें, और जिससे खाद की रहने वाले संकट को या खाद की कमी या उसकी कम उपलब्धता को भी आप एड्रेस कर सकें। रही बात आने वाले समय में किस तरीके का प्रोडक्शन, मॉनसून बहुत, जो IMD की फोरकास्ट के हिसाब से कि मॉनसून कुछ जगह पे बहुत अच्छा रहेगा और कुछ जगह पे थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि सचेत रहें और सही तकनीक से अपने कृषि और अपने फसल उत्पादन को करें। और अगर हम सचेतता के साथ और सही ज्ञान के साथ अपना फसल उत्पादन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरीके से अपने, एक तो फसल उत्पादन को खोएंगे नहीं और खेती से होने वाली आपकी आय किसी भी तरीके से कम नहीं होगी।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि सही तकनीक और सही समय पर जानकारी के द्वारा आप अपनी खेती को बचाएंगे, खेती में काम करेंगे तो जरूर आप खेती के साथ साथ आप अपने उत्पादन को भी बरकरार बनाए रखेंगे। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रियंका बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये जानकारी। जानकारी का विषय था खेत बचाओ अभियान में इफको MC की भूमिका। जानकारी दे रहे थे मनोज वासने, और जो कि प्रबंध निदेशक है इफको MC, और इनसे बातचीत कर रहे थे PS भाटी।
3: बिल्कुल, और देखिए लगातार हम भी अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहते हैं कि अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को अग्रसर होना चाहिए ताकि रसायनों का कम प्रयोग हो और हमारे जो खेत की मिट्टी है वो भी अच्छी बनी रहे। और हमारे टॉकर ने भी बात की कि जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे रासायनिक जो वो उन पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो और जैविक खेती की ओर हम लगातार अग्रसर हों। और हम बात कर रहे थे अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी, तो मोटे अनाज खाने के साथ साथ उगाने के भी बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि ये कम उपजाऊ भूमि पर भी हो जाते हैं और बाज़ार में लगातार इनकी डिमांड बढ़ रही है और इनसे बने हुए प्रोडक्ट की भी बहुत ही अधिक डिमांड है। तो हमारे जो अगले कलाकार हैं वो भी हमें मोटे अन्न के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मोटा अन्न उगाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और सुनते हैं ब्रजपाल चरोड़ा की आवाज़ में ये रागनी।

0: प्रियंका बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे, ये रागिनी कलाकार थे ब्रजपाल सिंह चरौरा।
1: और देखिए, हम सरकारी अगर योजनाओं की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख और परिवर्तनकारी पहल है, जिसे कि 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार, उद्यमिता और मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण को देखते हुए शुरू किया गया था। और इसमें जो भी युवा हैं उन्हें नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनाया जाए, ऐसा इसमें विचार किया गया था।
0: बिल्कुल प्रियंका बहन, इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया के तहत नए उद्यमों को पंजीकरण कराने की सरल प्रक्रिया, कर में छूट, वित्तीय सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकार, सम्मति सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ इसमें युवाओं को अपने नए विचारों को व्यवसाय के रूप में देने का अवसर भी मिलता है। हम अब बात कर लें, इसमें यह योजना तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करती है और इसके परिणाम स्वरूप देश में हजारों नए स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। प्रियंका बहन, जैसे कि जिन्होंने रोजगार में अनेक अवसर पैदा किए हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है।
1: बिल्कुल, और कोई भी व्यवसाय शुरू करना होता है तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है धन की समस्या। तो
0: हाँ
1: इस बात को ध्यान में रखते हुए लोन की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि आपका जो भी स्टार्टअप है उसके साइज़ और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है।
0: जी
1: तो स्टार्टअप इंडिया के इस जो कार्यक्रम है इसमें युवाओं को अधिक से अधिक भागीदार होना चाहिए, ताकि इस योजना को
0: भरपूर लाभ उठा सके, जिससे उनका वो अपने उद्यमी बन सकें।
1: बिल्कुल। और अब सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: प्रियंका बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये उपदेश। कलाकार थे जयप्रकाश शर्मा।
1: देखिए लोकेंद्र भाई, किसानों के लिए मौसम की सटीक जानकारी हो जाए अगर प्राप्त, तो फसलों को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। किसान अपने मोबाइल पर मेघदूत ऐप के जरिए अपने ब्लॉक स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान और कृषि सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा IMD और मौसम ऐप का उपयोग करके भी हर रोज़ मौसम की ताज़ा अपडेट और बारिश का अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सटीक जानकारी दी जाती है मौसम विभाग द्वारा। इस ऐप में तापमान, बारिश और आंधी की सटीक जानकारी किसान भाइयों को मिलती है, और अगर समय रहते सटीक जानकारी मिल जाए तो उसका लाभ किसान भाइयों को होता ही है।
0: हाँ।
1: और देखिए, अगर हम बात करें अपने कार्यक्रम की, तो कल है शनिवार, और शनिवार को हमारे श्रोताओं का पसंदीदार कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम, जो कि लोकगीतों पर आधारित होता है, जिसमें हमारे श्रोता फ़ोन के ज़रिए हमें अपनी पसंद से अवगत कराते हैं और हम उनके पसंद के कलाकारों को और उनके पसंद के गीतों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: हाँ।
1: तो कल 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के दौरान आपको फ़ोन नंबर और रिकॉर्डिंग का समय, हर एक जानकारी विस्तृत रूप से दी जाएगी। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम
1: राम,
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ खूबसूरत सी कव्वालियां।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गजल और कव्वाली के कार्यक्रम का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर पहचाना जा रहा है।
6: प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण।
5: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है।
6: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है।
5: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनी हैं और आज एक भी गांव नहीं है जो हाईवे से न जुड़ा हो।
7: 12 वर्षों को देखें तो भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी, उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया।

0: और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।
1: दिल्ली नगर निगम ने आज से अपने सभी 12 जोन में विशेष स्वच्छता और साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया। अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। ये अभियान मोदी सरकार के 12 वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को और सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज जल बोर्ड मुख्यालय में पानी के टैंकर का कमांड और कंट्रोल सेंटर और SCADA प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी में टैंकर ऑपरेशंस की निगरानी प्रणाली का जायजा भी लिया। श्री सिंह ने 1916 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की प्रणाली की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के समय में और सुधार करने तथा समस्याओं का समाधान और भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां की ओर स्थित दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। नमो भारत फुटओवर ब्रिज को रेलवे फुटओवर ब्रिज के साथ जोड़ने और एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, जिसे मई 2026 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि यात्री सुरक्षा के हित में और कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए सराय काले खां की ओर स्थित रेलवे स्टेशन का मौजूदा प्रवेश और निकास द्वार दोबारा बंद कर दिया गया है। राजधानी के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग इमारत के भूतल स्थित पार्किंग क्षेत्र में लगी, जहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई।
2: दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह 2:25 पर घटना की सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां भेजी गई। राहत और बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि तुगलकाबाद में आग लगने की घटना और इससे हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और सभी संबंधित विभाग समय पर मदद और सहायता पहुंचाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलजाब में आग की घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन बहादुर नागरिकों ने संकट के समय कई लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और संवेदना का परिचय दिया। उन्होंने इन दुर्घटनाओं में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने राजधानी में सार्वजनिक यातायात की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में DTC ने एक नया रूट 806A का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के द्वारका मोड़ और पापरवत गांव के बीच पायलट आधार पर शुरू किया गया नया रूट 800 ए सेवा पापरवत गांव, नांगली, सकरावती, काकरोला और आसपास के इलाकों के नागरिकों को सीधा बस कनेक्टिविटी देगी। यह मार्ग दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ग्रामीण और शहरी सीमावर्ती इलाकों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है। फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में

0: कि यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी, किफायती और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पूरी दिल्ली में सतत और ग्रीन मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की लगातार कोशिश को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक परियोजना DROP का शुभारंभ किया। ये पहल प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज डॉ BR अम्बेडकर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री ने सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर प्रगति पथ यात्रा के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी, जनोन्मुखी तथा व्यापक बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अब अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नाम पट्टिका का अनावरण किया। दिवंगत अश्विनी चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और करनाल से पूर्व सांसद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस चौक का नाम बदलना बहुत ही सुखद पल है।
2: आज एक खुशी का मौका है कि इस चौक को दिल्ली सरकार ने मिन्ना चौक के नाम से निमंत्रण किया है और इस चौक को हम सबका फर्ज है, सरकार का भी है, लेकिन आप सबका है कि ये दिल्ली का सबसे साफ सुथरा और अच्छा चौक कहलाया जाए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अश्विनी चोपड़ा का जीवन जनसेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा।
3: समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों को जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, ऐसे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए किसी चौक चौराहे का नाम रखते रहे हैं। आज ये चौक जो पूर्व में ब्रिटानिया चौक कहलाता था, पुण्यतिथि जो अश्विनी चोपड़ा जी की है, हमने ये तय किया कि इस चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा मिन्ना रखा जाए, ताकि एक ऐसे निर्भीक पत्रकार जिन्होंने हमेशा समाज और देश की आवाज बन करके काम किया, उनको सरकार की ओर से सम्मानित किया जाए।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों को सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय निशानेबाजी को नई पहचान दिलाने और अनेक खिलाड़ियों का मार्गदर्शन देने में जसपाल राणा का योगदान सदैव याद किया जाएगा। राजधानी में आज दिन भर उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने तथा दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास

इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में नाटक रेडियो के रंगमंच।
1: आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष रेडियो नाटक रेडियो का रंगमंच के संपादित अंश। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: नमस्कार। आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित श्रोता और उपस्थित सभी कला प्रेमियों का अभिनंदन इस विशेष कार्यक्रम में। आज का ये अवसर अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक है। हम सब यहाँ एक ऐसे संस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने 9 दशकों से देश की आवाज़ बनकर करोड़ों लोगों के जीवन को गहरे से छुआ है। आकाशवाणी, आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल समय की यात्रा नहीं बल्कि संस्कृति, साहित्य, संगीत, समाचार और जन जागरण की एक समृद्ध परंपरा के 90 स्वर्णिम अध्याय हैं। रेडियो ने केवल सूचनाएं ही नहीं पहुंचाई हैं बल्कि कल्पनाओं को पंख दिए हैं, संवेदनाओं को स्वर दिया है और कहानियों को जीवन दिया है। विशेष रूप से रेडियो नाटक की अगर बात की जाए तो रेडियो नाटक ने श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है, इस बात से आप सभी सहमत होंगे। बिना दृश्य के केवल ध्वनि, संवाद और संगीत के माध्यम से संपूर्ण संसार रच देना अपने आप में बेहद रहस्यपूर्ण है, लेकिन रेडियो ने ये सब साकार किया है। यही रेडियो रंगमंच की अद्भुत शक्ति रही है। इसी विरासत को नमन करते हुए आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है विशेष नाटक रेडियो का रंगमंच। ये नाटक न केवल रेडियो नाटकों की समृद्ध परंपरा की एक अटूट कड़ी है बल्कि उन कलाकारों, लेखकों, निर्देशकों और तकनीशियनों को भी श्रद्धांजलि अर्पित हम कर रहे हैं इसके माध्यम से, जिन्होंने ध्वनियों के माध्यम से अनगिनत संसार रचे हैं। तो आइए हम सब अपनी कल्पना के द्वार खोलें, ध्वनियों के इस जादुई संसार में प्रवेश करें और रेडियो रंगमंच की उस अनूठी यात्रा का आनंद लें जिसने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। आज की प्रस्तुति नाटक रेडियो का रंगमंच, सभी कलाकारों को आदर भाव से मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, कृपया मंच पर आएं और करतल ध्वनि से हम स्वागत कर रहे हैं सभी कलाकारों का।
3: हेलो हेलो हेलो हेलो।

0: नमस्कार सर। कहाँ रहते हैं अकेला?
1: आजकल टेंशन में रहता हूँ।
2: चुप। बिल्कुल टेंशन में नहीं, अटेंशन में आ जाइए।
1: ठीक,
2: सब तैयार हैं?
0: जी जी जी।
2: आप भी सब तैयार हैं?
3: जी।
2: तो लीजिए पोजीशन माइक पे, मैं पैनल पर जा रही हूँ। अच्छा, एक रिहर्सल हो जाए या सीधे ही रिकॉर्डिंग?
1: क्या मैडम, अब आप हमसे रिहर्सल करवाएंगी? आपको तो पता है, आप जो भी रोल देती है एक्टिंग एक जैसी करता हूँ।
0: मैं तो देखिए बिना रिहर्सल के माइक पर हाथ नहीं रखता हूँ।
1: रखना भी मत, बहुत खतरनाक करंट लगता है। जोर का झटका धीरे से लगता है।
4: शुरू करें फिर मैम।
3: क्या?
2: ओहो गीता जी, स्टूडियो में रहिए, शॉपिंग करने बाद में जाइएगा।
3: अच्छा, रिकॉर्डिंग से पहले या बाद में जाना है?
2: मैंने कहा ना, रिकॉर्डिंग से पहले नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद जाइए शॉपिंग पर।
3: आप भी वैसे बहुत मजाकिया हैं डायरेक्टर साहब।
2: सचिन
4: जी मैम,
2: आप शुरू हो जाएं।
4: अच्छा, ये क्या मैं, मुझे गाना गाना है क्या?
2: हाँ गाना है। आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या? अरे आप इस नाटक में उभर

0: करते हुए सिंगर हैं और आपकी माताजी का ये सपना है कि वो आपको एक महान सिंगर बनाएं।
1: और मैंने तो सोचा था कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मतलब पीछे से कुछ लगाएंगे गाना
2: वाना, भाई
1: मैं गायक तो हूं नहीं ना।
0: ओहो, तो फिर
2: नर्वसा क्यों रहे हो भाई, काहे मुश्किलिटी है, क्यों क्यों सुरेंद्र?
3: बिल्कुल हम आपके साथ हैं।
0: हाँ, लेकिन कीमती जी आपको सचिन के गाने को रोकना होगा क्योंकि ये बहुत बेसुरा गाएगा यहाँ पर, मतलब नाटक में। वैसे मुझे समझ नहीं आता, आप लोगों ने लगता है स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी अब तक और मुझे ही सब कुछ बताना पड़ रहा है, ये क्या बात हुई?
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं मैम, हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। अरे एक रिहर्सल भी की हमने।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: अरे मालूम है कॉमेडी स्क्रिप्ट है ना, तो सब उसी मोड में है आज।
4: और शायद आपको तंग करने के मूड में भी।
0: ऐसे नहीं, क्यों भाई, क्या पिछले नाटक की पेमेंट नहीं हुई अब तक?
4: अरे नहीं नहीं मैडम जी, वो तो आप सबसे पहले करवाते हो, यही तो तारीफ है आपकी
3: जी।
4: ये बात और है कि कभी कभी हाथ बंधे हो तो कह नहीं सकते।
1: सही बात है,
2: ये तो है भाई। चलो भाई सचिन, गंदे बच्चे अच्छी बात नहीं करते। अरे नहीं, मेरा बताओ, अच्छे बच्चे गंदी बात नहीं करते। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शुरू हो जाओ, चलो
1: शुरू करो मैम।
0: अरे एक मिनट, भूल गए क्या, पहले आवाज का लेवल तो दे दो, चेक कर ले।
1: वो भी जरूरी है। हेलो, मैं सचिन कथूरिया। आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरता हुआ गायक, यानी कि सिंगर।
0: परफेक्ट सचिन। गीता जी, अब आपकी बारी है।
5: हेलो हेलो, मेरा नाम गीता वर्मा है। आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरते हुए सिंगर की माँ।
0: लेकिन गीता जी, आप शायद भूल गई हैं कि आपको माइक के थोड़ा पास आना पड़ता है और थोड़ी हाइट लेनी पड़ती है ना। तो करिए ना
5: जी। हेलो हेलो, मेरा नाम गीता वर्मा है।
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कीमती जी, अब आप।
2: हेलो हेलो, मेरा नाम है कीमती आनंद, रखता हूँ सफाई, नहीं डालता गंद। नाम तो सुना होगा, नाम ही काफी। और मेरा कैरेक्टर है इस नाटक में उभरते हुए गायक के गुरुजी का।
0: परफेक्ट कीमती जी। पर वैसे गा लेंगे ना आप?
2: अरे जी जी बिल्कुल, मैं तो सिंगर ही बनना चाहता था।
0: ओ।
2: पर मोहम्मद रफी साहब ने कहा कि देख, तुझे तो एक्टिंग भी आती है और मुझे सिर्फ गाना आता है, तू क्यों मेरे पेट पे लात मार रहा है? तू एक्टिंग करके कमा खा, मुझे गाकर कमाने दे। तो कुर्बानी दे दी मैंने मैडम, वरना आज मैं बहुत बड़ा कलाकार होता। हाँ।
0: पता नहीं मोहम्मद रफी साहब का शुक्रिया हम कैसे अदा करें। शुक्रिया मोहम्मद रफी साहब आपका। वैसे जहे नसीब हमारे कीमती जी, आपकी कुर्बानी हमारे काम आ गई।
2: थैंक यू।
0: सागर जी।
3: जी जी मैम।
0: आपकी टर्न है, लेवल दे।
3: हाँ जी। हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं सुरेंद्र सागर। आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरते हुए सिंगर के फादर का, यानी पिता का।
0: वैसे मैं नोटिस कर रही थी कि आप लोग भी ना एक दूसरे को सही पकड़ते हैं। एक ने बोला एक बार हेलो, दूसरे ने बोला दो बार हेलो, तीसरे ने बोला, वैसे बोलना तीन बार था, बोल दो बार गए हेलो, और चौथे कैरेक्टर ने चार बार बोला हेलो। भाई वाह भाई वाह, आप लोगों का तो जवाब नहीं है।
1: हेलो हेलो हेलो।
3: कीमती जी का असर आ गया जी हम सब पर।
0: वैसे सागर जी, आप जी? बहुत ऊंचा बोलते हैं, कई बार आपको बताया है, जरा हल्का सा माइक से दूर हो जाइए ना, थोड़ा सा अब बफ ना आए ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें।
3: अब आने दीजिए ना मैम, वैसे भी आजकल काम तो आ नहीं रहा है। तो आए
1: सच नहीं बोल रहा।
0: वैसे ठीक है, कोई पंच मार रहे हैं आप, कुछ भी कर लें, लेकिन कीमती जी नहीं बन पाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। हाँ सचिन, माइक पोजिशन, ओके ग्रेट, लेट अस स्टार्ट।
6: मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, मेरठ में मेरी मौसी है और जमुना पार में नानी है।
3: अरे ये किसका बच्चा रो रहा है भाई?
4: अजी हमारा ही तो है।
3: अरे उसे चुप कराओ प्लीज, प्लीज ये चुप कराओ, वरना मैं इसकी हस्ती दो पल में नहीं एक ही पल में मिटा दूंगा या खत्म कर दूंगा।
4: ओफो, आपको शर्म नहीं आती जी अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहते हुए?

0: ईश्वर करे हमारे बच्चे की हस्ती बढ़े,
1: क्या
0: वो
1: बात।
0: नामवर गायक बने।
2: अरे क्यों बने, गायक ही क्यों बने? अरे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकर बने, पर गायक ही क्यों बने?
0: क्यों ना बने, मैं कहती हूँ क्यों ना बने। हाँ अजी, ये मेरे बचपन का सपना था, मैं गायिका बनना चाहती थी,
1: हाय
0: पर आपने आपने मेरे ख्वाबों को कुचल कर रख दिया।
2: मैंने तुम्हारे ख्वाबों को कुचल कर रख दिया? कब, कैसे, कहां?
0: 20 अप्रैल 2001 को, जब तुम मेरे घर बारात लेकर आए थे।
2: अच्छा, तो तुम उस दुर्घटना की बात कर रही हो जिसका परिणाम ये पल दो पल का सायर है।
3: परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के सुन रहा, परदेसी मेरे जाना नहीं।
2: परदेसी परदेसी आना
3: क्यों
2: नहीं
3: नहीं आएंगे, आएंगे वो।
2: आके तो दिखा तू, मैं इसका काम ना तमाम कर दूं तो मेरा नाम। अरे गीता छोड़, छोड़ो मुझे, अरे तुम छोड़ो मुझे।
0: अरे हमें पकड़ा ही कब है।
3: मम्मी देखो ना, पापा मेरे गाने से कितना बर्न फील करते हैं, जलते हैं वो।
2: बेटा मैं कितना बितना नहीं, पूरा जल चुका हूं अंदर तक। अच्छा बस एक बात बताओ भाई, तुम तो डांसर बनना चाहते थे ना?
3: हाँ
2: और तुम तो वो वहां मुंबई गए थे, वो कौन सा कंपटीशन होता है, वहां गए थे ना?
4: अरे अरे सागर भाई, मैं भी मुंबई गया था।
2: अच्छा
4: गाने के कंपटीशन में हिस्सा लेने।
2: अच्छा।
4: मैंने 2 ट्रॉफी जीती थी।
2: दो?
4: हाँ
2: दो क्यों?
4: पहले इसलिए कि मैंने गाना गाया, दूसरी इसलिए कि आगे से ना गाऊं।
5: कीमती जी क्या करते हैं आप, फिर से नाटक के बीच में अपना नाटक लेकर आ जाते हैं, ऐसा मत करिए ना प्लीज।
4: चलो सॉरी के लिए
2: मैं अपनी लाइन बोलूं,
4: सॉरी के लिए माफी चाहूं।
5: मैं फिर से क्यों देती हूँ, क्यों देती। स्टार्ट।
2: भाई तुम तो कंपटीशन में गए थे ना, डांस वाले में। क्या हुआ, उन्होंने धक्के देके वापस भेज दिया दिल्ली?
3: हाँ तो मुझे मतलब सुरों का ज्ञान नहीं था, कंपटीशन में गया था मैं डांस के, जब सुरों का ज्ञान नहीं होगा तो पैर पैर से डांस कैसे करूंगा मैं, कैसे स्टेप आएंगे मेरे। उन्होंने बोला कि जाओ पहले म्यूजिक को सीख के आओ, तो इसलिए मैंने गाना सीखना शुरू किया अपने डांस करने के लिए, समझे। हाँ और मम्मी ये पापा ना मेरी बार बार बेइज्जती करते हैं, उन्होंने इतनी बेइज्जती मत करा कर, मुझे मेरी बेइज्जती बड़े बर्दाश्त नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं भी बेइज्जती कर दूंगा सबके सामने।
2: ए बेटा ए बेटा ए बेटा बेटा मेरे लाल पीला मत हो मेरे लाल बेटा, बेइज्जती होता है बेइज्जती नहीं। बेइज्जती कहकर तू बेइज्जती की बेइज्जती, अरे नहीं यार क्या, बेइज्जती कहकर तू बेइज्जती की बेइज्जती कर रहा है, एक दिन देखना ये बेइज्जती तुझसे इसका बदला लेके रहेगी।
0: अजी छोड़ो ना, अपनी बेइज्जती की फिक्र करो। अंदर चलो।
2: क्या
0: आपने सुबह से दवाई नहीं ली ना?
2: नहीं
0: मैं देती हूँ।
2: नहीं नहीं
0: चलो अंदर।
2: नहीं नहीं
0: चलो अंदर।
2: नहीं नहीं
0: चलो अंदर।
2: मैं
0: अरे बेटा सचिन,
3: मम्मा
0: तुम इनकी चिंता छोड़ो ना, अपना रियाज शुरू करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम।

0: ईश्वर है ईश्वर, उठा ले मुझे।
1: नहीं ईश्वर, मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले।
0: ठीक है प्रभु, लेडीज फर्स्ट, उठा ले।
2: क्या बात कर रहे हो यार? माँ वैसे एक बात बोलूं, आप कितना अच्छा गाती हैं, बस थोड़ा बहुत राग ऊपर नीचे हो जाता है, एक दो घंटे मेरे साथ
3: बैठना। एक मिनट कट कट बोलने दो ना इनको अपना डायलॉग, आपके साथ तो वैसे चैना नहीं बेचैना ही हो सकता
1: है। नहीं
4: पहले आपने कहना है ना,
0: भगवान इसको उठा ले, उसके
4: बाद आपने कहना है।
3: शांति शांति शांति शांति शांति स्टार्ट।
0: ईश्वर उठा ले मुझे, उठा ले मुझे,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे

0: ठीक है, प्रभु लेडीज फर्स्ट, पहले इसको उठा ले। अरे भाई
1: चैना नहीं रहना होता है, रहना रहना रहना।
2: अरे आपके साथ रहकर किसे चैन मिल सकता है, इंसान तो बेचैन ही रहेगा, रहना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
3: यस।
4: और मम्मा आप कितना अच्छा गाती हो, आपको पता है? बस थोड़ा बहुत राग ऊपर नीचे, एक दो घंटे मेरे पास बैठिएगा, रियाज करवाऊंगा और सब साफ, एकदम से गला साफ, मतलब आवाज साफ, बहुत बढ़िया। अच्छा मम्मी, वो मेरे गुरुजी आने वाले हैं, तो कुछ बढ़िया सा खाने को मंगवा लीजिए।
2: जैसे क्या?
0: जहर।
2: अभी नहीं
4: मम्मी। जहर जहर जहर पिज्जा का नाम नहीं होता है? अरे मैं बोल रहा हूँ, दो चार पिज्जा, दो चार सैंडविचेस एंड बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड थोड़ी बहुत आइसक्रीम मंगा लेना, है ना। एक्चुअली क्या है, उससे ना मेरा गला एकदम से ठीक हो जाता है रियाज, जब मैं करता हूँ ना गला बैठता है, आइसक्रीम खाता हूँ गला खड़ा हो जाता, तो एकदम से ठोस आवाज हो जाती है।
0: ये मेरी औलाद है क्या?
4: हाँ?
0: ये ऐसी क्यों है भगवान, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है।
2: अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने बच्चे के बारे में कोई ऐसे अनाप शनाप बोलता है क्या? हा? आपको नहीं पता जी, जिस गुरुजी ने मुझे सिखाया था ना वही अपने सचिन को सिखा रहे हैं गाना
4: जी।
2: मुझे पक्का विश्वास है वो एक ना एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा,
5: जैसे तुमने किया है।
2: मैं तो कर ही देती, पर वो 20 अप्रैल 2000 डायरेक्टर साहिबा, रिपीट।
3: क्या करती हैं आप गीता जी, अपनी अटेंशन में रहिए ना। देखिए रिपीट नहीं होता है, रीटेक हो जाता है। हाँ प्लीज प्लीज।
2: स्टार्ट करूँ?
3: हाँ करिए स्टार्ट।
2: मैं तो कर ही देती, पर 20 अप्रैल 2001 ने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
6: बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई क्या तेरे मन भाई, राधे तूने बांसुरी बजाई।
0: अरे सर सर सर सर सर सर, राधिके तूने बंसुरी चुराई है, बजाई नहीं है।
3: ओफो, मैं बीच में कहां से आ गई नाटक में, आप नाटक करिए ना। देखिए प्लीज प्लीज, यही है कि आपने इन्हें करेक्ट करना था, टोकना नहीं था, लेकिन मुझे रेफर नहीं करना था, स्क्रिप्ट पर जरा फोकस करिए ना सुरेंद्र जी।
0: सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सर, एक बार और लेते हैं सर,
3: एक मिनट एक मिनट
0: सर, एक बार
3: स्टार्ट।
6: राधे तूने बांसुरी बजाई बजाई बजाई।
0: सर
6: ठीक है,
0: राधिके तूने बांसुरी चुराई है, बजाई नहीं।
6: जब तक मेरी फीस नहीं मिलती ना, बांसुरी राधे ही बजाएगी। है वैसे हु आर यू, आप कौन महाशय हैं?
2: चरण वंदना गुरु जी, चरण वंदना। ये मेरे पति देव है गुरु जी।
6: पति देव? नहीं ये देव नहीं है, ये प्रतिभा के रास्ते में आए हुए अदेव हैं, असुर हैं। और असुर वो नहीं होते जिन्हें हम राक्षस समझते हैं, असुर वो होते हैं जिनके पास ना सुर का ज्ञान होता है ना सुर की समझ, और वो अपनी असुरी आवाज से दुनिया का सत्यानाश करते फिरते हैं, जैसे तुम्हारे ये पतिदेव। इन्हें जितनी जल्दी से हो यहां से हटा दो, वरना जैसे तुम कुछ नहीं बन पाई वैसे तुम्हारा बेटा भी कुछ नहीं बन पाएगा।
0: क्या ऐसा हो जाए?
2: नहीं नहीं।
3: ओफो कट कट, गीता जी पता नहीं आप कहाँ गुम हो जाती हैं। नहीं नहीं नहीं करके थोड़ी बोलना है, नहीं कीजिए प्लीज, जोर से कहिए।
2: ओके नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
4: सही पकड़े हैं गुरुजी, आप कहें तो सुपारी दे दूं क्या इनकी?
6: पहले मेरी फीस तो दे दे। दो दिन हो गए मेरी फीस नहीं आई अभी तक,
0: मतलब ये रोज के पैसे लेते हैं क्या? हाँ।
2: जी मेरे गुरुजी ऐसे ही हैं, ये रोज के ही पैसे लेते हैं।
6: करेक्ट।
0: कितने कितने पैसे लेते हैं?
2: अरे ज्यादा थोड़ी लेते हैं, बस एक घंटे के 5,000।
0: क्या? एक घंटे के 5,000?
2: अरे चिंता क्यों कर रहे हो, डिस्काउंट देते हैं अच्छा खासा। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इनसे गाना सीखा है, नहीं तो ये किसी

0: क्या कम करूं बताओ। अरे वाह, मैं तो खड़े खड़े गाना भी बना लिया मैंने तो। हूं ना मैं जीनियस, पता नहीं लोग मेरी कला को कब
1: पहचानेंगे। आप तो पूरे 5,000 के लायक हैं, आप डिस्काउंट मत दीजिए कि ये।
2: जिस दिन आप लोगों के हाथ आ गए ना गुरुजी, उस दिन आप कई दिनों तक अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे।
0: क्या क्या क्या कहा तुमने?
3: अरे गुरुजी, कुछ नहीं कुछ नहीं, इनका मतलब है कि आपने इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों कर दिया पूरे 1 रुपए का।
0: क्योंकि मैं गरीबों पर दया कर देता हूँ। वैसे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत आगे जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम करेगा रोशन, ये तुम्हारा राज दुलारा।
1: बड़ा बोलने बोलता मैं भाई, बहुत ऊपर वाले को बहुत कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा मैंने ना एक ना गाना बनाया है, लिखा भी है, कंपोज भी किया है। सुनाऊं?
0: सुना,
1: वैसे सुनाई देता हूं, चलो।
0: स्टार्ट।
1: शायद मेरी शादी का ख्याल।
4: स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या आप कर रहे हो सचिन? कैरेक्टर से बाहर निकल आए।
1: क्यों?
4: शायद नहीं कहना आपने, शायद कहना है,
0: शायद, हाँ।
4: और ख्याल नहीं ख्याल कहना है, तलफ्फुज भी गलत होना चाहिए और सुर भी गलत होना चाहिए। प्लीज प्लीज,
1: अंदर का सिंगर जाग गया था मेरा।
4: हाँ नहीं, वो मत जगाओ, एक मिनट
1: सो जा बेटा।
4: स्टार्ट।
1: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है,
0: ना,
1: तुम्हें
0: ना,
1: चाय पे बुलाया है।
0: कट कट कट, नहीं बेटा नहीं, इसे ऐसे गाना है, इसका राग समझो, सुर समझो, फिर गाओ, सुरीले बनो, बेसुरे नहीं, मूड समझो, अब गाओ। जसो मैं गाता हूँ। शा शा शा।

0: क्या बात
1: बस बस बस बस बस भाई
2: थैंक यू।
1: ये गाना सावन कुमार जी ने 1983 में लिख दिया था।
0: ओ माय गॉड रियली। देखा गुरुजी मैं कितना टैलेंटेड हूँ कि मेरा पैदा होने से पहले ही मेरे गीत चोरी होने शुरू हो गए थे। नहीं बताओ ना मैं इतना टैलेंटेड।
3: अरे मुझ पर गया है ना इसलिए।
1: बेटा मेरे बेटा तू टैलेंटेड नहीं है, तू मानसिक रूप से बीमार है।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: अरे तू सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, तेरा इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं आज ही किसी साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ।
2: अरे ना ना ना, आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले लो अंकल।
1: अंकल
2: आप अपने बेटे से जेलस हो? जेलस?
1: सुन रही हो, ये मुझे अंकल कह रहे हैं।
2: तो क्या कहूँ, क्या कहूँ भाई साहब, सचिन से ज्यादा मैं बड़ा थोड़ी हूँ।
0: हाँ।
2: हिसाब करोगे तो हो सकता है कि मैं सचिन से छोटा ही निकलूं।
3: हाँ। हाँ। सागर मुझे तो हंसी सुनाई नहीं दी तुम्हारी, जोर से हंसो ना प्लीज।
1: अच्छा अच्छा हाँ। ठीक,
3: एक मिनट फिर से स्टार्ट।
2: हिसाब करोगे तो मैं हो सकता है कि छोटा ही निकलूं सचिन से।
1: वाह जी वाह गुरु जी वाह। अच्छा हैं तो आप सचिन से भी छोटे, पर सचिन की माँ गीता को भी आप ही ने संगीत सिखाया है। वाह गुरु जी वाह।
2: इसमें हैरानी की क्या बात है अंकल, मैंने तो सिखाया इसे भी और कईयों को सिखाया है कि क्या क्या नाम लूं मैं तुम्हारे सामने। अरे ऐसे ऐसे नाम लूंगा कि तुम्हारी छिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी।
1: यमराज को भी आप ही ने सिखाया है।
2: सचिन देखो तुम घबराना नहीं, जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं उनके उनको रोकने के लिए ऐसे अंकल पैदा होते हैं। बेटा तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हारे हौसलों को तोड़ा जाएगा।
0: यस।
2: पर तुम रुकना नहीं।
0: नो।
2: गाते रहना
0: जी।
2: गाते रहने
0: जी।
2: गा

0: गा मेरे मन
1: ला मेरी फीस ला। दूसरा घंटा चालू हो गया, 4999 ट्रांसफर करा।
2: गुरुजी बस अभी करवाती हूँ। अजी सुनते हो, ट्रांसफर करो ना जल्दी से फोन पे।
3: अरे वो
2: जल्दी करो।
3: अच्छा लो, लो, हो गए
2: हो गए सर, हो गए हो गए।
1: ठीक है, हाँ आ गए आ गए। अच्छा तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना,
0: हाय हाय हाय हाय मार डाला,
1: दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम याद रखना,
0: बस बस,
1: चिट्ठी तारों में मेरा तुम सलाम रखना, मेरा तुम सलाम रखना, मेरा तुम सलाम रखना।
3: अरे मेरे 5000 का ख्याल रखना, मेरे 5000, 5000 मतलब 1.5 लाख रुपए महीना लेकर ये इंसान मेरे बेटे को गायक नहीं दुनिया के संगीत को तबाह करने वाला जहरीला फनकार बना रहा है ये आदमी, और तुम लोग बनने दे रहे हो। अरे रोको इसे, डॉक्टर को दिखाओ।
1: सचिन अपने पापा को डॉक्टर को दिखाओ, वरना ये उभरते हुए टैलेंट्स को आगे नहीं आने देंगे।
0: सर मैं सोच रहा हूँ
1: क्या
0: गुरुजी कि इनको अपना गाना सुना दूं, है ना, हो सकता है ये ठीक हो जाए। सोचता हूँ सुना ही देता हूँ। सोचता हूँ कि वो इतने मासूम थे, सोचता हूँ वो कि इतने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते, लापता हो गए।
3: अरे बेटा ओ बेटा बेटा बेटा बेटा बेटा मेरे, लापता नहीं है ये, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
1: आपको लापता करना है अंकिल, इसीलिए जा रहा है ये गाना। शायद आपको पता नहीं है संगीत में कितनी पावर है, शक्ति है, दीप जल जाते हैं, बारिश आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, आप भी लापता हो सकते हैं। चलो सचिन गुरु हो जाओ शुरू, एक साथ गाते हैं, ठीक है।
0: अरे गुरु जी चरण स्पर्श, आज पहली बार आपके साथ गाने का मौका मिल रहा है।
1: ठीक है स्टार्ट, ओके ऑल द बेस्ट। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते।
0: सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते। क्या बात है गुरुजी,
1: वाह थैंक यू। मैंने पत्थर से जिनको बनाया था सनम, वो फना हो गए देखते देखते।
0: वाह वाह गुरुजी, पत्थर क्या क्या मतलब आपने चुना है पत्थर?
1: मैं बताता हूँ बेटा, तीसरा घंटा।
0: पत्थर से जिनको बनाया सनम, कहता है वो फना हो गए देखते देखते, दोनों देखते देखते फना।
1: बेटा मेरी एक सुन ले, तीसरा घंटा होने वाला है, 4999 ट्रांसफर करा जल्दी से, अपने पापा से बोल इस बारे।
3: मैं लापता हो गया देखते देखते।
2: अजी सुनो, पैसे तो ट्रांसफर कर दो फिर लापता हो जाना। हाँ ट्रांसफर कर दो जी। अरे सुन रहे हो अजी, सुनते हो?
3: हेलो हो गए
2: हो गए हो गए गुरु जी, हो गए हो गए।
4: वाह भाई वाह, मजा आ गया। वैसे बहुत अच्छी रिहर्सल थी, अब फाइनल टेक लेते हैं। सोचते

0: आज के नाटक का शीर्षक था रेडियो का रंगमंच। यहां गुरुजी की भूमिका में थे
1: कीमती आनंद, रखता है सफाई, नहीं डालता गंद।
0: उभरते हुए कलाकार की भूमिका में थे
2: सच इन झूठ आउट, मतलब सचिन कथुरिया।
0: सचिन की माँ की भूमिका निभा रही थी
3: गीता वर्मा,
0: जो यहाँ से सीधे शॉपिंग के लिए जाएंगी।
3: सेल खत्म न हो जाए देखते देखते।
0: सचिन के पिता की भूमिका निभाई
4: सुरेंद्र सागर, 5,000 खो गए देखते।
0: और मैंने भूमिका निभाई नाटक की डायरेक्टर की, मैं हूँ निरुपमा वर्मा। झेलती रह गई देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया।
1: और अब आप भी घर जाइए देखते देखते देखते देखते।
5: धन्यवाद।
6: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत नाटक रेडियो का रंगमंच के संपादित अंश। लेखिका थी सुनीता अग्रवाल, निर्देशन काजल सूरी, भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, सुरेंद्र सागर, निरुपमा वर्मा, सचिन कथुरिया और गीता वर्मा।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना रेडियो नाटक रेडियो का रंगमंच। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,

0: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पांस किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया, तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारे रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।

0: या यार ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क़्यादत वाली तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकज़ी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तईं मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज़े डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर उन सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेल कूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मवाक़े के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क़्यादत वाली तरक्की को मज़ीद बढ़ाने के लिए काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म तआवुन दे रही है जो ख्वातीन को माली एतबार से आज़ाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिरात जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तईं मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ़ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, CCTV से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निज़ामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर दाखला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत की देखभाल से मुतालिक खिदमात, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख़्वाह इंतजाम किए जाएँ। फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के डायरेक्टर जनरलों ने मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को ख़त्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूरोप के 2 मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के पहले मरहले के तहत 14 जून को फ्रांस के शहर नीस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल फरवरी में फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी आलमी कलीदी शराकत दारी का दर्जा अता करने के बाद सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ जनाब मोदी की ये पहली 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। जनाब मोदी नीस से स्लोवाकिया रवाना होंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस के इवान वापस लौटेंगे जहां भारत आलमी खित्ते जनूब की अहम आवाज़ के तौर पर शिरकत करेगा। मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकज़ में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोलकाता में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मीडिया को आज ये इत्तला दी। जनाब अधिकारी ने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए अपनी ज़मीनें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मुनसिफाना कीमत देकर मगरबी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ

0: सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाज़ों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाज़ों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीकी राजनयिक को बताई गई। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकानो यामागुची से होगा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अकानो यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराया। वहीं पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी आज हार करके बाहर हो गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोसेनिया हर्जोगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारत इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में करेगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, The growing participation of women in emerging fields such as drone technology, is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the DRDO's Defence Research and Development Laboratory of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. According to the Ministry of Defence, Mr. Singh, while addressing the gathering, commended the Missile Systems and Strategic Systems Cluster of DRDO for its pivotal contributions to India's technological excellence, strategic autonomy and national security. He asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. The defence minister said systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving a fair price, West Bengal government is taking the lands from the common people and handing it over to BSF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: External Affairs Ministry today summoned Charge d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of three Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su-Yu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम माटी के रंग। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता के भोजपुरी गीत। आपको हारमोनियम पर संगत दी श्री जाकिर धोलपुरी ने, ढोलक पर साथ निभाया श्री मदन कुमार ने और बांसुरी पर श्री प्रमोद प्रसन्नानी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आज आपने श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता के भोजपुरी गीत सुने। आपको हारमोनियम पर संकेत दिए श्री जाकिर धोलपुरी ने, ढोलक पर साथ निभाया श्री मदन कुमार ने और बांसुरी पर साथ दिया श्री प्रमोद प्रसन्ना ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:30 में हैं। लीजिए अब सुनिए राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में श्री गौरव मजूमदार का सितार पर बजाया गया राग तिलक कमोद।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री गौरव मजूमदार का राग पर बजाया गया राग तिलक कमोद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।

0: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra.

0: तो वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो शायद हमें कुछ दर्द भी दे देती हैं। यानी जो उजाले हैं, यानी जो रोशनी है, वो हमें सबक भी सिखाने का काम करती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सविता तुमने कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यानी कि जो सफ़र है ज़िंदगी का हो या फिर भले ही कोई और यात्रा हो, संघर्षों से गुजर कर अगर हमने पड़ाव तय नहीं किए तो फिर कैसी यात्रा।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि जब भी हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो वहाँ पर अड़चनों का आना, मुश्किलों का आना तो लाजमी सी बात है, लेकिन इन मुश्किलों से डर कर उस सफ़र को बीच में ही छोड़ देना, ये इंसान की शख्सियत को सूट नहीं करता। फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि आपके लिए हम जितने भी गीत लेकर आए हैं वो सभी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं वाबस्ता हैं। पहला गीत भी वाकई कुछ ऐसा ही है। चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ से।

0: जहाँ किसी की भी धुन में जाइए लेकिन आप चलते चलिए, जिंदगी का यही फलसफा है। इसी फलसफे के साथ जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो अपनी मंजिल तक तो हम पहुँच ही जाते हैं, लेकिन जो मंजिल तक पहुँचने का जो सफर होता है वो काफी रोमांचक हो जाता है।
1: बिल्कुल सविता, और कभी कभी कहते हैं ना कि जो मज़ा सफ़र का था, रास्ते का था, वो मज़ा आपकी मंजिल पर पहुंच कर नहीं आया। और फिलहाल गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं सविता, तो
0: जी
1: हम भी अपने लिसनर से पूछना चाहेंगे कि किस सफ़र पर जाने की वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर ज़िंदगी का कोई ऐसा अनूठा सफ़र उन्होंने तय किया जो उन्हें बेहतरीन यादें दे गया, या फिर कोई ऐसा सफ़र जो उस समय तो सफरिंग ही बन गया हो सफ़र,
0: जी
1: लेकिन बाद में उस सफ़र ने उन्हें बहुत गहरा सबक दिया, है ना?
0: जी हाँ, अगर आपके पास है ऐसी कोई कहानी तो वंदना और सविता ले रहे हैं आपसे इस सफर का जायजा, कि आप बताइए कि आपको जिंदगी का कौन सा सफर बहुत अच्छा लगा, जो मे बी सफरिंग हो सकता है, जिसे आप ये कह सके बड़ा दुखदायी था लेकिन वो सफर कट गया, जैसे तैसे जिंदगी में हम आगे बढ़ गए लेकिन मुश्किल हालात तो जरूर थे, या फिर कोई ऐसा सफर वंदना जिसमें आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो, जिसे आपने बहुत उत्सुकता से जिया हो, जो जिंदगी का एक नया पड़ाव बन गया।
1: बिल्कुल, और जो लगा हो कि ये सफर शायद कभी खत्म ही ना हो, यहीं रुक जाए।
0: चलिए जिंदगी के इस सफर को आप और हम मिलकर साझा करते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसा ही है कि अगर इस सफ़र को शुरू किया जाए तो ये अपने मुकाम पर ज़रूर आ ही जाते हैं। बस इस सफ़र का मज़ा लीजिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने में जो सफ़र है वो बड़ा ही बेहतरीन रहता है, और हर सफ़र ज़िंदगी का हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो वंदना, या फिर इस जीवन यात्रा के अलावा जो हम अपने दैनिक जीवन में कुछ यात्राएं करते हैं
1: बिल्कुल
0: रोज़मर्रा
1: बिल्कुल
0: की ज़िंदगी में, चाहे हम अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या कहीं घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, तो हर सफ़र हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर देता है।
1: और ये सफ़र सविता, अगर हम बिल्कुल कहते हैं ना दिल से एंजॉय करते हुए उसे तय करें, बोझिल ना माने, तो एक अलग ही बात है। सपोज़ कहीं आप लोग घूमने गए हैं, गाड़ी कर ली और आप सीधा अपने गंतव्य तक पहुंच गए अपनी इस जगह से, तो वो आनंद नहीं आएगा जब आप वहाँ के बीच रहते हुए लोकल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ के 4 लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो आपके अनुभव के दायरे को मुझे लगता है काफ़ी हद तक बढ़ा देता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पर भी जाएं आप, वहाँ पर रहने वाले लोगों से या उस यात्रा के बीच में मिलने वाली किसी भी चीज़ से, चाहे वो फूल पत्ती हो, वनस्पति हो, नदी नाले झरने हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, या रास्ते भर में चलती हुई वो धूल ही क्यों ना हो, लेकिन
1: बिल्कुल
0: अगर आप उसके साथ एक तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, यानी उसके साथ अगर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो धूल भी आपको उस जगह की कहानी ज़रूर सुनाएगी।
1: और यही लाजमी जीवन पर भी होता है
0: जी
1: ना। जीवन के लिए भी कहा जाता है कि आप जितनी बारीकी से अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं जीवन यात्रा में, बड़े बूढ़ों के जो अनुभव होते हैं
0: जी
1: उनको साझा करते हैं, तो ज़िंदगी सरल भी होती है और बहुत सारी विकट समस्याओं का हल आप देखेंगे कि इस जीवन यात्रा में कुछ लोग चुटकी बजा कर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है, और जब हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उस अनुभव से होकर गुजरते हैं, तो शायद पहले जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों को दोहराने से हम बच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती करने से डरिए नहीं, जब गलती

होगी तो एक अनुभव भी मिलेगा। जब तक हम कुछ गलती नहीं करेंगे तब तक हम कोई एक्सपीरियंस यानी कोई अनुभव भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन गलती ऐसी होनी चाहिए कि उसे सुधारा जा सके। तो कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी के सफ़र को और साथ ही साथ अपने जीवन यात्रा को खूब आप एंजॉय करें, और कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो बस सोचिए मत, निकल जाइए।

0: जी हाँ, बिल्कुल संभल जाइए, ज़िंदगी का सफ़र है ये, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन वंदना, ये ज़िंदगी का सफ़र इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि कभी कभार हम इसे मुश्किल बना देते हैं।
1: कभी कभी ज़िंदगी बहुत सरल होती है लेकिन पेचीदगी उसमें हम ले आते हैं। और सफ़र की बात हो रही है सभ्यता, तो ऐसे में रेल यात्रा, रेल का सफ़र हम ना लेकर आए तो हमारी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं अधूरी सी रह जाएगी, क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा। और जब रेल यात्रा करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे न जाने कितने कुछ ज़िंदगी के सफ़र हमें देखने को मिल जाते हैं, कितने कुछ ज़िंदगी के रूप हम वहाँ पर देख लेते हैं। कुछ किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो कोई किसी को विदाई दे रहा होता है, किसी के चेहरे पर खुशी होती है क्योंकि वो किसी को पहली बार देख रहा है या बहुत लंबे समय के बाद देख रहा है, तो कुछ की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि शायद ये देखने का जो सिलसिला है अब कुछ समय के लिए थम जाएगा।
1: यानी कि वो किसी को विदाई देने आया है। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे कि जो यात्रा है या जो सफ़र है, इसका जो है आप हर पल मज़ा लीजिए, क्योंकि हम सभी जो इस जीवन में आए हैं तो याद रखिए कि घटते क्रम की तरफ चल रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और जब प्लेटफॉर्म की बात आती है, जब रेल की बात आती है, तो कुछ लोग रेल पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं और कुछ लोग समय से पहले आकर रेल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे हो रही होती हैं, लेकिन हर किसी का सफ़र बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि कुछ अनुभव मेरे रहेंगे, कुछ अनुभव तुम्हारे रहेंगे, और ये ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता चलेगा।

0: जी हाँ, ज़िंदगी का सफ़र जो है बड़ा ही अनूठा सफ़र है। इस सफ़र में जो मुकाम एक बार चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं, और ज़िंदगी का सफ़र ये हमें सिखाता है कि किस तरह से हर मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र होता है वो हमें किस तरह से एक सीख देता है। कुछ ऐसे ही सीख हमारे कई श्रोताओं ने भी हमारे साथ साझा की है। वंदना,
1: बिल्कुल ठीक। और सतीश अनेजा साहब ने हमें बहुत ही लाइफ का एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक बार जब वो वैष्णो देवी यात्रा पर गए तो उनके साथ एक बड़ा हादसा होते होते रह गया और वो बच गए। इसके लिए उन्होंने शुक्र किया ईश्वर को। और वाकई जब ऐसे मौक़ों से हम गुजरते हैं ना सविता, तब पता चलता है कि लाइफ कितनी प्रीशियस है, इसे रोज़ भरपूर जीना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और सतीश अनेजा जी भी शायद यही करते हैं, इसीलिए वो हमारे कार्यक्रम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस यानी कि अपने जो अनुभव है वो भी हमारे साथ साझा करते हैं। एक ऐसा ही अनुभव हमारे साथ उन्होंने साझा किया है और बार बार वो कह रहे हैं कि परमात्मा का शुक्र रहा कि मैं बच गया और पूरा परिवार खुशहाली से वापस आ गया। सतीश अनेजा जी के साथ अब कार्यक्रम में आगे हमारे और भी कई सारे जो लिसनर्स हैं वो हमें मैसेज कर रहे हैं, उनके मैसेज भी वंदना कार्यक्रम में शामिल कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और रियासत साहब ने भी हमें मैसेज किया है और वो कह रहे हैं कि एक बहुत लंबे अरसे से वो हमारा जो रेडियो है सुनते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, और प्रोग्राम के जो भी गीत हैं या पेशकश है दोनों ही उन्हें बहुत बहुत पसंद आ रही है। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: ऐसे ही एक और हमारी साथी हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं, जो राजकोट गुजरात से हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, ये हैं रश्मि और झरना। ये दोनों ही हमारे दोनों की तरह
1: बिल्कुल
0: जोड़ी बनाकर इस कार्यक्रम को सुनती हैं और आज इस जोड़ी की वो वाहवाही भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप दोनों आए और जिस तरह से आपने ज़िंदगी के सफ़र को लिया है और ज़िंदगी और रेल के सफ़र को जिस तरह से आपने जोड़ कर ज़िंदगी के अनुभवों के साथ जोड़ा है, वो वाकई बड़ा ही खूबसूरत अनुभव है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे तमाम हमारे साथी दोस्त हैं हमारे साथ जो जुड़ते हैं, और बड़ी खुशी की बात ये लग रही है कि सविता प्रोग्राम सबको पसंद आ रहा है, गीत प्रस्तुति दोनों ही अच्छी लग रही है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है।
0: जी, हमारे पास एक संदेश आया है, ये हमें मिला है श्री गंगानगर राजस्थान से, लिखकर भेजा है मैं लालगिरी गोस्वामी और उनके पूरे परिवार ने, और कार्यक्रम उनको पसंद आ रहा है। अब कार्यक्रम में जल्दी जल्दी आप सभी के नाम भी ले लेते हैं ताकि कोशिश ये रहती है हमारी कि आप में से कोई भी छूटे ना। किशन सपकाल जी हैं, पूरे परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमें शास्त्री नगर बीड शहर से संदेशा भेजते हैं। तो वड़िंग खेड़ा पंजाब से हमारे साथ मिंटू टोमस जुड़े हैं और पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वहीं भूषण खेरा है जो कि हमें पंजाब से मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे कि कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है। रियासत हुसैन की तो हमने बात कर ही ली है कि वंदना के हमारे कार्यक्रम को बहुत पुराने समय से सुन रहे हैं। तो संजय साहू पोटियाला कला दुर्ग से हमें संदेशा भेजते हैं और ये हमेशा कहते हैं कि कार्यक्रम इन्हें बड़ा पसंद आता है क्योंकि गीत बड़े चुन चुन कर आप लेकर आते हैं, इनके साथ पूरा परिवार है। तो अब्दुल गफ़ार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये संदेशा हमें मिला है मुकेश बत्ता का जो कि कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमें संदेशा भेजते हैं, इनके साथ भी इनका परिवार हमेशा कार्यक्रम को सुनता है और सराहता है। तो वहीं कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कुमार जी, सतीश अनेजा, भारती गगनपुरे हमारे साथ जुड़े हैं जो कि मध्य प्रदेश खंडवा से हमारे साथ जुड़े हैं, तो राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हैं हमारे साथ सुशांत प्रिया झा, प्रकाश वर्मा, हाजी मजहर अली, प्रकाश वर्मा, दिलावर खान और साथ हैं हमारे साथ हसीना। ये संदेशा हमें कहाँ से मिला ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा राजपाल शर्मा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा ही सुंदर आप ये जो विषय है वो लेकर आए हैं, ज़िंदगी और सफ़र को आपने किस तरह से जोड़ दिया है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बसंत कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं नवी हुसैन जी, साथ में हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन जी जो कह रहे हैं कि सविता जी वंदना जी क्या बात है, जीवन क्या है, अक्सर कई बार मन में ऐसे सवाल भी उभर जाते हैं, कोई इसे अनसुलझी सी कहानी कहता है तो कोई कहता है कि ज़िंदगी का सफ़र हमें बस इतना सिखाता है कि जो भी सवाल हमारी ज़िंदगी में आए उन्हें हम हर दिन कुछ नए नए चीज़ों के साथ जोड़ कर देखते रहें। साथ ही सुख और दुख का दौर समय के अनुरूप जीवन में चलता रहता है, इसलिए कहते हैं जीवन में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी है। ये हमें पहाड़गंज मुल्तानी धांडा से संदेशा मिला है। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और साथ में है मधु नायक। आपका संदेशा बड़ा ही पसंद आया वंदना। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं, और अगर हम उलझनों को हम अपने रास्ते की एक अड़चन मारकर चलेंगे तो शायद ये सफ़र मुश्किल हो जाएगा। उषा मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में हैं कुसुम बाई नागपुरे जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं महाराष्ट्र से। और इसी के साथ आप और हम अब कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है।

0: वाकई ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसा ही है कि जहाँ तक घटा है वहाँ तक चलते चलिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है उजालों की सौगात है, इसे जितना जियेंगे उजाले उतने ही खूबसूरत लगेंगे।
1: और बिल्कुल सही है सविता। और यात्रा की अगर हम बात करें, चाहे तुमने रेल यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया, या फिर हम जीवन यात्रा की बात करें, या फिर वो यात्राएं जहां हम कहीं घूमने जाते हैं, तो ध्यान से देखो, सबसे अच्छी बात या फिर कहें सबसे अच्छा सबक ये है कि हर यात्रा आपको जीवन का कुछ ना कुछ बहुत अहम सा सबक दे जाती है। जैसे मान लो पहाड़ की ही बात करें, तो पहाड़ कहते हैं सविता, ऊँचा उठो लेकिन जड़ों से जुड़े रहो, है ना।
0: जी
1: तो ठीक वही नदियाँ कहती हैं, चलते रहो, क्योंकि ठहरा हुआ जो पानी होता है ना, वो भी अपनी पहचान खो देता है।
0: जी हाँ, इसलिए ज़िंदगी जो है वो चलने का नाम है, इसे कहीं पर भी रुकने ना दे। ज़िंदगी में कई मुकाम, कई पड़ाव ऐसे आएंगे जहाँ पर लगेगा शायद इसके आगे मंजिल के लिए कोई रास्ता ना हो, लेकिन इस घुमावदार रास्ते को जब आप पार कर जाएंगे तो शायद अगले मोड़ पर मंजिल आपका इंतज़ार कर रही होगी। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है वंदना, और जितना हम ज़िंदगी को खूबसूरती से जिएंगे उतनी ही ये ज़िंदगी और भी खूबसूरत होती चली जाती है। जब हम यात्राएं करते हैं तो हम जैसे कि सबक लेते हैं, जैसे आपने कहा कि पहाड़ हैं तो हम जड़ों से जुड़े रहें, अगर नदी है तो हमें नदी की तरह बहते रहना चाहिए, क्योंकि रुके हुए पानी में तो गंध हो जाती है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है तो आपको चलना ही होगा, तभी ज़िंदगी में आप न सिर्फ मंजिल तक पहुंचेंगे बल्कि सफ़र का आनंद भी ले पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सभ्यता तुमने। और कहते हैं ना कि जब तक जिंदगी है चलते चलो, और कई बार कई लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी जो है वो संघर्ष का दूसरा नाम है। लेकिन जो भी है, कहीं भी आप ये जगह मत छोड़िए कि वो जगह आपकी डिफीट या फिर आपकी हार पूरी करे। हर जगह जीत और अगर संघर्ष और विश्वास होगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी हाँ, ज़िंदगी एक ऐसा पन्ना है जिस पर जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी आप कोई भी खाली जगह मत छोड़िए। जहाँ पर भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर आएंगे। थक कर हारने वालों को तो शायद अपनी मंजिल कभी नहीं मिलती है, लेकिन जो थकने के बावजूद भी चलने के लिए संघर्ष करता है वो ज़रूर कामयाब होता है। तो ज़िंदगी हमें यही सिखाती है वंदना, और हम भी यही सीखते हैं और यही सिखाने की कोशिश करते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ यही बांटने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में जब कभी ऊंचे नीचे रास्ते आए तो घबराएं नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे शख्स से आप बात कीजिए जो कि आपका हौसला बढ़ा सके।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आइए, ठीक वैसे जैसे हम अपने घरों में सुवीनियर लेकर आते हैं, या फिर कहें सविता, जो बहुत हार्डकोर ट्रैवलर होते हैं उनके फ्रिज पे ही अगर आप देख लो या कहीं और देख लो, तो वो छोटी छोटी सी मैग्नेट्स जो होती हैं वो बता देती हैं कि उन्होंने कितनी दुनिया कितनी खूबसूरती से देखी है।
0: और ये खूबसूरती जो है वो न सिर्फ उन्होंने उस मैग्नेट में शामिल की है, बल्कि वो एक वहाँ का एक ऐसा ऐसी चीज़ लेके हैं, ऐसे स्वीनियर लेकर आए हैं जिसे वो जब भी देखेंगे तो उस यात्रा के पन्ने एक बार फिर से उनके सामने पलट जाएंगे। यानी वो यादें जो हैं, हम अपने किसी भी सफ़र के लिए अगर करते हैं तो वो यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती हैं। जब भी आप वहाँ से जुड़ी किसी भी बात या किसी भी शख्स को देखेंगे तो उस सफ़र को आप ज़रूर याद करेंगे। तो ज़िंदगी का सफ़र है भाई, इसे चलने दीजिए, कहीं मत रुकिए। रुक जाएंगे तो शायद एक छोटी ही सही लेकिन हार महसूस होगी। चलेंगे तो ज़रूर संघर्ष लगेगा लेकिन जीत निश्चित होगी। तो चलिए अब इसी बात के साथ कि आपसे हमारी जब मुलाकात होगी तो कुछ नई बात होगी, कुछ नए जज्बात होंगे, कुछ आपका और हमारा नया साथ होगा। फिलहाल इस साथ को, इस शाम को अब यहीं संपन्न करने की मुझे और वंदना को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: लेकिन कहीं मत जाइए, आपको एक खूबसूरत से गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं जो कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखा रहा है कि किस तरह से ज़िंदगी का अगर आप साथ देंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हुए। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी है। रात्रि के 12 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

0: श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government

0: श्रद्धा से लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। आइए उनकी स्मृतियाँ, गीतों, कविताओं और जीवन के अनछुए पहलू के साथ आरंभ करते हैं आज का सुरमय सफ़र, जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत इनका परिचय है। और सबसे पहले एक गीत से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम शुरू का सफ़रनामा की एक सुंदर बेहतरीन रचना, और उसके बाद और भी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम सहर्ष।
1: मना लेंगे वो तो बिगला है, बना लेंगे वो तो लोता है, हंसा लेंगे।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, रूठा है तो मना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वाकई रूठे को मना लेना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी रूठना भी ज़रूरी हो जाता है ना। और फिल्म ज्वारभाटा से ये सुंदर खूबसूरत रचना है, और ये रचना वाकई बहुत ही खूबसूरत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। ज्वारभाटा फिल्म 1973 की रिलीज फिल्म है, और गीतकार हैं बहार फिल्म द्वारा, और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए, और बहुत सारी जानकारियां हैं, और बस बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। साथियों, पंडित पंडित नरेंद्र शर्मा जी, उनका परिचय की अगर हम बात करें तो वाकई परिचय इतना शानदार है, बेहद खूबसूरत है, तो क्या बताएं हम। जी हाँ, पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में हुआ था। प्रारंभ से ही साहित्य और भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे केवल कवि नहीं बल्कि पत्रकार, चिंतक, साहित्यकार और राष्ट्रवादी विचारक भी थे। 1934 में उन्होंने अभ्युदय नामक पत्र से जुड़कर साहित्यिक लेखन को नई दिशा दी।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई नैना दीवाने, कितनी मधुरता, कितना खूबसूरत अंदाज, लाजवाब बेहतरीन रचना अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, सुरैया की बेहतरीन आवाज़ में सुंदर खूबसूरत गीत। साथियों, उनके बारे में और थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में हम चर्चा करते हैं। उनके पिता पूर्ण लाल शर्मा और उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम है सुशीला गोदीवाला और उनकी पुत्री लावण्या शाह। परिवार के लोगों के अनुसार वे अत्यंत सरल, आध्यात्मिक और अनुशासित व्यक्ति रहे। आकाशवाणी और

विविध भारती में योगदान की बात करें तो वाकई बहुत ही प्यारा योगदान है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पंडित नरेंद्र शर्मा को विविध भारती सेवा के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे आकाशवाणी से जुड़े और आगे चलकर विविध भारती को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जी हाँ दोस्तों, वाकई वाकई बहुत ही सुंदर गीतों की श्रृंखला जारी है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पंडित नरेंद्र शर्मा को विविध भारती सेवा के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है। 1952 में तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू के आग्रह पर वे आकाशवाणी से जुड़े और आगे चलकर विविध भारती को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में यह सेवा देश की सबसे अधिक सुनी जाने वाली रेडियो सेवा बन गई। जी हाँ, जिस पर हमें आज भी गर्व होता है। आज भी लाखों श्रोता अनजाने में उस विरासत का आनंद लेते हैं जिसकी नींव पंडित जी ने रखी थी। जी हाँ दोस्तों, वाकई नींव रखने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा ही थे। वाकई उनकी पहली फिल्म थी

1943 हमारी बात, जी हाँ हमारी बात। इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों के गीत लिखे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, और ये गीत जो आने वाला है, जो हम सुनवाना चाह रहे हैं आपको, वाकई बहुत ही सुंदर है। फिल्म भाभी की चूड़ियों से बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी भाभी की चूड़ियाँ से अभी आपने सुना। बहुत ही प्यारा मधुर खूबसूरत लाजवाब रचना। यहाँ साथियों हम बात कर रहे थे इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में जो अपना गीत लिखे हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से हम बताते हैं कि कौन कौन सी फिल्में इन्होंने इन्होंने जो गीत लिखे हैं, किस फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। 1943 में जो उन्होंने लिखे था हमारी बात, इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में भी गीत लिखे हैं। अगर हम वर्ष बाद बात करें कि भाई क्रमबद्ध तरीके से, तो प्रमुख जो फिल्में रही हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा जो लिखित जो रचना थी, 1943 में हमारी बात हुई, और साथ में पहली बतौर फिल्म गीतकार के तौर पे 1944 ज्वारभाटा फिल्म में उन्होंने लिखा, और 1949 में अवसर फिल्म के लिए गीत रचना लिखी और

प्रीत कनाता जोड़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, प्रीत कनाता जोड़ने वाला। 1951 में मालती माधव फिल्म के लिए भी उन्होंने गीत लिखे, और 1952 में आंधिया फिल्म से भी फिल्म को भी उन्होंने गीत से सजाया। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में जो गीत लिखे हैं, तो वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, अनमोल रचना रही है। फिर दोबारा बताएंगे और भी कुछ जानकारियाँ, जो ख़ास जानकारियाँ, कुछ अनछुए पहलू, कुछ छुए कुछ अनसुने पहलू भी हम चर्चा करेंगे, और उनको जो भी अवार्ड्स मिले हैं या और भी जो कहानी है उनके बारे में तो हम क्रमबद्ध, धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हम आपको और भी जानकारियों से लाभान्वित करेंगे। फिलहाल हम सुनवाते हैं एक शानदार, खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर ये गीत अभी आप सुन रहे थे, क्यों प्याला अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे। और इनके बारे में हम कुछ बता देते हैं, ये किस फिल्म का ये गीत है, और ये फिल्म थी फिर भी। जी हाँ, क्यों प्याला अच्छा लगता है, फिर भी फिल्म 2005, माफ़ कीजिएगा। और ये फिल्म वाकई बहुत ही सुंदर रही है, और मन्ना डे जी की आवाज़ में शानदार बेहतरीन रचना। और

जी हाँ, 1971 की ये फिल्म रही है फिर भी, और गीत पंडित नरेंद्र शर्मा के ही हैं, संगीत से सजाया है रघुनाथ सेठ ने। वाकई बहुत ही शानदार रचना अभी आप सुन रहे थे। साथियों, और भी जो खूबसूरत जानकारियां हैं उनके आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं, अगर गीतों की सूची की अगर हम बात करें, या उससे पहले भी एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत जो जानकारी है वो है, जैसे कि हमने गीतों के नाम बताए थे, सत्यम शिवम सुंदरम, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। 1982 में प्रेम रोग फिल्म और भंवरे ने खिलाया फूल, जो प्रेम रोग का जो फिल्म की गीत था भंवरे ने खिलाया फूल, और 1982 में सुबह, जी हाँ सुबह फिल्म भी एक हुआ करती थी, और तुम आशा विश्वास हमारे। अगर हम गीतों की सूची और ज़्यादा बताएं तो जिनमें जो बेहद प्रचलित रही अमर गीतों की सूची की बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ज्योति कलश छलके, भंवरे ने खिलाया फूल, तुम आशा विश्वास हमारे, प्रीत का नाता जोड़ने वाला, जो समर में भी समर में हो गए अमर, जो समर में हो गए अमर, ये भी एक अलग, बिल्कुल अलग टाइटल है, और ना जाने किसी ने सुना होगा नहीं सुना, लेकिन हाँ आज सुनवा रहे हैं हम। ऐसे ऐसी फिल्में हैं जो आज तक बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम पहुंच पाते हैं ऐसे गीतों के साथ। वाकई दोस्तों, और साहित्यिक कृतियाँ जो थी उनकी, पंडित जी की कविता और साहित्यिक पुस्तकों में प्रमुख हैं। कहानी कहते कहते, पनिहारिन, रथवान, स्वागतम, ये उनकी पुस्तक लिखी गई हैं उनके द्वारा, यानी कि पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं, और ये गीत भी बहुत ही सुंदर आ रहा है, तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। और ये गीत है फिल्म प्रेम रोग से।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर ऑल टाइम फिल्म भी रही है और ऑल टाइम फेवरेट फिल्म रही है, और वाकई गीत भी बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना। साथियों बढ़ते हैं खूबसूरत जानकारी की ओर। जी हाँ दोस्तों, साहित्यिक कृतियाँ, जैसे कि हमने बताया कि पंडित जी की कविता और साहित्यिक पुस्तक में प्रमुख कहानी कहते कहते हैं, जी हाँ, पनिहारिन और रथवान और स्वागतम। साथियों कुछ ऐसे अनछुए या छुए पहलू पर नज़र हम डालें तो लता मंगेशकर उन्हें पिता समान मानती थी। लता मंगेशकर उन्हें पंडित जी नहीं बल्कि पिता तुल्य मार्गदर्शक मानती थी। उन्होंने अनेक अवसरों पर स्वीकार किया कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में नरेंद्र शर्मा की सलाह उनके लिए प्रेरणा बनी। और महाभारत धारावाहिक से जुड़ाव, लोकप्रिय टीवी श्रृंखला महाभारत में भी वैचारिक सलाहकार रहे और गीत लेखन में भी योगदान दिया। यह उनके जीवन का अंतिम बड़ा रचनात्मक कार्य था। एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों, जो 1982 के एशियाई खेलों के लिए भी उन्हें विशेष गीत लिखना पड़ा। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही शानदार गीत लिखा एशियाई खेलों के लिए, यानी कि 1942 में जो एशियाई गेम्स हुए थे उसी के लिए भी उन्होंने एक गीत, विशेष गीत लिखा था। आध्यात्मिक गीतकार रहे हैं। उनके गीतों में प्रेम से अधिक दर्शन, भक्ति और मानवीय संवेदना दिखाई देती है। इसलिए उन्हें केवल गीतकार नहीं बल्कि कवि ऋषि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाकई एक गीत सुनवाते हैं, फिर उसके बाद खूबसूरत जानकारी एक बार फिर से एक शानदार रचना सुनवा रहे हैं।

कहा नैना जाने सके चंदा कित और, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे। साथियों एक और गीत हम सुनवा रहे हैं और उसके बाद फिर हम एक शानदार बेहतरीन रचना फिर से दोबारा सुनवाएंगे, और फिलहाल हम एक गीत सुनवा रहे हैं।

साथियों, समय इजाज़त तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जानकारियाँ बताए देते हैं। जहाँ साथियों, सम्मान और पुरस्कार की अगर हम बात करें तो उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य और कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया है। फिल्म फेयर नामांकन में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का श्रेणी में नामांकन हुआ है। और साथियों, जाते जाते बस एक गीत और सुनवाएंगे। और उनका निधन 12 फरवरी 1989 को मुंबई में उनका निधन हुआ। और लेकिन सच तो यह है कि कवि कभी मरते नहीं हैं, वे अपने शब्दों में जीवन जीते हैं, रहते हैं। और साथियों, कुछ लोग गीत लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन पंडित नरेंद्र शर्मा उन विरले रचनाकारों में से एक थे जिन्होंने आत्मा की आवाज को शब्द दिए। कहते हैं कि वो चला गया मगर उनके लफ्ज रह गए, हर सुर में उसके साथ एहसास बह गए। जिसने गीतों को इबादत का रूप दिया, वो पंडित नरेंद्र शर्मा अमर हो गए। कलम रुकी तो क्या हुआ, विचार आज भी जिंदा हैं। उनके लिखे हुए गीतों में कई मौसम जिंदा हैं। जब जब गूंजेगा सत्यम शिवम सुंदरम, तब तक पंडित जी के शब्दों का चंदन महकेगा। इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, यानी कि सुरों का सफर नामा से विदा लेते हैं और छोड़े जा रहे हैं एक सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत रचना के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम समाप्त होता है। समय 1 बजने वाले हैं। अब हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता

0: रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में डीआरडीओ की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहाँ के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाज़ों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisations, or DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया.
3: The work of handing over the land has been completed.

श्रोताओं, अभी ये गीत आपने सुना खुर्शीद की मधुर आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत केएल सहगल साहब की आवाज़ में, फिल्म भंवरा से।

केएल सहगल साहब की आवाज़ में अभी ये मधुर गीत आपने सुना। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हमराही से, मोहम्मद रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुरी की आवाज में ये मधुर सा गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म दर्द से उमा देवी की मधुर आवाज में।

अगला गीत आइए श्रोताओं सुनते हैं, फिल्म एक थी लड़की से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जी एम दुरानी और साथियों की मधुर आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी ये गीत आपने सुना फिल्म महल से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आग से, मुकेश साहब की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में फिल्म भाई बहन से। किन्हीं कारणों से हम आपको शमशाद बेगम की आवाज़ में वो गीत नहीं सुनवा सके थे, उसके स्थान पर हमने आपको ये गीत सुनवाया। इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आवारा से मुकेश साहब की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय

0: समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतलुआ अंगकीमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगीव हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: The West Bengal government has assured special support for farmers in the agriculture sector in North Bengal with particular emphasis on potato and tea cultivation. State Minister for Agriculture and Agri-Marketing, Rural Development and Panchayati Raj, Dilip Ghosh, said this while addressing the Kanchenjunga Agripreneurs Meet in Siliguri. He said the government will give special attention to the welfare of farmers engaged in potato and tea production in the region.

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं सबसे पहला ये गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया।

0: बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाइलाइटेड दैट फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, हाउसिंग, स्पोर्ट्स, साइंस एंड गवर्नेंस, वुमेन आर प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। In a social media post, Mr. Modi said, "The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscapes across the nation." He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian Marines in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar said he spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio last evening and reiterated India's strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a social media post, Dr. Jayshankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, "People are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border." The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया.
3: द वर्क ऑफ हैंडिंग ओवर द लैंड हैज बीन कंप्लीटेड. सो फार वी हैव हैंडेड ओवर लैंड कवरिंग नियरली 100 किलोमीटर्स इन नॉर्थ बंगाल एडजॉइनिंग द चिकन स्नेक कॉरिडोर. द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज ऑलरेडी बिगन द फेंसिंग वर्क. वी विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एज वेल. दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी.
2: देश की सुरक्षा का साल

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 और 10 सेकेंड। ये कार्यक्रम, ये समय होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत गजल। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और खूबसूरत बेहतरीन गजल। जी हाँ, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। या दोस्तों, फॉरएवर जगजीत सिंह, हिट ग्रेटेस्ट गजल। जी हाँ, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की बेहतरीन आवाज़ में शानदार खूबसूरत गजल। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की पहली सुंदर खूबसूरत गजल।

या दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल। जी हाँ, जाग दर्द इश्क जाग, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल अभी आप सुन रहे थे। साथियों, आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है गीत गज़ल। अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर। ये गज़ल आ रही है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल, और गज़ल हमने काटी है तेरी यादों में रातें अक्सर। जी हाँ दोस्तों, हमने काटी है तेरी यादों में रातें अक्सर। हरिहरन साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना। गीत जानिसार अख्तर के हैं। और जी हाँ दोस्तों, और रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो हैं टी सीरीज रिकॉर्ड्स एंड टिप्स प्राइवेट लिमिटेड्स के द्वारा। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गज़ल हरिहरन साहब की आवाज़ में।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन और खूबसूरत गज़ल। क्या कहें इस गज़ल के बारे में, वाकई बहुत ही शानदार, बेहतरीन। फिर सावन की रुत पवन चली, तुम याद आए, फिर तुम याद आए। वाकई बहुत ही लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर। चित्रा सिंह की बेहतरीन आवाज़ में शानदार, लाजवाब, अनमोल गज़ल, दिल ही तो है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारी, बेहद खूबसूरत गज़ल अभी आप सुनेंगे। और बताते हैं कि ये जो गज़ल है वाकई बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। गुलजार्स और मिर्ज़ा गालिब के द्वारा ये सुंदर, बेहतरीन रचना है। चित्रा सिंह की आवाज़ है और लिरिक्स मिराज गालिब के हैं। तो आइए सुनते हैं ये शानदार गज़ल।

वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गज़ल। गज़लों की एक अलग छाप होती है, पहचान होती है। वाकई बहुत ही शानदार, बेहतरीन गज़लों का समावेश बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही शानदार, लाजवाब, अनमोल, बेहद खूबसूरत गज़लें। बढ़ते हैं एक और शानदार, बेहतरीन गज़ल की ओर। यह गज़ल आ रही है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल। जी हाँ दोस्तों, यह गज़ल अपने आप में बेहद अनमोल है। जिंदगी चंद सवालों के सिवा, जी हाँ, और कुछ नहीं। मीनल जैन की आवाज़ में सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल आ रही है और संगीत से सजाया है जयदेव गोसाई और कुणाल परमार ने, और गीत मिलिंद और गाधवी के द्वारा शानदार गीतकार। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गज़ल की ओर। जी हाँ दोस्तों, आती जाती हर मोहब्बत, एक शानदार बेहतरीन नगमा।

दोस्तों, वाकई आते जाते मोहब्बत है। चलो फिर सही, कोई बात नहीं। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल अभी आप सुन रहे थे। आइए एक और खूबसूरत गज़ल सुनवाते हैं, बहुत ही शानदार गज़ल।

0: साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म में नाद ब्रह्म के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एस बाला चंदर के नमन नारायणी वीणा वादन में, नमन नारायणी राग पर आधारित रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। सुबह के 4:53 और 4 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप पुनः हिंदी में समाचार सुनेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में। छह बजकर 10 मिनट पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। और 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुन सकते हैं। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस।

0: सकते हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी कार्यक्रम का गुड मॉर्निंग न्यूज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। आज

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे समाचार। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं। अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।